सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज रविवार है, शक संबत 1948 के वैशाख मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 मई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, आपको अवगत करा दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिए का भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर जाकिर हुसैन पर। 8:30 बजे बाल सभा, विषय मन की गुल्लक। सुबह 9 बजे टैग गुरु, आज का विषय दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीक के फायदे। 9:30 बजे सुनेगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, आज का विषय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। सुबह 10 बजे देश के संस्थान, विषय भारतीय नौसेना सागर के पहरी। 10:30 बजे आजाद हिंद जो केंद्रित है बाबू वीर कुंवर सिंह पर। और 11:30 बजे सुनेगा काव्य गुंजन जो केंद्रित है यशोधरा, आज सुनेगा इसका यशोधरा पार्ट 1। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि है। रेडियो आजाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ। भगवान बुद्ध के सुविचार। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके ही स्वरूप में देख पाता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। ये थे भगवान बुद्ध के सुविचार। इन सुविचारों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 100वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं वर्षागिर, रुद्राश्वाम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधस। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
3: स यो वृषा वृषण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट सती न सत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विंद्र उती। जो बलशाली इंद्रदेव बलवर्धक साधनों से संयुक्त रहने वाले महान आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, जो जलों को प्राप्त कराने वाले संग्राम में आवाहन योग्य हैं, वे इंद्रदेव मरुद गणों सहित हमारे रक्षक हों। यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरे भरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरे वैर मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। सूर्य की गति के समान दुर्लभ गति वाले वृत्तनाशक इंद्रदेव प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक मरुतों के साथ मिलकर अतीव बलशाली हैं। ये इंद्रदेव मरुद गणों सहित हमारे रक्षक हों। दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः तरद्वेषाः सासहिः पौंस्येभिर् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। इन इंद्रदेव के निर्विघ्न मार्ग सूर्य किरणों के सदृश अंतरिक्ष के जलों का दोहन करने वाले हैं। ये अपने पराक्रम से द्वेषियों का नाश करने वाले, शत्रुओं का पराभव करने वाले और बलपूर्वक आगे आगे गमन करने वाले हैं। ये इंद्रदेव मरुद गणों के साथ हमारे रक्षक हों। सो अंगिरो भिरंगिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् रिग्मीभिर् रिग्मी गातुभिर् ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अतीव बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और साम आदि के गायन करने में वरिष्ठ हैं। वे इंद्रदेव मरुद गणों के साथ हमारे रक्षक हों। ससूनुभिर् न रुद्रेभिर् रिभ्वा नृषाहिये सासह्वाम् अमित्रान् सनीडेभिः श्रवस्यानि तूर्वन् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। महान इंद्रदेव ने पुत्रों के समान प्रिय सहायक मरुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को पराजित किया। साथ रहने वाले मरुदगणों के साथ मिलकर आपने अन्नों की वृद्धि के निमित्त जलों को नीचे प्रवाहित किया। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। समन्युमीः समदनस्य कर्तास्मा के भिर नृभिः सूर्यं सनत् अस्मिन्नहत् सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। शत्रुओं के प्रति क्रोध प्रदर्शित करने वाले, हर्षयुक्त होकर युद्ध में प्रवृत्त रहने वाले, सत्प्रवृत्तियों के पालक, बहुतों द्वारा आवाहनीय इंद्रदेव आज के दिन हमारे वीरों को लेकर वृत्र का नाश करें, सूर्य देव को प्रकट करें। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक हों। तमूतयो रणयच्छु रसातौ तम क्षेमस्य क्षितयः कृण्वत्राम् स विश्वस्य करुणस्येष एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। सहायक मरुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में उत्तेजित किया। प्रजाओं ने अपनी रक्षा के निमित्त उन वीर मरुदगणों को रक्षक बनाया। वे इंद्रदेव अकेले ही संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों के नियंता हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा करें। तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तम धनाय सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदन मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। बलशाली वीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता है। उन इंद्रदेव ने गहन तमिश्रा में भी प्रकाश को प्राप्त किया। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें। ससव्येन यमति व्राधतश्चित् स दक्षिणे संग्रिभीता कृतानि स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती। वे इंद्रदेव बाएं हाथ से हिंसक शत्रुओं को रोकते हैं और दाएं हाथ से याजकों की हवियों को ग्रहण करते हैं। वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। स ग्रामे भी सनिता स रथे भिर विदे विश्वा भी कृष्टि भिर नुवद्य स पौंसिये भिर भिभूर शस्तीर मरुत्वान्नो भवत्तिंद्र ऊती। वे इंद्रदेव मरुतों के सहयोग से रथों द्वारा धनों को देने वाले हैं, ऐसा संपूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे इंद्रदेव अपनी सामर्थ्यों से निंदनीय शत्रुओं का पराभव करने वाले हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे

बंधु अथवा अबंधु वीरों के साथ युद्ध में जाते हैं तो वे उनके पुत्र पौत्रादि की विजय के लिए यत्नशील रहते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुद्गणों के साथ हमारे रक्षक हों। सवज्रभृद्युस्युहा भीम उग्रह सहस्रचेताः शतनीथरभुआ चम्रीशो न शवसा पंचजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊति। वे वज्रधारी दुष्ट नाशक विकराल पराक्रमी सहस्र ज्ञान की धाराओं से युक्त शतनीति युक्त प्रकाशवान सोम के सदृश पूज्य इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से पांच जन्यों पांच प्रकार के मनुष्यों के वे हितकारी हैं। ऐसे वे देव इंद्र मरुद्गणों के साथ हमारे रक्षक हों। तस्य वज्रः क्रंदति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् तं सचन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। उन इंद्रदेव का वज्र बहुत तीव्र गर्जना करता है। वह द्यूलोक के सूर्यदेव की भांति तेजस्विता संपन्न है। स्तोताओं की स्तुतियों से वे उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धन आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। यस्याजस्रम शवसा मानमुक्थम परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीम स पारिषत्क्रतुभिर् मंदसानो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊति। उन इंद्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों का सभी ओर से निरंतर पोषण कर रहा है। वे हमारे यज्ञादि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अंतमापुः स प्ररिक्वा त्वक्षसाक्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊति। जिन इंद्रदेव के बल का अंत दान प्रवृत्ति वाले देवगण मनुष्य तथा जल भी नहीं पा सकते, वे इंद्रदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और द्युलोक से भी महान हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर ललामीर द्युक्षा राय रिज्राश्वंस्य वृषणवंतम बिभ्रति धूर्षु रथम मंद्रा चिकेत नाहुशीशु विक्षु। रोहित और श्याम वर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोभित इंद्रदेव के रथ में नियोजित होकर प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते हैं। इंद्रदेव रिज्राश्व को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानवी प्रजा भी धन के निमित्त निवेदन करती हुई दिखाई दे रही है।

0: एतत्यत्त इंद्र वृष्ण उक्थम वर्षा गिरा अभी गृणन्ति राधः रिज्राश्वः प्रष्टिभिरंबरीशः सहदेवो भयमानः सुराधाः। हे इंद्रदेव, समीपस्थ ऋषियों के साथ रिज्राश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधस, ये सब वृषागिर के पुत्र आप जैसे सामर्थ्यवान के लिए प्रसिद्ध स्तोत्रों का गायन करते हैं। दस्योंश्म्योश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वाणि बर्हीत सनत्क्षेत्रं सखिभिः श्वित्नेभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्रः। बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर इंद्रदेव ने अपने सहायक मरुदगणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्टों और हिंसक शत्रुओं पर तीक्ष्ण वज्र से प्रहार करके उन्हें जड़ विहीन किया। तब उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित मरुदगणों के साथ भूमि प्राप्त की, जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य भी प्राप्त किया। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्व परिहृताः सनुयामं वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्रदेव, प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों, कपट तजकर हम उन्हें अन्नादि अर्पित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यौ हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 100वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। श्रोताओं, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।

जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।

कर्म करने में जो अकर्म देखता है और कर्म ना करने में भी जो कर्म होता देखता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है और इसी बुद्धि से युक्त होकर वो अपने सभी कर्म करता है।

खोजा बहुत खुदा को पर कहीं मिला नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में। तब किसी फकीर ने कहा, खुदा खोजने से नहीं, खुद को खो देने से मिलता है।

कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। डॉक्टर जाकिर हुसैन का व्यक्तित्व, इस्लाम की शिक्षा, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, बापू की विचारधारा और पश्चिमी देशों के उदार और मानवतावादी मूल्यों के सुंदर तालमेल से बना हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को गुलाब और कैक्टस दोनों ही बेहद प्रिय थे। वे उन लोगों में से थे जिनकी निगाह बुरे लोगों की अच्छाइयों पर होती है। वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के समान जीवन भर सृजनात्मक आपसी सद्भाव और सार्वभौमिकता के लिए काम करते रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 20 अक्टूबर 1920 में तब हुई जब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर करीब 300 विद्यार्थियों के साथ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहिष्कार किया था। ये बहिष्कार बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना का आधार बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के लिए अलीगढ़ में छात्रों के सहयोग और समर्थन के मकसद से आए थे। उस समय जाकिर साहब 23 वर्ष के युवक थे और एमए के छात्र थे। यूनियन हॉल में शिक्षकों और छात्रों के समक्ष गांधी जी ने तकरीर पेश करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत चलने वाले शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करके उनकी जगह राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित किया जाए। जाकिर हुसैन भी उन थोड़े से व्यक्तियों में से थे जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। अपने इस बहिष्कार के बारे में जाकिर साहब ने कहा था कि मेरे जीवन में मेरे जमीर का ये पहला फैसला था, शायद वाहिद फैसला जो मैंने लिया। मेरी तमाम जिंदगी इसी फैसले से प्रभावित रही। 19 अक्टूबर को एएमयू का बहिष्कार करके बाद में उन लोगों ने अलीगढ़ में एक छोटी सी राष्ट्रीय संस्था स्थापित की। बाद में यही संस्था जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से देश विदेश में मशहूर हुई। उनके इस निर्णय ने उनके जीवन को एक अभिनव दिशा दी। राष्ट्र प्रेम और शिक्षा प्रेम उनके मुख्य ध्येय हो गए।

शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन की छटपटाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे जर्मनी में पढ़ रहे थे तब सन 1924 में उन्हें मालूम हुआ कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जामिया मिलिया को बंद किया जा रहा है। उस समय उन्होंने एक तार द्वारा अपनी भावना व्यक्त करते हुए लिखा था कि मैं और मेरे कुछ मित्र जामिया के लिए आजीवन सेवा करने को तैयार हैं। हम लोगों के पहुंचने तक जामिया बंद न होने पाए। सौभाग्य से ऐसा ही हुआ और भारत लौटने पर सन 1926 में मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व में उसने बहुत ही जल्दी देश की महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाओं में अपना स्थान बना लिया। जाकिर साहब जामिया मिलिया में 22 साल तक कुलपति रहे। पठन पाठन के अलावा बागवानी उनका पसंदीदा शौक था। वे एक पौधे की परवरिश और एक बच्चे की तालीम के मध्य संबंध से पूरी तरह आगाह थे। जामिया के लहलहाते फूल और पौधे और बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हरियाली के साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के पौधे सिर झुका झुकाकर उनकी रुचि और प्रेम को प्रत्यक्ष प्रकट करते थे। पंडित नेहरू के विशेष आग्रह पर जाकिर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए। पंडित नेहरू उनकी प्रतिभा और बौद्धिक निष्ठा से बहुत गहरे रूप से प्रभावित थे। हालांकि जाकिर साहब अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के ही क्षेत्र को अर्पित करना चाहते थे, लेकिन बाद में 55 वर्ष की आयु में 1952 में उन्होंने राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनना स्वीकार किया। इसके बाद सन 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। सन 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इसके एक वर्ष बाद उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न के अलंकरण से सम्मानित किया। बाद में सन 1967 में वे भारत के राष्ट्रपति बने और इस तरह सन 1920 के एक विद्रोही विद्यार्थी के जीवन की यात्रा अपने सर्वोच्च पड़ाव पर

जाकिर साहब की बापू और उनके रचनात्मक कार्यों पर गहरी आस्था थी और ठीक इसी तरह बापू का भी उन पर दृढ़ विश्वास था। बापू ने जाकिर साहब की प्रतिभा और राष्ट्रप्रेम की भावना को पहचाना तथा उन्हें उस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जिसे वर्धा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक बुनियादी तालीम का विस्तृत पाठ्यक्रम बनाना था। जाकिर साहब ने इस कार्य को बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन बहुत गहरा था। उनका कहना था कि तालीम सूचना या जानकारियों का संग्रह नहीं बल्कि बौद्धिक शक्तियों का विकास और विस्तार करना है। जानकारियों के खजाने को पाने से आदमी इंसान नहीं बनता बल्कि उसके सही इस्तेमाल का तरीका जानना जरूरी है। किताब में पढ़ना कि गुलाब में खुशबू है अलग बात है, लेकिन बाग में गुलाब सूंघना और आनंदित होना अलग बात है। तालीम का काम पठन पाठन तक सीमित नहीं होता। तालीम और प्रशिक्षण द्वारा प्रकृति ये चाहती है कि जिस प्रकार शहद की मक्खी गुलाब के रस से शहद तैयार करती है या गाय हरी घास से अमृत वाला दूध देती है, इंसान भी ऐसी चारित्रिक पहचान प्राप्त करे जिनसे वो सही अर्थों में इस धरती का खलीफा बन सके। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है कि तालीम वो रोशनी है जिससे इंसानों के दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1938 से 1948 तक हिंदुस्तानी तालीम संघ के अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा की अन्य समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक तथा कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया और बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी। बाल साहित्य में उनकी अब्बू खां की बकरी नामक पुस्तक खासी चर्चित रही। भारत की इस महान विभूति ने 3 मई को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी पुण्यतिथि पर किसी शायर ने कहा था कि नफरत की आंधियां न मिटा पाएंगी जिसको, लिखकर के जमीन पर वे नाम गए हैं। जिंदा रहेंगे दुनिया में वे लोग हमेशा, इंसानियत का देके जो पैगाम गए हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय है मन की गुल्लक।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: ओहो, स्वागत है आज स्टूडियो में तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी है और इसका नाम है परीजा। और बच्चों मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। आज का ये समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि बच्चों आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक सोच है, एक तरीका है जीवन को देखने का। और आज की बाल सभा में मैं बचत की बातें करने वाली हूँ। अरे अरे अरे अरे, ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैंने बचत कहा आपके मन में क्या आया? एक गुल्लक आई ना जिसमें आप पैसे डालते हैं धीरे धीरे और अंदर जाकर सिक्का बोलता है टन, है ना। हर दिन आपको आदत पड़ जाती है थोड़े थोड़े से पैसे सिक्के मम्मी पापा से लेकर गुल्लक में डालने की। हम सब ने भी बचपन में कभी ना कभी गुल्लक रखी ही है और उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं और उसमें सिक्के डालने का आनंद भी महसूस किया है और मिट्टी की गुल्लक को फोड़ने का भी अपना एक अलग ही मज़ा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गुल्लक के बारे में बताने जा रही हूँ जो टूटती नहीं है, जो खोती नहीं है, जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो है मन की गुल्लक। इस गुल्लक में आप पैसे नहीं रख सकते हैं लेकिन आप उसमें वो सब कुछ रख सकते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है। आप उसमें रख सकते हैं अपने रिश्ते, अपनी यादें, अपनी आदतें, अपनी अच्छाइयाँ। और आज हम इसी मन की गुल्लक को भरने की बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए, पता है, बता ही दिया मैंने आपको कि परीजा आई है। परीजा एक बार फिर से नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: परीजा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक मन की गुल्लक है और तुम्हें उसमें कुछ कीमती चीजें संभाल कर रखनी है, तो उसमें तुम सबसे पहले क्या रखना चाहोगी?
4: दीदी, मैं उसमें अपने दोस्त रखना चाहूंगी।
2: दोस्त? ये शब्द छोटा तो है लेकिन इसके पीछे कितनी सारी यादें छुपी होती हैं। स्कूल के दिन, एक साथ बैठना, एक ही टिफिन बांटना, बिना वजह हंसना। परीजा, वैसे तुमने दोस्तों को ही क्यों चुना?
4: दीदी, क्योंकि जब मैंने स्कूल बदला तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे दूर हो गए। हम पहले रोज मिलते थे, अब कभी कभी ही बात होती है। अगर मेरे पास मन की गुल्लक होती तो मैं उन्हें उसमें संभाल कर रखती।
2: ओ, कितनी अच्छी और सच्ची बात है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है परीजा, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जो छूट जाते हैं या हम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते, रिश्ते की गुल्लक की तरह ही होते हैं ना ऐसे लोग? अगर हम उसमें से रोज़ थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी समझदारी डालते रहें तो वो हमेशा भरे रहते हैं, है ना। रिश्तों की गुल्लक ऐसी ही होती है। और अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे तो वो रिश्तों की गुल्लक खाली होने लगेगी।
4: दीदी, मैं अब अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगी।
2: हाँ परीजा, यही तो रिश्तों की बचत है बेटा। चीज़ों की बचत के बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन तुमने इतनी अच्छी बात कही है ना कि जब दोस्त दूर हो जाए, जैसे तुमने स्कूल बदला, तुम्हारे दोस्त दूर हो गए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया ना कि उन्हें रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दो बार फ़ोन करना चाहिए, तो बस रिश्ते बचे रहेंगे। यही है रिश्तों की सेविंग। अब हम जरा चीज़ों की बचत के बारे में बात करेंगे, क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: अब परीजा, अगर हम आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रंग, लेकिन क्या हम सच में उनका पूरा उपयोग करते हैं?
4: नहीं दीदी, कभी कभी नहीं।
2: जैसे हमारी कॉपी अगर हम देखें तो एक कॉपी खत्म होने के बाद भी उसमें कई पन्ने खाली रह जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उन पेजेस को इकट्ठा करें तो क्या हो सकता है परीजा?
4: एक नई छोटी कॉपी बन सकती है।
2: जी बिल्कुल, और ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर बड़ी समझ पैदा करती हैं।
4: दीदी मैं अब कोई पन्ना बेकार नहीं जाने दूंगी।
2: और यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अब पता है क्या बात बताने वाली हूँ मैं परीजा आपको?
4: क्या दीदी?
2: वो ये कि तुम आज मुझे कौन सी कहानी सुनाओगी?
4: दीदी मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गोल।
2: अच्छा, ये गोल कहानी मेजर ध्यानचंद्र जी की कहानी है ना?
4: जी दीदी।
2: तो चलिए शुरू कीजिए, आज तो दो दो लोगों की कहानी आएगी, पहले मेजर ध्यानचंद की और फिर जो बच्चे बाल सभा सुन रहे हैं उन्हें पता है कि मैं भी उन्हें बहुत अच्छी कहानी पिछले कई दिनों से सुना रही हूँ, वो भी सुनाऊंगी। लेकिन पहले परीजा से सुनते हैं, शुरू कीजिए परीजा।
4: जी दीदी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है, खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं।
2: परीजा, तुम्हारी ये गोल कहानी तो मुझे बड़ी ही जबरदस्त लगी। और एक बात और है जो इस कहानी से निकल कर आया, हम बात कर रहे थे बचत की। आपको समझ में आया कि यहाँ मेजर ध्यानचंद जी ने भी एक चीज की बचत की?
4: जी दीदी।
2: किस चीज की बचत की? सोचो सोचो, मैं बताऊं?
4: जी दीदी।
2: उन्होंने बचत की अपने गुस्से की। चाहते तो वो भी हॉकी स्टिक से दूसरे खिलाड़ी को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को बचाया, व्यर्थ नहीं किया, और उस गुस्से को कहाँ निकाला? गोल करके। क्या लिखा उन्होंने कि चाहता तो मैं इसे सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने कितने गोल किए?
4: 6 गोल दीदी।
2: तो 6 गोल में उनका वो गुस्सा भी हो सकता है जो उन्होंने बचा कर रखा था। तो सिर्फ पैसे नहीं बचाए जाते बच्चों, बचाया जाता है दूसरों पर व्यर्थ किया जाने वाला समय भी। और यही चीजें जो छोटे छोटे से गुरु मंत्र बन जाते हैं वो क्या होते हैं? लगन, मेहनत, साधना, ये सब आपके लिए गुरु मंत्र बनते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि बदला हमेशा वो नहीं होता जो आप किसी के कर्म का तुरंत रिप्लाई करते हैं। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी हमेशा सुना है कि उनके लिए अगर कोई कुछ कहता था तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, मैदान पर वो अपने बल्ले से ताकत दिखाते थे, है ना
4: जी दीदी।
2: तो अब अपनी चीजों को भी बचाना है, वापस अपनी बात पर लौटना है
4: जी दीदी।
2: तो हमारी सोच को बदलने के लिए तुमने ये जो कहानी सुनाई है, ये छोटी सी बात थी लेकिन सच तो ये है कि जीवन की इसमें बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई थी। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, हम अपनी आदतों की भी बचत कर सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने शब्दों की भी बचत कर सकते हैं। परीजा
4: दीदी, शब्द कैसे बचते हैं?
2: जब हम बिना सोचे बोल देते हैं तो शब्द वापस नहीं आते। कहते हैं ना कि तीर कम घाव करता है, शब्दों के तीर ज़्यादा घाव करते हैं, इसलिए हमें शब्दों को बहुत बचा कर रखना चाहिए, है ना। जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें, एक एक बार और सोच लें कि कहीं गलती से भी हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और ये एक छोटी सी आदत कोई भी रिश्ता टूटने से बचा सकती है, है ना परीजा।
4: तो गुस्सा कम करना चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि परीजा गुस्सा आना गलत नहीं है लेकिन उसे संभालना बहुत जरूरी है। जैसे मेजर ध्यानचंद ने अपना गुस्सा व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे संभाल कर रखा, और जब वक्त आया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, है ना। अब चलो हम आगे बढ़ें।
4: जी दीदी।
2: आज मैं बच्चों आपको फिर से ले चलती हूँ उसी किताब की तरफ। छोटी सी ये मेरे हाथ में किताब है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और आज हम आपको इसका जो अंश सुना रहे हैं वो है मैंने पर्वतारोहण सीखा। मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश पाकर एक अच्छी पर्वतारोही बनने की इच्छुक थी। हालांकि मेरी माँ का विचार था कि ये काम लड़कियों के लिए बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरे पिता द्वारा किए गए त्यागों को मैं कभी नहीं भूली थी। अब परिवार के लिए कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अनेक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे, लेकिन मुझे केवल कम वेतन वाले अस्थाई पदों के लिए ही उत्तर मिले, और वो भी केवल प्राइमरी स्तर के। मैं इतने परिश्रम से प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता का अवमूल्यन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन सब नौकरियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। घर में खाली बैठने की बजाय मैंने नेहरू संस्थान के प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां पर उस वर्ष के सभी स्थान भरे जा चुके थे। मुझे अगले वर्ष प्रवेश मिल गया और मैंने वहां पर बर्फ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, रैपलिंग के रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची खड़ी चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। हमें शिविर लगाने के तरीके भी सिखाए गए और पर्वतीय शिखरों को सुरक्षित ढंग से पार करने के तरीके भी सिखाए गए। नेहरू संस्थान के उप प्रधानाचार्य मेजर प्रेम चंद प्रशिक्षण अधिकारी थे। वो बड़े कठोर प्रशिक्षक थे जो बहुत उच्च स्तर के प्रदर्शन की अपेक्षा करते थे। मैंने सोचा था कि शायद मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि मुझे रजत हिम पदक और एक प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही, परंतु वास्तव में मुझे एक ग्रेड मिला था और मुझे उस कोर्स की सर्वोत्तम छात्रा घोषित किया गया था। उप प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में मुझे एवरेस्ट सामग्री के रूप में लिखा था। समय के उस दौर में मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF 1984 में एवरेस्ट पर जाने के लिए एक मिले जुले अभियान की योजना बना रहा है और उनको पर्वतारोहण में प्रतिभावान और अनुभवी महिलाओं की तलाश है, तो मैंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस स्तर में मैं दोनों में से कुछ भी होने का दावा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं IMF का पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गई। इसमें सूचित किया गया कि मुझे एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए चुना गया है। मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि मैं शिविर में उपस्थित हूँ। उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट पर मेरे जाने का विचार किया, क्योंकि मैंने तो बहुत कम पर्वतारोहण किया था। एवरेस्ट वास्तव में एक पहुंच से बाहर की चीज थी। इतने अधिक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य के लिए अपनी योग्यता पर संदेह होने के कारण मैंने IMF के पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने केवल आगामी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में ही सोचा। अक्टूबर 1982 में मुझे एडवांस कोर्स के लिए खाली हुए एक स्थान में प्रवेश मिल गया। उस कोर्स में हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखी। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अधिक ऊंचाई के अनुभव के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग की चढ़ाई की। बच्चों, काला नाग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कोर्स में भी मुझे ए ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने के लिए मेरी संस्तुति की गई। लगभग इसी समय मुझे एवरेस्ट के जांच कैंप में भाग लेने के लिए IMF की तरफ से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। जब मेरे प्रशिक्षकों को इस बात का पता चला कि मैंने IMF के पहले पत्र की उपेक्षा की और अब दूसरा पत्र मिला है, उन्होंने कहा, बच्छेंद्री, क्या तुम नहीं समझती कि ये एक सुनहरा अवसर खो रही हो? उनके कहने पर मैंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके बाद मैं एक बदली हुई इंसान थी। यदि IMF ने मुझे एवरेस्ट दल के लिए संभावित प्रत्याशी समझा था, मैं उसकी बात कैसे गिरा सकती थी? उत्साहपूर्वक मैंने आरोहण के लिए आवश्यक घरेलू अभ्यासों के लिए अपना नाम लिखवा कर दिया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैं घास, चारे और सूखी लकड़ी के भारी से भारी गट्ठर उठाने लगी। मैं रोज आने जाने का रास्ता भी बदल देती थी। मैं और अधिक दुर्गम रास्ते और घाटियों से होकर निकलने लगी। जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती अथवा सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे कि मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं, ऊंचाई से डर निकाल सकूं और चक्कर आने से निजात पा सकूं। मेरी सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य एक सच्चा दक्ष पर्वतारोही बनना था। 1982 के उत्तरार्ध में मैंने गंगोत्री के जांच कैंप में भाग लिया। मेरे प्रशिक्षक मेरे प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न थे और इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने गंगोत्री और रूड़गेरा की चढ़ाई की। मुझे अपनी आरोहण योग्यता में आत्मविश्वास मिला। इसके तुरंत बाद मुझे सूचना मिली कि सितंबर अक्टूबर 1983 में होने वाली अंतिम चयन शिविर के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है। अगली बार, बच्चों, जब मैं आपको मिलूंगी तो इसका अगला भाग सुनाऊंगी। लेकिन इस भाग में जो खास बात थी ना बच्चों, वो ये थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कितने कठिन कठिन रास्ते चुने, उन्होंने कितनी मेहनत की कि कैसे भी करके वो जहाँ भी जाएं उन्हें हर बार ए ग्रेड मिले, भले ही उन्हें उम्मीद हो या ना। आप देखिए, पहले कैंप से लेकर लास्ट कैंप तक जिसकी वो बात लिख रही हैं, उसमें हर जगह उन्हें ए ग्रेड मिला और एक बेहतर पर्वतारोही के लिए उन्हें चयनित किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत को बचा कर रखा, है ना, अपने गोल पर फोकस किया और उसमें जुट गई। मतलब वही बात है, मेहनत, लगन और अपने काम से सच्ची ईमानदारी। क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: अच्छा लगा ना ये सुन के?
4: जी दीदी, बहुत अच्छा लगा।
2: तो चलिए फिर अब वापस लौटते हैं। हमने इस अंश में ये सुन लिया परीजा कि कैसे धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और यही बात हमारी फिर उसी बात पर लागू होती है, बचत पर। बचत हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से बनती है, है ना? तो बच्चों, आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो एक बार अपने मन में जरूर झांक कर देखिएगा, क्या आपके मन की गुल्लक खाली है या उसमें कुछ रखा हुआ है? अगर खाली है तो आज से उसे भरना शुरू कीजिए। थोड़ा सा प्यार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी समझदारी रखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन की गुल्लक हर कीमती चीज से भरती जा रही है।
4: दीदी, मेरी गुल्लक अब अच्छी चीजों से भर रही है।
2: ओ, तो तुम्हें बधाई हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है परीजा। तो परीजा की गुल्लक तो अब अच्छी चीजों से भर गई है। अब जरा आपको याद ही है कि जब मनीषा दीदी पूरी बाल सभा कर लेती है तो आखिर में आपके साथ कुछ संकल्प लेती है, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए एक धीमे से संगीत के साथ। अब हम आज की बाल सभा में हमने जो किया उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धीमे से संगीत में धीरे से अपने मन की गुल्लक को खोलिए और चेक कीजिए कि क्या उसमें आपने थोड़ी सी ईमानदारी रखी है। अब धीरे से अपने मन की गुल्लक में ये भी देखिए कि आप अपने दोस्तों को उसमें संभाल कर रख पा रहे हैं, कहीं आपके दोस्त आपसे बात बात पर नाराज तो नहीं हो रहे हैं। अब जरा अपने मन की गुल्लक में धीमे से ये देखिए कि बड़ों के प्रति आदर आपने उसमें संजो के रखा है या नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान से देखिए उस गुल्लक में, आपने वो जो नानी और दादी को चिट्ठी लिखी थी वो संभाली है कि नहीं, जो पिछली बार बाल सभा में मैंने लिखने को कहा था। अब ये भी देख लीजिए कि आप किसी चीज को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, भले ही वो एक छोटा सा कागज ही क्यों ना हो। अब थोड़ा सा उस गुल्लक में ये भी ध्यान दीजिए कि आप समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी मन की गुल्लक अच्छी चीजों से भरी रहेगी तो आप एक बहुत अच्छे, प्यारे से, आत्मविश्वासी, बेहतरीन नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बस आज संकल्प भी पूरे हो चुके हैं और अब चलने का वक्त आ गया है। तो आज से आपको बचत का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी चीजों से, अपनी छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना है ना? क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो अब चलें परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो बच्चों, अगले सप्ताह कुछ नई बातें, नए विषयों के साथ लौटेंगे, लेकिन अभी अनुमति दीजिए मनीषा को और मेरे साथ
4: परीजा को।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था मन की गुल्लक। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एक अंतराल के बाद सुनेगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान।

0: अभी आपने सुना शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा। दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा है। हाँ है, हाँ
0: है, हाँ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टैग गुरु।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टैग गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टैग गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। ये दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
4: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
5: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पर लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पर जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
4: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज से आपका जुड़ाव होता रहा?
5: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, टैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कि लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है, या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया, कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है, पढ़ना है, तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज, हेडिंग वाइज, सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब, मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर, जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो, या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका, मान लीजिए किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि पाँचवें नंबर के कैसेट में है कि आठवें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
4: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
5: जी, उनका जो
4: हर क्षेत्र में,
5: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना, अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग, IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में, वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़

0: आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं?
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ऑक्सीजंस होते हैं जी, इनका पर्पस यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको तो, और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उस उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स

0: कैसी हो कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है व्यक्ति है वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए, है ना। पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
1: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
0: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
1: सर, आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
1: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, थैंक यू।
2: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सीना हमारा गर्व। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि हम आपसे इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं से जुड़े हर उस पहलू को छूकर देखना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को, उसकी कार्यशैली को, उसकी क्षमताओं को और उसके इतिहास को जानकर उस पर गर्व कर सकें और उससे प्रेरित हो सकें। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि कार्यक्रम में सिलसिला चल रहा है भारतीय सेना के इतिहास को जानने का और उसे समझने का, तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। श्रोताओ, ये युद्ध भारतीय सेना ही नहीं वरन आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम महत्व रखता है। पूरी दुनिया के समक्ष भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में इस युद्ध ने अपनी महती भूमिका निभाई और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना के तीनों अंगों, यानी हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, तीनों के बेहतरीन समन्वय को, जिसने सन 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और देश को गर्व और अद्भुत आत्मविश्वास से भर दिया। श्रोताओं, ज्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में।
4: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया है।
3: धन्यवाद सर।
4: एंड इन अ वे यू हैड एक्चुअली समराइज द होल थिंग।
3: अच्छा,
4: वेरी नाइसली
3: जी, धन्यवाद।
4: यू आर वेरी करेक्ट जब आपने बोला कि ये जो युद्ध था
3: जी,
4: ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें कि भारतीय सेना बिना संदेह के मतलब विजयी रही थी। और इसका कारण, जैसे कि आपने अभी बोला, इट वाज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ कॉमरेडशिप, जॉइंट मैनशिप, लीडरशिप एंड करेज ऑफ ऑल द 3 आर्म्स, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द लीडरशिप ऑफ कोर्स, जिसके कारण कि हमें इसमें विजय प्राप्त हुई थी। और इस वॉर ने जो है एक नए नेशन को जन्म दिया, जो कि हम सब जानते हैं, जिसका नाम बांग्लादेश है। ये है तो ये जो वॉर था, एक्चुअली इट कंटिन्यूड फॉर 14 डेज, 14 दिन का वॉर था ये। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न सेक्टर के एयरफील्ड्स के ऊपर। और 14 दिन के बाद, यानी कि 17 दिसंबर को जो है 71 को, विद द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था।
3: तो सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सन 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि मतलब 2 बार हम पहले भी भिड़ चुके थे, उसके बाद ये तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि हम फिर से आमने सामने आ गए?
4: बिल्कुल, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं
3: जी।
4: जैसे कि मैं बता रहा था कि इट वाज अ डेफिनेट विक्ट्री और इसमें पाकिस्तान के मतलब जो है ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था एंड उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान मतलब ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है, इसमें भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की टेरिटरी जो है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था
3: जी।
4: एंड इस युद्ध में देखिए था तो 14 दिन का, लेकिन कितना इंटेंस था वो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 3000 सोल्जर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स जेसीएस वार ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।
3: मतलब इतने कम दिनों में,
4: इतने कम दिनों
3: में इतना ज्यादा हमने जो हानि है उसको देखा युद्ध
4: दे। और इवन 12000 के करीब जो है जो सोल्जर्स थे सेम अगेन ऑफिसर जेसीओस वार जो थे वो वोंडेड हुए जो है
3: घायल हुए
4: इसमें। और इट अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन द सेम थिंग कि इतना इंटेंस था कि 600 से ज्यादा ऑफिसर्स जेसीओस वार को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे इसमें, जिसमें कि 4 परमवीर चक्र थे, 76 महावीर चक्र थे और 513 जो है वीर चक्र थे। इसके अलावा और भी काफी जो है अवार्ड्स मिले थे। तो ये दर्शाता है कि कितना इंटेंस वॉर था और ये पहला वॉर था जिसको कि हमने दोनों फ्रंट पे लड़ा, वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा, ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा। और अगेन इट वाज द फर्स्ट वॉर जिसमें कि तीनों जो हमारी सेनाओं की अंग है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक साथ मिलकर जो है इसको युद्ध को लड़ा था। तो वॉर तो 17 दिसंबर को जैसे मैंने बोला सीज फायर के बाद खत्म हो गया था, लेकिन फाइनली मतलब वी कैन से कि द चैप्टर क्लोज्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट ऑन 2 जुलाई इन 1972। ठीक है, इसके लिए जैसे आपने अभी खुद ही पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि हमें तीसरी बार जो हमारी लड़ाई हुई तो इसके लिए हमको थोड़े से ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे।
3: अच्छा।
4: हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में विचरना पड़ेगा कि जो पीछे जाना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं जब हमारे देश को आजादी मिली थी। तो आप हम सभी को विदित है कि जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान का जन्म इस तरह से हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पंजाब यानी कि हमारे पंजाब के आधे हिस्से पंजाब को डिवाइड कर दिया था। वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान को मिला के जो है वेस्ट पाकिस्तान बना। और ईस्ट पाकिस्तान है जो बंगाल प्रोविंस था उसको दो टुकड़े करे हुए थे और सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो था असम का उसको मिला के जो है ये ईस्ट बंगाल बना। अब ये दो विंग तो इन्होंने बना दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थे तकरीबन 1600 किलोमीटर थी। और लैंड कम्युनिकेशन तो था नहीं क्योंकि बीच में भारत था। तो इनके पास जो जाने का रास्ता या तो बाय एयर था या बाय सी होता था। ठीक है, तो अब इतनी दूरी जो ये दूरी थी फिजिकल जो ये दूरी थी ये इसने इनके कारण इनके दिलों में भी दूरी थी।
3: जी बिल्कुल।
4: और उसका एक और कारण और भी कई कारण तो कई थे लेकिन एक मेजर था देखें अगर हम तो सिर्फ एक रिलीजन था जो उनके बीच में कॉमन लिंक था यानी कि दोनों जो हिस्से थे वो दोनों मुस्लिम थे।
3: धर्म के आधार
4: पे जुड़े हुए थे। अदरवाइज अगर आप देखें तो उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनके लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर एक कुछ अलग था। वे भी देखते हैं हम जैसे बांग्लादेश जो है उसका इंक्लिनेशन अगर कल्चर वाइज देखे तो हमारे वेस्ट बंगाल से मिलता है पूरा का पूरा। और वैसे ही अगर आप वेस्ट पाकिस्तान देखे तो उनका कल्चर जो है पंजाब और इवन मिडिल ईस्ट उस तरफ से मिलता है। ठीक है, तो इट वाज अ वास्ट डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अगर आप ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान है वो अगर देखे तो आप इट इज मोर अकिन टू लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान, इराक, अफगानिस्तान उस तरह है। और अगर हम ईस्ट मतलब बांग्लादेश को देखें जिसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उसका इंक्लिनेशन देखें ज्यादा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है। तो किसी उस समय मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाता था किसी ने कहा था कि वेयर वेस्ट पाकिस्तान एंड्स मिडल ईस्ट बिगिंस एंड वेयर ईस्ट पाकिस्तान एंड्स साउथ ईस्ट एशिया बिगिंस। दैट्स वेरी करेक्ट ज्योग्राफिकली इफ यू सी, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि इन दोनों हिस्सों में कंट्री के काफी डिस्पैरिटीज थी और ये सिर्फ लिटरेचर और अदर फील्ड में नहीं थी, इवन इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी दोनों के अलग अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान वो काफी समृद्ध था एंड मैक्सिमम जो उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी काफी अच्छी थी एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। एजुकेशन वाइज ऑल्सो दे वर मच बेटर एंड वेस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट डोमिनेटेड इन एवरीथिंग, वो हर तरह से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता था। और उन्होंने एक तरह से एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना और ना ही उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि इनके इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए,
3: इनका
4: विकास होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं था, जबकि अगर आप देखें बांग्लादेश और उस समय कहीं पाकिस्तान, इट वॉज ए वेरी फर्टाइल लैंड, आज भी है इंडस्ट्रियल वाइज ऑल्सो, पोर्ट्स थे उसके पास, तो व्यापार के लिए मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छा वो था, बट समाउ दे नेवर पेड अटेंशन। तो है इनफैक्ट इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान की एंटायर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके टॉप मिलिट्री ब्रास थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यहाँ तक कि जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी थी, वो भी एक तरह से मतलब सब मिलके यूनानिमस थे कि भाई इनको जो है ईस्टर्न ईस्ट पाकिस्तान को हम कोई रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, ना ही हम देंगे। अच्छा। मतलब उनका एक्सेप्टेंस नहीं था पार्लियामेंट में भी, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान को भी जो ब्यूरोक्रेट्स जो आर्मी अफसोस कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो भी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के ही थे, उन्होंने वहाँ के लोकल्स को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसके कारण क्या था कि काफी बिटरनेस थी,
3: एक असंतोष तो पैदा होगा,
4: एक असंतोष तो पैदा होता ही है ना, जैसे कि और ये कहीं पे भी हो सकता है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो अगर एक और चीज जो थी जो हमने देखी है हिस्ट्री में, देखा है कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है ज्यादातर टाइम वो मिलिट्री रूल में रहा है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो इन 69 में जो जनरल याहिया खान थे मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर किया कि इलेक्शंस कराएंगे कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मतलब बनाएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो ये इलेक्शन जो थे दिसंबर में करने थे। अब इसमें जो दिसंबर में जब इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो विजयी हुई, और ईस्ट पाकिस्तान में जो है अवामी लीग के मुजब्बिर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप के साथ आई थी। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नंबर वाइज जो सीट वाइज देखा जाए तो जो अवामी लीग थी उनके पास पीपीपी से ज्यादा सीट्स थी,
3: ज्यादा थी।
4: तो अच्छा। हक उनका बना कि वो गवर्नमेंट बनाए।
3: ओके, अच्छा अच्छा।
4: अब ये बात जो है बस पाकिस्तान को स्वीकार ही नहीं थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वालों को हमारे ऊपर रूल करने के लिए या गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। तो अब एक डलाइमा आ गया। अब जब जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया, ना तो मिलिट्री ब्रास, ना वहाँ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, ना जो है पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी तैयार नहीं हो रहा था,
3: स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे।
4: तो अब वो क्या किया, उन्होंने टालना शुरू कर दिया।
3: अच्छा।
4: कि जो है उसको पोस्टपोन करना शुरू किया, गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो ये जब होने लगा तो नेचुरल है कि मुजब्बिर रहमान साहब जो थे अवामी लीग थी, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा जब हमें एक पूर्ण बहुमत मिला है तो हमें गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। इसके लिए फिर जो है उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री क्रैकडाउन किया, मतलब इन द सेंस इनको विद्रोह बोल के इनको दबाना शुरू कर दिया। एंड 25 मार्च 1971 में उस समय जनरल टिक्का खान जो थे तो ही वॉज इन बांग्लादेश कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जो है पूरी तरह से मिलिट्री जो है क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसमें कि जितनी पॉपुलेटेड सिटीज थी, ढाका हो गया, चित्तगांव हो गया और इम्पोर्टेंट टाउन थे, उसमें उन्होंने ब्रूटली जो है लोगों को मारा।
3: अच्छा।
4: तो ये अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स वगैरह थे सबको उन्होंने जो है मतलब शॉट डाउन किया, मतलब दे किल्ड देम, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करी आर्मी ने। फिर उसके बाद जो है जैसा कि होता है, इवन उसके बाद मतलब जो ये किलिंग्स थी, इट फॉलोड बाय लूट, ठीक है, रेप, आर्सन, मतलब काफी उन्होंने जो है इनको नुकसान पहुंचाया। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स से जो उनके ठिकाने थे इनके अवामी लीग के रेजिस्टेंस के, तो इनके ऊपर बम्बार्डिंग भी कराई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपना ही देश है, अपने देश के ऊपर जो है हाँ इस तरह से जो है करना शुरू किया। और ये चलता रहा, तो अप्रैल तक जो है पाकिस्तान रूलर्स ने बोला कि भाई अभी जो है हमने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है इस पाकिस्तान में, और जो अपराइजिंग थी जिसको अपराइजिंग बोल रहे थे और रिवोल्ट था, उसको हमने खत्म कर दिया है। बट एक तरह से देखा जाए तो तक जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये मन बना चुके थे कि हम अब वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और ये जो है एक तरह से उनके रिवोल्ट की जो अपराइजिंग थी एक तरह से शुरुआत कहलाई वहां से, क्योंकि जब आपने उनको इतना दबा दिया, इतनी एट्रोसिटीज कर दी हैं, तो वो जो है किसी भी तरह से अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे अवामी लीग के, इन्होंने शरण ली इंडिया में। ये सारे के सारे जो है इंडिया में आए, और अप्रैल में इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करी, जिसमें कि बांग्लादेश, उन्होंने इस पाकिस्तान को बांग्लादेश डिक्लेयर किया,
3: यहाँ भारत से,
4: भारत से जो है डिक्लेयर किया। इस बीच में जो था कि जनरल टिक्का खान से जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्यायजी थे
3: जी,
4: उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। अब उनको ये टास्क दिया गया कि आप कुछ भी हो जाए इसको खत्म करना है, ये रेबल्स जो है ये खत्म करना है, किसी भी हालत में जो है इस पाकिस्तान को नहीं अलग होने
3: दिया, विद्रोह को दबा दिया,
4: विद्रोह को दबाया जाए। तो मेजर क्रैकडाउन बिगिन अगेन, जिसमें कि बहुत ज्यादा उन्होंने कैजुअल्टीज करने शुरू करी सिविलियंस पे। अब ऐसे में क्या होता है, सिविलियंस सारे के सारे जो है भागने शुरू हुए। अब इन्होंने सबने क्या किया, उनके लिए ठिकाना क्या था, कहाँ शरण लेने के लिए, इंडिया में। एक वक्त ऐसा आ गया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बांग्लादेशी हो गए। अब उस समय हमारी भी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम 1 करोड़ लोगों को या 93 लाख लोगों को खिला सके, तो इट क्रिएटेड है डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इवन इंडिया ऑल्सो। तो फिर इंडिया ने जो है, कंट्री ने जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कि उन्होंने ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी ने जो बांग्लादेशी पे एट्रोसिटीज करी हैं उसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है इस पाकिस्तान को पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में सपोर्ट करेंगे।
3: अच्छा,
4: जो है एक तरह से मतलब जो है ये डिसाइड किया गया। तो अब इस बीच में क्या हुआ कि इस पाकिस्तान में कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, एंड जब इतना ज्यादा मतलब होने लगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी
3: जी,
4: जिसको कि अप्रैल में एस्टैब्लिश हुई, जिसको मुक्ति वाहिनी बोलते हैं।
3: अच्छा,
4: आप लोगों ने भी काफी उसका नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी। तो इसका जन्म जो हुआ वो ये क्रैकडाउन के बाद हुआ
3: जो सशस्त्र जो उनका विंग था
4: जी,
3: वो मुक्ति वाहिनी कहलाए शायद, मेरे ख्याल से सर,
4: अवामी लीग का
3: जी,
4: एक तरह से, although it was an independent organization, लेकिन ये पूरी तरह से आप जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक तरह से वो इनका सशस्त्र विंग ही था
3: जी।
4: अब इसमें क्या है, काफी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, क्योंकि इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग थे जो आए थे, पुलिस के लोग थे, तो वो सारे के सारे ट्रेन जो लोग थे वो इसमें शामिल थे,
3: ईस्ट बंगाल के जो थे,
4: ईस्ट बंगाल के जो थे वो इसमें शामिल थे। आप ये समझ सकते हैं कि जब नवंबर के टाइम पे जब लड़ाई का वक्त आ रहा था, दिसंबर जो शुरू हुई थी, उस समय इनके पास तकरीबन जो है 83,000 to 85,000 मतलब सोल्जर्स थे मुक्ति वाहिनी में। तो इसको ट्रेनिंग दी थी इंडियन आर्मी ने, ट्रेनिंग दी थी, इनको हथियार दिए थे।
3: अच्छा।
4: और इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया जब हमने जो है इस मतलब पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए जब हमने वॉर लड़ा है।
3: अच्छा।
4: उस समय इनका काफी सपोर्ट रहा जी, क्योंकि इनको डेफिनेटली इनको टेरेन के बारे में मालूम था, इनको जो है बाकी पाकिस्तान आर्मी के बारे में मालूम था, इन्फॉर्मेशन जो है काफी मतलब जो है गाइड के लिए कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। यू नो बांग्लादेश इज अ वेरी यूनिक कंट्री इन द सेंस, वहाँ पे बहुत मेजर रिवर्स जाती हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो अगर आप देखें सब उधर जाती हैं, तो ये एक मेजर लैंडमार्क्स होते हैं इन द सेंस कि नदी को कैसे पार करना है, कहाँ पार करना है, और बहुत सारे वो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स बनते थे, इसमें उनका गाइडेंस बहुत काम आया। तो ये जब चल रहा था
3: जी,
4: अब मुक्ति वाहिनी जो थी वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती थी, उनको वो एक तरह से जो है जहाँ उनकी पोस्ट होती थी उस पे मतलब जो है हिट एंड रन रहता था, अटैक्स करते थे
3: जी।
4: और उसके बाद वो क्या करते थे, जो गरिलास और फिर कितना था।
3: अच्छा।
4: तो वो इंडिया में आते थे तो उसका पीछा करते हुए कई बार जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आने लग गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा स्कर्मिशेस, तनाव होना शुरू हो गया, क्योंकि तो भाई वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी पोस्ट पे फायर करना शुरू कर दिया, जब पोस्ट पे फायरिंग शुरू हुई तो फिर इंडियन आर्मी भी जो है जाके जो है अंदर जाके उनसे लड़ने जवाब देने लगी। अच्छा, इस बीच में अगर आप देखें पॉलिटिकल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज चल रही थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान एट ऑल, वो तो मतलब एक तरह से बिल्कुल साफ दिख रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान को ये था कि जब ऐसा कुछ अगर इंडिया अटैक करता है तो एक तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा और अमेरिका सपोर्ट करेगा। समाउ इन बिटवीन लाइक वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, तो ये जो एस्पेक्ट था अमेरिका वाला ये तो मतलब नहीं आया
3: जी,
4: और चाइना ऑल्सो नेवर प्लेड एनी एक्टिव रोल। चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया लेकिन उसने अपना फ्रंट नहीं खोला था, जो हमारे लिए अच्छी बात रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय हम देखिए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में अभी तक जितने हमने वॉर देखे वो एक मतलब एक लिमिटेड जगह पे हमको लगता था कि जैसे पंजाब में हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऊपर कश्मीर में हो रहा है, ये थोड़ा यहाँ तो मतलब नेवी भी फाइट में कर रही है, और पूरा का पूरा राजस्थान पंजाब ऊपर जो है जेएन के बॉर्डर जो है ऐसे मतलब एवरीथिंग वाज एक्टिव। तो उस समय कम से कम अगर अरुणाचल और ये नहीं थे तो बाकी अदरवाइज इंडिया वाज फाइटिंग वॉर ऑन बोथ द
3: पूरी सीमा पर ही लड़ाई चल रही थी,
4: सीमा पे लड़ाई चल रही थी। तो ये जो है छोटे छोटे जो रिटेलिएटरी एक्शंस हो रहे थे और बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसमें फिर जो मई मंथ में जो है आर्मी टुक ओवर द बॉर्डर इन ईस्ट पाकिस्तान, बीएसएफ के पास होता है, तो उससे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था ताकि उनको, क्योंकि लग रहा था कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। एंड फाइनली मतलब जो है ये जो लड़ाई थी आपस में, इट लेड टू वॉर ऑफ 1971। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था ईस्ट पाकिस्तान का, बांग्लादेशी का अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जिसके कारण जो है ये लड़ाई हुई।
3: एक तरह से दोनों ही देशों के बीच में भारत आ गया,
4: भारत की है, भारत था ज्योग्राफिकली भी था, ठीक है, पॉलिटिकली भी आ गया एंड जो है फिर लड़ाई में भी आया। तो ये एक मतलब दीज आर द सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण ये युद्ध हुआ था जो है। अब इस युद्ध में जो है क्या हो रहा, किस तरह से चला हुआ, इसमें हम आर्मी का कैसे रोल रहा, नेवी का कैसे किया, एयरफोर्स का क्या रोल रहा, एंड आई सजेस्ट हम इसको हम आगे एपिसोड में कवर करेंगे, और हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने किस तरह से वो लड़े देश के लिए और हाउ दे रियली मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे जो है।
3: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज हमने बात की कि क्या थी वो पृष्ठभूमि जिसके कारण सन 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने थे। जानेंगे इस युद्ध के बारे में हर बात तफसील से, और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इस महत्वपूर्ण युद्ध में क्या भूमिका अदा की, हमारे कार्यक्रम के अगले कुछ एपिसोड्स में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा के साथ कि हम हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को आपसे यूं ही जानते रहेंगे।
4: या श्योर पूर्वा जी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस एंड थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद श्रोताओं एंड जय हिंद पूर्वा जी।
3: जय हिंद सर। तो ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपनी पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारतीय नौसेना सागर की पहरी के बारे में। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना पर, जो हमारे सागर के प्रहरी भी हैं।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादाजी, मैं नौसेना की वेबसाइट देख रही हूँ, पर यहाँ तो मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। ये फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट क्या होते हैं? क्या ये सब जहाज है? दादू, मैं तो टोटली कंफ्यूज हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे समझूं इस नौसेना को।
2: अरे रुचि बिटिया, इतना उलझने की क्या जरूरत है? देखो, जैसे सड़क पर कार, बस और ट्रक अलग अलग होते हैं, वैसे ही समंदर में अलग अलग तरह के जहाज होते हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं।
1: अच्छा, अब समझी मैं। दादू, हमारी भारतीय नौसेना की ताकत क्या है?
2: बिटिया, भारतीय नौसेना एक थ्री डायमेंशनल फोर्स है। इसका मतलब है कि हमारी ताकत सिर्फ पानी की सतह यानी सरफेस तक सीमित नहीं है। हम पानी के नीचे सब सरफेस और आसमान यानी हवा में एक साथ हमला करने की क्षमता रखते हैं।
1: तो ये फिर कोस्ट गार्ड और नेवी में क्या अंतर है?
2: रुचि बिटिया, पहले भी हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर चुके हैं।
1: वो तो है।
2: दरअसल भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, लेकिन इसका मुख्य काम समुद्र में कानून का पालन करवाना और समुद्री सुरक्षाएं बनाए रखना होता है।
1: दादू, क्या इंडियन कोस्ट गार्ड का बस यही काम है?
2: नहीं बिटिया, बस इतना ही नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्य काम तो समुद्र के तटों की रक्षा, पानी के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकना और संकट के समय मछुआरों की सुरक्षा करना होता है।
1: ये तो ठीक है। और भारतीय नौसेना?
2: बिटिया, नौसेना का कैनवास बहुत बड़ा है। दरअसल ये एक ब्लू वाटर नेवी है। इनका काम युद्ध लड़ना, गहरे समुद्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना और दुश्मन के बेड़े को रोकना है। तुम्हें पता है, इंडियन नेवी को भारत की समुद्री सीमाओं का अंतिम रक्षक कहा जाता है।
1: लगता है अब इस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। दादाजी, क्या आप मेरे सवालों के लिए तैयार हैं?
2: हाँ हाँ बिल्कुल चिड़िया रानी, बिल्कुल।
1: दादू, आपको पता है, एक दिन मैं समुद्री जहाजों की तस्वीरें देख रही थी।
2: अच्छा।
1: मैंने उनमें एक बड़ा सा युद्धपोत देखा। क्या वो भी तटरक्षक बल का जहाज है?
2: नहीं बिटिया, वो तटरक्षक का जहाज नहीं है, वो तो नौसेना का डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर बहुत शक्तिशाली युद्धपोत होते हैं जिनका उपयोग युद्ध के समय दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से रक्षा करने के लिए किया जाता है बिटिया।
1: मतलब नौसेना के जहाज तटरक्षक के जहाजों से अलग होते हैं दादाजी?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल। नौसेना के पास बहुत बड़े और अत्याधुनिक युद्धपोत होते हैं। INS विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है। इसे ही अंग्रेजी में एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं।
1: अच्छा दादू, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये क्या काम करता है?
2: एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा विशाल जहाज होता है जिसके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। इस पर रनवे, कंट्रोल टावर, रहने की जगह, हथियार प्रणाली और कई तकनीकी सुविधाएं होती हैं।
1: अच्छा, तो इसका मतलब इसे ही समुद्र पर तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों सैनिक और अधिकारी एक साथ रहकर काम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बिटिया, बिल्कुल सही।
1: दादाजी, फिर तटरक्षक बल के पास कैसे जहाज होते हैं?
2: बिटिया, तटरक्षक बल के जहाज नौसेना जितने बड़े युद्धपोत नहीं होते, लेकिन वे बहुत तेज और चुस्त होते हैं।
1: अच्छा।
2: उनके पास ऑफशोर पेट्रोल वेसल होते हैं। इन जहाजों का काम समुद्री सीमा में गश्त करना, तस्करी रोकना, मछुआरों की मदद करना और किसी आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाना होता है।
1: मतलब वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और सहायता के लिए काम करते हैं।
2: बिल्कुल सही समझी बिटिया रानी, बिल्कुल सही। तटरक्षक बल मुख्यतः समुद्री कानून लागू करवाने और मानवीय सहायता के काम करता है।
1: और अगर कोई नाव समुद्र में फंस जाए तो?
2: तब तटरक्षक बल तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाता है और लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है।
1: अच्छा, क्या नौसेना और तटरक्षक बल एक दूसरे के साथ काम करते हैं?
2: हाँ बेटा, कई परिस्थितियों में दोनों मिलकर काम करते हैं। समुद्री सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए समन्वय बहुत जरूरी होता है।
1: दादाजी, अब समझ में आता है कि समुद्र की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती है।
2: हाँ बेटा, समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के पीछे नौसेना और तटरक्षक बल के जवानों की कड़ी मेहनत और सतर्कता होती है।
1: समझ गई दादाजी मैं। नेवी समंदर की तलवार है तो कोस्ट गार्ड उसकी ढाल है।
2: हाँ, बिल्कुल सही समझी बिटिया, बिल्कुल सही। और उनका मंत्र भी यही है, शम नो वरुणः, मतलब समंदर के देवता हमारे लिए शुभ हों।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मैं जानती हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंडियन नेवी डे को किस दिन मनाया जाता है?
2: बिटिया, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
1: अच्छा, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है दादाजी?
2: हाँ बिल्कुल है,
1: तो फिर सुनाइए ना।
2: बेटा, ये दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा हुआ है। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस साहसिक ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बिना किसी नुकसान के दुश्मन के जहाजों को तबाह कर दिया था।
1: तभी ये दिन विजय का प्रतीक बन गया दादाजी। और इसीलिए इस ऐतिहासिक जीत और नौसेना के जांबाजों के बलिदान को याद करने के लिए इस दिन को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है।
2: हाँ बेटा, तुम जानती हो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से प्रेरित होकर भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज भी मिला है, जो हमारी समुद्री विरासत पर गर्व का प्रतीक है।
1: अच्छा, दादाजी, इंडियन नेवी के पास किस तरह के हथियार हैं?
2: बेटा, इनके पास अत्याधुनिक हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, वरुणास्त्र, टॉरपीडो और MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं। तुम जानती हो बेटा, नेवी का गौरव है उनका विमान वाहक पोत।
1: दादू, क्या हमने भी कोई स्वदेशी पोत तैयार किए हैं?
2: हाँ बिटिया, हमारे पास INS विक्रमादित्य और पूरी तरह स्वदेशी INS विक्रांत है। ये समंदर में तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन है। इन पर से MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं।
1: वाह दादाजी वाह, यानी INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का चलता फिरता किला है।
2: हाँ बिटिया,
1: लेकिन दादाजी, क्या इन विशाल जहाजों को समंदर के अंदर छिपी पनडुब्बियों और दुश्मन की मिसाइलों से खतरा नहीं होता? इनकी सुरक्षा के लिए भी तो नेवी के पास सुरक्षा कवच होता होगा ना?
2: वाह बिटिया, बहुत गहरा सवाल पूछा तुमने। समंदर में ये विशाल जहाज कभी अकेले नहीं चलते, इनके चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य चक्रव्यूह होता है, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप या कैरियर बैटल ग्रुप कहते हैं।
1: हाँ सच में? क्या दादू, ये अभेद्य चक्रव्यूह किस तरह के होते हैं?
2: बिटिया, सुरक्षा का पहला घेरा आसमान से बनता है, जिसमें जहाज पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव KA-31 जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नजर रखते हैं।
1: और दूसरा कवच?
2: जहाजों का दूसरा कवच पानी की सतह पर होता है। कहने का मतलब है कि विमान वाहक पोत के साथ हमेशा डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट चलते हैं। ये जहाज आधुनिक बराक 8 मिसाइलों और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस होते हैं, जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी इतिहास के एक नए पन्ने की एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज हम आपको 1857 की क्रांति के उस नायक से रूबरू करने जा रहे हैं जिनकी ख्याति उस समय तात्या टोपे से कम नहीं थी। इस नायक का नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाहियों में से एक थे। 80 वर्ष की आयु में सन 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और बहुत से युद्धों में विजय हासिल की। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शाही परिवार में सन 1777 में हुआ था।
1: दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह महज विद्रोह भर या साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत थी। मेरठ के बैरकपुर की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने क्रांति का जो बिगुल बजाया, उसकी गूंज बिहार के आरा तक भी पहुंची और वहां के बाबू कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 25 जुलाई को दानापुर में क्रांति का बिगुल बजाकर सिपाही 26 जुलाई को सोन नदी पार कर 27 जुलाई 1857 को आरा पहुंचे। यहां बाबू कुंवर सिंह उनके नेता बने। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कुंवर सिंह जनक्रांति के नेता भी बने। हिंदी भाषी जनता ने उन्हें तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा तो वहीं अंग्रेजों ने हीरो ऑफ भोजपुर कहा।
0: तो इतिहास क्यों ना कहानी को उसके आधार से शुरू किया जाए।
1: ठीक है श्रोताओं, कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उदार और दानी व्यक्ति थे। अंग्रेजों की नजर में वो एक अच्छे जमींदार शासक थे, जो प्रजा से जोर जबरदस्ती लगान नहीं वसूलते थे। साहबजादा सिंह को 4 पुत्र हुए, कुंवर सिंह, दयाल सिंह, राजपति सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह सबसे बड़े थे और बचपन से ही पढ़ने लिखने से कतराते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद, कुश्ती और तलवारबाजी में खूब लगता था।

0: कुंवर सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए बेहतर योद्धा के रूप में चर्चित होने लगे। इस बीच उनके पिता मुकदमे में फंसे और उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। बाबू कुंवर सिंह चापलूसों से दूर रहते थे, इसीलिए उनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती थी। उनके पिता के दरबार में कई चापलूस थे जिन्हें हटाने के लिए कुंवर सिंह ने पिता को सलाह दी थी। जब चापलूसों को नहीं हटाया गया तो वे अलग रहने लगे और जितौरा में अपना आवाज बनाया।
1: वृद्धावस्था के कारण साहबजादा सिंह की मृत्यु 1883 में हो गई। पिता के निधन के बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्वामी बने। बाबू कुंवर सिंह गद्दी पर बैठते ही जगदीशपुर के विकास में लग गए। उन्होंने अपने जमींदारी काल में काफी जनसेवा की। जितौरा में तालाब का निर्माण कराया तो वहीं मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण एक साथ कर कुंवर सिंह ने सर्वधर्म संभाव का बेहतर उदाहरण उस दौर में पेश किया। कुंवर सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। अंग्रेजों से भी अच्छी पटती थी। समय समय पर अंग्रेज अफसरों के साथ वे जितौरा के जंगलों में शिकार को जाते थे। अंग्रेज भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और आतिथ्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
0: कुंवर सिंह ने अपने जमींदारी काल में पैतृक संपत्ति की भी वृद्धि की, लेकिन अधिक खर्च और कुप्रबंधन के कारण जमींदारी की स्थिति दयनीय हो गई। उन पर ऋण भार बढ़ने लगा। वे अपना खर्च कम नहीं करते थे। महाजन और साहूकार उनका शोषण करने लगे। ऐसे में कुंवर सिंह पर 17 लाख ऋण हो गया। महाजनों के चंगुल से मुक्त होने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार को आवेदन दिया। इसी बीच 1857 तक ऋण बढ़कर 20 लाख तक हो गया था। वे चाहते थे कि सरकार इसकी व्यवस्था कर दे जिससे ऋण से मुक्ति मिले।
1: लेकिन तारीख स्थानीय महाजन नहीं चाहते थे कि कुंवर सिंह ऋण से मुक्त हो। वो उनको और फंसाना चाहते थे। कुंवर सिंह को कहीं से ऋण चुकाने के लिए कर्ज नहीं मिल रहा था और अंग्रेज सरकार भी उन्हें मदद नहीं कर रही थी। 25 जून 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने सरकार को आवेदन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अभी मामला चल ही रहा था कि ठीक एक माह बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह ने भी विद्रोह में भाग लिया।
0: 1845-46 में सोनपुर मेले के दौरान एक बैठक में क्रांतिकारियों के साथ उनकी भेंट हुई थी। कुंवर सिंह का संबंध नाना साहब के साथ था और वे कई बार उनसे मिल चुके थे। बहादुर शाह के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनी थी।
1: दानापुर के सैनिकों ने जब नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तब कमिश्नर ने कुंवर सिंह और डुमराव के जमींदार को समझाने के लिए बुलाया। कुंवर सिंह ने स्पष्ट कहा था कि शाहबाद के लोग मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह के सिपाही मेरी बात नहीं मानेंगे। इससे कमिश्नर खफा हो गया। कुंवर सिंह देश और बिहार की परिस्थितियों से अवगत थे। पीर अली की फांसी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इधर दिल्ली और मेरठ की घटना से बिहार के अंग्रेज अधिकारी चिंतित थे। दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो चुका था। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर जो बिगुल बजाया, उसकी आवाज बिहार में भी स्पष्ट सुनाई पड़ी।

0: अंग्रेज कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने की फिराक में लग गए। वहीं कुछ अंग्रेज अधिकारी इसके बाद के परिणामों से सशंकित थे कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो। कमिश्नर टेलर पर पहुंची मजिस्ट्रेट की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने 2 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के मित्र और रईस डिप्टी कलेक्टर मौलवी सैयद अजीमुद्दीन को बाबू साहब को पटना लाने के लिए भेजा। उस समय कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। कुंवर सिंह ने स्थिति को भांपते हुए अपनी अस्वस्थता जाहिर की और पटना नहीं गए।
1: इसके पूर्व पटना में मौलवियों की फांसी और टेलर के आतंकी कार्य को वे सुन चुके थे। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई और उन्होंने अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार किया। दानापुर के सिपाहियों के विद्रोह को लेकर उन्होंने अपने भाई अमर सिंह और कई ख्याति प्राप्त लोगों के साथ विचार विमर्श कर हालात को जानने का प्रयास किया। सभी दानापुर के सिपाहियों का साथ देने के लिए तैयार थे और अधिकतर लोग कुंवर सिंह को सिपाहियों का नेता बनाना चाहते थे।
0: 29 मार्च 1857 को 34वीं पलटन के विद्रोह की जो आवाज मंगल पांडे की शहादत से उठी, उसका विद्रोही स्वर मेरठ और दिल्ली में सुनाई दिया। इसका प्रभाव दानापुर की छावनी पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों की योजना 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने की थी। इसी बीच दिल्ली से खबर आई कि सिपाहियों ने वहां कब्जा जमा लिया है और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक बना दिया गया है। चारों ओर संघर्ष का शंखनाद हो गया था।
1: उधर टेलर पटना में लोगों को फांसी देकर आतंक मचा रहा था। कमिश्नर ने हालात देखते हुए सेना को पटना आने को कहा। इस बीच 24 जुलाई को 37 नंबर की यूरोपियन फौज दानापुर पहुंची। अगले दिन देशी फौज अंग्रेज अफसर और सैनिकों से भिड़ गई और मेजर जेम्स होम की हत्या कर दी। देशी सिपाही वर्दी उतार हथियार लेकर आगे बढ़े। सिपाही सोन नदी पार करना चाहते थे, वहीं सिपाहियों का पीछा करने के लिए अंग्रेजी सेना आ गई।
0: हालांकि 26 जुलाई को देशी सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। इधर हरे कृष्ण सिंह और रणदलन सिंह दानापुर जाकर सिपाहियों से बात कर उनको आरा में प्रवेश कराने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि नेतृत्व कुंवर सिंह करेंगे। हरे कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 27 जुलाई को वे सुबह आरा पहुंचे। उसी दिन बाबू कुंवर सिंह भी आरा आए। आरा स्थित बाबू बाजार के मकान पर सिपाही एकत्र हुए। बिहार की धरती पर कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों का साथ देकर क्रांति की धारा को तेज कर दिया था।

0: आरा पर कब्जे के बाद बाबू कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के करीब 5,000 क्रांतिकारी सिपाहियों के शौर्यमान नेता बन गए। कुंवर सिंह का प्रभाव इतना बढ़ गया कि खेत खलियानों में कुंवर सिंह पर गाने गाए जाने लगे। बिहार में जो विद्रोह हुआ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, इसमें जनता ने खुलकर भाग लिया। पूरे शाहबाद में विद्रोह का क्रांतिकारी तेवर अपना रूप ले चुका था। छोटे मोटे जमींदार और सभी राजपूत कुंवर सिंह के विद्रोह के साथ थे। आरा कब्जे के दौरान जेल को तोड़कर करीब 400 कैदियों को छुड़ा दिया गया था। बाद में सरकारी खजाने से 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस लूट में अंग्रेजों के नजीर पहरेदारों ने भी साथ दिया।
1: सोन पार कर कुंवर सिंह से मिलने तक बागियों की संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी थी, जो शाहबाद के लिए अनोखी बात थी। कुंवर सिंह ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों के पास जहां आधुनिक हथियार थे, वहीं कुंवर सिंह और उनके आदमियों के पास बहुत साधारण हथियार थे। ब्यायल कोठी की लड़ाई करीब एक सप्ताह तक चली थी। कहा जाता है कि पानी की कमी होने पर कोठी में तैनात सिख सिपाहियों ने 18 फीट जमीन खोदकर पानी की व्यवस्था की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। दानापुर से सेना भेजना आसान नहीं था। 27 जुलाई को 37 नंबर की गोरी सेना भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन नदी में पानी कम होने से जहाज रुक गया। बाबू कुंवर सिंह की सेना द्वारा आरा की घेराबंदी और कोठी में घिरे अंग्रेजों की रक्षा का प्रश्न सरकार को परेशान कर रहा था।
0: हालांकि उनकी रक्षा के लिए 500 यूरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन डनवर ने किया। बाबू कुंवर सिंह के सैनिकों से डनवर की फौज का मुकाबला आरा से 3 मील दूर पर हुआ। रात का फायदा उठाकर काली पोशाक में कुंवर सिंह की सेना ने सफेद पोशाक पहने अंग्रेजों को चांदनी रात में पहचान कर हमला किया। सैनिकों को मरते देख अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। कई अंग्रेज सिपाही लापता हो गए। इस युद्ध में डनवर मारा गया। जो बच गए थे किसी तरह जान बचाकर भागे। ये कुंवर सिंह की अपूर्व विजय थी। दानापुर से सैनिक भेजे नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुंवर सिंह के समर्थक सैनिकों की संख्या 10,000 तक हो गई थी। आरा पर कुंवर सिंह का पूर्ण अधिकार हो गया था। इस विजय के बाद कुंवर सिंह को लोगों ने तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा। बाबू कुंवर सिंह ने अपना राज्य हरे कृष्ण के सहयोग से स्थापित किया। कुंवर सिंह ने बेहतर शासन के लिए कई व्यवस्थाएं की।
1: डनवर की पराजय और आरा में कुंवर सिंह के कार्यों से अंग्रेजों में डर पैदा हो गया था। इस बीच मेजर आयर ने आरा की ओर कूच किया। 2 अगस्त को कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ उनका मुकाबला हुआ। अंग्रेजों के पास तोपें थी। कुंवर सिंह के सैनिक पीछे हटे, आयर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बीबीगंज के पास एक नदी मिली, जहां भीषण संग्राम हुआ। कुंवर सिंह ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इस हमले से आयर घबरा गया। घंटों भयंकर संघर्ष जारी रहा। 3 अगस्त 1857 को आयर आरा पहुंचा। इसे गोरों को राहत मिली। आयर ने आरा पहुंचकर 2 दिन के भीतर सभी के हथियार जमा कर लिए और कोर्ट मार्शल कराकर संदिग्ध लोगों को फांसी पर लटका दिया।
0: 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के नजदीक गंगा नदी पार करते समय बाबू वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों की गोली लग गई। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ माँ गंगा को अंतिम दान कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 24 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।
1: कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे, इस वीर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और मरते समय तक जगदीशपुर को आजाद रखा। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए 23 अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। बाबू कुंवर सिंह कहा करते थे, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी वचन के आधार पर जिए।

0: एकता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। साहित्यकार प्रोफेसर चित्रा सिंह के काव्य संग्रह नदी की गीली आंखें का लोकार्पण एवं परिचर्चा आज शाम 6 बजे राज्य संग्रहालय में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में रविवार को दोपहर 2 बजे से नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जाएगा। तबले की गूंजती थाप और संतूर की मधुर झनकार ने जैसे ही सुरों का संगम रचा, सभागार मानो संगीत की एक अलग ही दुनिया में खो गया। जी हाँ, इसके बाद ओडिसी नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने शाम को सौंदर्य और अभिव्यक्ति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा आयोजित नेक्स्ट जैन टैलेंट समिट 2026 शनिवार को कला और परंपरा का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया। शाम का सबसे बड़ा आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक प्रसेन जीत पोद्दार और पद्मश्री डॉ. तरुण भट्टाचार्य की संतूर तबला जुगलबंदी रही राग किरवानी पर आधारित इस प्रस्तुति में छपताल की विलंबित लय से शुरुआत कर 3 ताल की मध्य लय में झाला तक की संगीतमय यात्रा ने श्रोताओं को बांधे रखा। सवाल जवाब की शैली में संतूर की मीड, गमक और जाला के साथ तबले की लयकारी तिहाई और सम पर सटीक नियंत्रण ने प्रस्तुति को ऊंचाई दी। नृत्य खंड में ओडिसी नृत्य के तहत राग पट्टदीप और ताल त्रिपुट पर आधारित भावा अभिव्यक्ति के माध्यम से गजेंद्र मोक्ष और द्रौपदी चीरहरण को दिखाया। डॉक्टर गुरु गजेंद्र कुमार पांडा के निर्देशन में प्रस्तुति हुई। आलियंस डी फ्रांसिस में शनिवार से 2 दिवसीय सिनेकारी का 8वां संस्करण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में सिनेमा, कविता और कला का संगम देखने को मिला। आयोजक सुदीप सोहनी ने बताया कि हमारा उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां कला, सिनेमा, कविता और विचार एक साथ आए। पहले दिन का प्रमुख आकर्षण सुदीप सोहनी की फिल्म जग्गू और मागाहारी का प्रदर्शन रहा। और अब मौसम पर एक नज़र। मई की शुरुआत भी बदले मौसम के साथ हुई। जी हाँ, शनिवार को कई जिलों में आंधी, तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश बौछारों की स्थिति रही। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं ओले भी गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि 3-4 दिन बादल, तेज हवा, बारिश बौछारों की स्थिति बन सकती है। खास पूर्वी मध्य प्रदेश, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में इस तरह की स्थिति बन सकती है। भोपाल में दोपहर तक धूप और आंशिक बादल रहे। दोपहर बाद 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। शाम तक 2 मिलीमीटर बारिश हुई। परिक्रमा में आज बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल। हमें दे अनुमति कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

98.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान।

अभी आपने सुना शान की आवाज में मध्य प्रदेश गान। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।

मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए, अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: आज हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा। इस काव्य ग्रंथ में यशोधरा की विरह व्यथा को, राहुल जननी के मातृत्व रूप को बुद्ध देव की तपस्या के समतुल्य चित्रित किया है। मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य ग्रंथ में जहां विरह यशोधरा की आत्मा है, वहीं ये काव्य यशोधरा का ऐसा चित्र खींचता है जिसमें आंसुओं की आर्द्रता भी है, वेदना की विकलता भी है, आत्मसम्मान का तेज भी है, प्रिय के व्यवहार का क्षोभ भी है, राहुल के प्रति अपार स्नेह भी है और खुद के लिए बहुत सारे प्रश्न भी। आइए सुनते हैं काव्य ग्रंथ यशोधरा का पाठ। अब जो काव्यांश आप सुनेंगे उसमें सिद्धार्थ इस असार संसार में नश्वरता और अस्थिरता पर विचार मग्न होकर सोच रहे हैं।
1: घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहां जाता है, रह जाता है तक्र। पिसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, सहें अंततो गत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, कैसे परित्राण हम पावें, किन देवी को रोवें गावें, पहले अपना कुशल मनावें, वे सारे सुर चक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, बाहर से क्या जोड़ू जाड़ू, मैं अपना ही पल्ला झाड़ू, तब है जब वे दांत उखाड़ू, रह भव सागर नक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, सौ सौ रोग खड़े हों सम्मुख, पशु जो हों बांध परा, देख जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा, रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर भरा भरा कुछ न किया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा। मरने को जग जीता है, रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट भरा हुआ भी रीता है, यह भी पता नहीं कब किसका, समय कहां आ बीता है, विष का ही परिणाम निकलता, कोई रस क्या पीता है, कहां चला जाता है चेतन जो मेरा मन चीता है, खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहां सब तीता है, भुवन भवाने आ पहुंचा मैं, अब क्यों तू यों भीता है, अपने से पहले अपनों की सुगम गति गौतमी गीता है। कपिल भूमि भागी क्या तेरा, यही परम पुरुषार्थ हाय, खाए पिए बस जिए मरे तू, यों ही फिर आए जाए, अरे योग के अधिकारी कह यही तुझे क्या योग्य हाय, भोग भोग कर मरे रोग में बस वियोग ही हाथ आए, सोच हिमालय के अधिवासी ये लज्जा की बात हाय, अपने आप तपे तापों से तू ना तनिक भी शांति पाए, बोल युवक क्या इसीलिए है यह जीवन अनमोल हाय, आकर इसके दांत तोड़ दे जरा भंग कर अंग काए, बता जीव क्या इसीलिए है यह जीवन का फूल हाय, पका और कच्चा फल इसका तोड़ तोड़ कर काल खाए, एक बार तो किसी जन्म के साथ मरण अनिवार्य, हाय बार बार धिक्कार, किंतु यदि रहे मृत्यु का शेष दाय, अमृत पुत्र उठ कुछ उपाय कर, चल चुप हार न बैठ। हाय खोज रहा है क्या सहाय तू, मेट आप ही अंतर आए। पड़ी रह तू मेरी भव भुक्ति, मुक्ति हेतु जाता हूं यह मैं, मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति। मेरा मानस हंस सुनेगा और कौन सी युक्ति, मुक्ता फल निर्द्वंद चुनेगा, चुन ले कोई शुक्ति।
0: और फिर सिद्धार्थ निश्चय करते हैं कि इस तरह से जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सुख सुविधाओं के दायरे से बाहर निकल सत्य की कठोर चट्टानों से टकराना होगा। उनका निश्चय पक्का था। उनके भीतर उठे प्रबल प्रश्नों ने उन्हें विवश कर दिया था। उन्हें सांसारिक सुखों को नहीं, निर्वाण की तलाश थी। वे अनित्य से नित्य की ओर बढ़ना चाहते थे। वे बोधिसत्व को पाना चाहते थे और रात्रि में वे निकल पड़े अपने प्रश्नों की तलाश में।
1: आज्ञा दूं या दूं मैं अकाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रख अब अपना यह स्वप्न जाल, निष्फल मेरे ऊपर न डाल। मैं जागरूक हूं ले संभाल, निज राज पाठ धन धरण धाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रहने दे वैभव यश शोभ, जब हम ही नहीं क्या कीर्ति लोभ। तू क्षम्य करूं क्यों हाय क्षोभ, थम थम अपने को आप थाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख। मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह वह कब तक है प्राण पात्र। भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, यह आद्र शुष्क व उष्ण शीत, यह वर्तमान यह तू प्रतीत। तेरा भविष्य क्या मृत्यु भीत, पाया क्या तूने घूम घाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, मैं सूंघ चुका वे फुल फूल, झड़ने को हैं सब जटित झूल। चख देख चुका हूं मैं समूल, सड़ने को हैं वे अखिल आम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, सुन सुनकर छू छू कर अशेष, मैं निखर चुका हूं निर्निमेश। यदि राग नहीं तो हाय द्वेष, चिर निद्रा की सब झूम झाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, उन विषयों में परित्रक्त हाय, करते हैं हम उल्टे उपाय। खुजलाऊं मैं क्या बैठ काए, ओ जाए और भी प्रबल पाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, सब देकर भी क्या आज दीन, अपने या तेरे निकट हीन। मैं हूं अब अपने ही अधीन, पर मेरा श्रम है अविश्राम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, इस मध्य निशा में आ अभाग, तुझको तेरे ही अर्थ त्याग। जाता हूं मैं यह वीतराग, दयनीय ठहर तू क्षीण शाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, तू दे सकता था विपुल वित्त, पर भूले उसमें भ्रांत चित्त। जाने दे चिर जीवन निमित्त, दूं क्या मैं तुझको हाड़ चाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रह काम क्रोध मद लोभ मोह, लेता हूं मैं कुछ और टोह, कब तक देखूं चुपचाप ओह, आने जाने की धूमधाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे ओक न कर तू रोक टोक, पथ देख रहा है आर्त लोक, मेटू मैं उसका दुख शोक, बस लक्ष्य यही मेरा ललाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु बांधू अपना पुरुषार्थ सेतु, सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, तब है मेरा सिद्धार्थ नाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। वह कर्म कांड तांडव विकास, बेदी पर हिंसा हास रास, लोलुप रसना का लोल लास, तुम देखो ऋग यजु और साम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ, पाहे स्वराज बड़ सृष्टि लाभ, जा दंड भेद जा साम दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तब जन्म भूमि तेरा महत्व, जब मैं ले आऊं अमृत तत्व, यदि पा न सके तू सत्य सत्व, तो सत्य कहां भ्रम और भ्राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे पूज्य पिता माता महान, क्या मांगू तुझसे क्षमादान, क्रंदन क्यों गाओ भद्रगान, उत्सव हो पुरपुर ग्राम ग्राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे मेरे प्रतिभूतात नंद, पाऊं यदि मैं आनंद कंद, तो क्यों ना उसे लाऊं अमंद, तू तो है मेरे ठौर ठाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। अय गोपे तेरी गोद पूर्ण, तू हास विलास विनोद पूर्ण, अब गौतम ही हो मोद पूर्ण, क्या अपना विधि है आज वाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। क्या तुझे जगाऊं एक बार, पर मैं अब भी अप्राप्त सार, सो अभी स्वप्न ही तू निहार, हे शुभे श्वेत के साथ श्याम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। राहुल मेरे ऋण मोक्ष माप, लाऊं मैं जब तक अमृत आप, माही तेरी माँ और बाप, दुल मातृ हृदय के मृदुल दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यह घंतम सन सन पवन जाल, भन भन करता यह काल व्याल, मूर्छित विषाक्त वसुधा विशाल, भय कह किस पर यह भूरि भाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। छंदक उठला निज वाजी राज, तज भय विस्मय सज शीघ्र साज, सुन मृत्यु विजय अभियान आज, मेरा प्रभात यह रात्रि आम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। वह जन्म मरण का भ्रमण भान, मैं देख चुका हूं अपरिणाम, निर्वाण हेतु मेरा प्रयाण, क्या वात वृष्टि क्या शीत घाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे राम तुम्हारा वंश जात, सिद्धार्थ तुम्हारी भांति तात, घर छोड़ रहा है यह आज रात, आशीष उसे दो लो प्रणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम।
2: इधर सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक से कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में रहकर जन्म मरण के चक्र के कष्टों को देख लिया है, मैं इस क्षणभंगुर संसार को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, और राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी भांति घर छोड़कर जनसाधारण के लाभ हेतु जा रहा हूँ। इधर सिद्धार्थ के गृह त्याग कर चले जाने के पश्चात गोपा के हृदय की व्यथा इन काव्यांशों में सुनिए।
3: नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है, हाँ जग कर क्या पाया, मैंने वह स्वप्न भी गंवाया है, सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा बायां नयन फड़कता है, मैं कैसे मानूं? देख यहां यह हृदय धड़कता है। आली वही बात हुई, भय जिसका था मुझे, मानती हूं उनको गहन वनगामी में, ध्यान मग्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा, क्यों जी प्राण वल्लभ कहूं या तुम्हें स्वामी में? चौंक कुछ लज्जित से बोले हंस आर्य पुत्र, योगेश्वर क्यों ना हूं गोपेश्वर नामी में? कुछ चिंता छोड़ो किसी अन्य का विचार करूं, तो हूं जार पीछे प्रिय पहले हूं कामी में। कह आली क्या फल है अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का, मूल्य नहीं क्या कुछ भी मेरी इस नग्न लज्जा का? सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व कब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते? सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब, रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे नाथ तुम, हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहां जाओगे नाथ तुम? अपना कर संपूर्ण सृष्टि को, मुझे न अपनाओगे नाथ तुम? उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे। सास ससुर पूछेंगे तो उनसे क्या अभी कहूंगी मैं, हाँ गर्विता तुम्हारी, मौन रहूंगी, सहूंगी मैं। आप बिना घूंघट के आई उदार इस घर में, मुंह किंतु छिपाकर अटके तुम किस दुर्दंत अंतर में।
2: गोपा की व्यथा ये है कि वो बिना घूंघट के इस घर में आई थी, फिर सिद्धार्थ रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर क्यों गए।
0: अभी आपने सुना कि सिद्धार्थ संसार के चक्र को देखकर कितने विकल हैं। इसी भाग में आपने ये भी सुना कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ये भाग आज यहीं संपन्न होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का अगला भाग आप रेडियो आजाद हिंद पर सुनेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, धनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है 90.8 MHz पर। दिन के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, चलते चलते आपको अवगत करा दें आज की सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। शाम 6 बजे सुनेगा वतन का राग, जो केंद्रित है डॉक्टर जाकिर हुसैन पर। 6:30 बजे सुनेगा बाल सभा, विषय होगा मन की गुल्लक। 7 बजे टैग गुरु, विषय दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीक के फायदे। 7:30 बजे कार्यक्रम होगा हमारी सेना हमारा गर्व, विषय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। 8:30 बजे सुनेगा आजाद हिंद, जो केंद्रित है बाबू वीर कुंवर सिंह पर। 9:30 बजे काव्य गुंजन, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे यशोधरा पार्ट 1। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दिन के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी के। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप यूं ही बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, भारत भारती कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, लोकगीतों में एक पूरी पीढ़ी, एक सदी दर्ज होती है। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, उनकी खुशी उल्लास, उनके पर्व, सभी कुछ उनमें होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक संगीत एक सांगीतिक दस्तावेज है किसी संस्कृति का। एक मन से उठा राग समूह का राग बन जाता है, एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचता हुआ ये सदियों की यात्रा तय करता है। तो आइए कल से चलकर आज तक पहुंची इस स्वर यात्रा का आस्वादन करें। मालवा अंचल के कुछ लोकगीत आपको सुनवाते हैं आज भारत भारती कार्यक्रम में। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी। कार्यक्रम का शुभारंभ इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, किसी घर में बच्चे के जन्म से बड़ा भला कौन सा उत्सव हो सकता है। बच्चे का जन्म यानी घर के आंगन में एक फूल का खिल जाना, जीवन की बगिया का महक जाना। शहरी जीवन की बात हो या ग्रामीण अंचल के जीवन की, बच्चे के जन्म की खुशी दोनों ही जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मालवा अंचल में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला ये लोकगीत स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

बच्चे के जन्म के साथ खुशियों का वातावरण छा जाता है पूरे घर में। उसकी छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान, जरा सा बोल देना, जैसे खुशियों का झरना बह उठता है घर में। सभी लोग खिलखिला उठते हैं। घर के हर सदस्य का ध्यान उस बच्चे पर ही होता है, वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बच्चे की हर बात मन भावन होती है। हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए सोती हुई बिटिया, पालने में माँ उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है। कैसा अद्भुत दृश्य है, एक माँ जब अपनी बेटी को झूले में झुलाती हुई लोरी गाती है तो किस तरह अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करती है, इसी का वर्णन इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।

मालवांचल में श्राद्ध पक्ष में संजा पर्व मनाया जाता है। छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं का ये पर्व है। गोबर से कुछ चित्र बनाए जाते हैं, चांद और सूरज की आकृति बनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं और जीवन के सभी संस्कारों से इन छोटी छोटी कन्याओं को शिक्षित किया जाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसी पर्व पर गाया जाने वाला लोकगीत स्वाति उखले और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, हमारा लोक संगीत संस्कार गीतों से समृद्ध है। हर संस्कार पर कोई न कोई लोक गीत अवश्य गाया जाता है। शादी में हल्दी लगाने की परंपरा है। ब्याह के कितने ही दिन पहले से लड़की को हल्दी लगाना शुरू कर दिया जाता है। उसकी सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, बारी बारी से हल्दी लगाती हैं, छेड़छाड़ करती हुई, मस्ती करती हुई, खूब मजाक करती हैं और एक अलग ही उल्लास और उमंग का वातावरण तैयार हो जाता है। गाते नाचते हुए हल्दी लगाई जाती है। आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत अब हम आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

बारात जब द्वार पर आती है तो कितना उल्लास होता है दोनों ही पक्ष में। जी हाँ, सजे हुए बाराती, घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा, भाई ये मेहमान कोई आम मेहमान थोड़े ही है, तो स्वागत भी विशेष होता है। जी हाँ, कंचन थाल सजाया जाता है, मोतियों से चौक पूरे जाते हैं, एक भव्य स्वागत बारातियों का। आइए ऐसा ही लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

और श्रोताओं अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मालवांचल के कुछ ऋतु गीत। जी हाँ, मौसम के अलग अलग रंग अलग अलग स्वर में हमारे मन से संवाद करते हैं और इस संवाद की सांगीतिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती है, मनोहारी होती है। तपती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्नी खेत में काम कर रहे अपने पति को खाना देने जाती है। रास्ते में बीच में एक कोयल अपनी मीठी बोली से उसे लुभाती है, उसका ध्यान खींचती है। वो किस तरह से उस कोयल से अपने मन की बात करती है, आइए सुने। मारो जी का रोता देवा, जावो हो कोयलिया, मीठी मीठी घणी प्यारी, लागे थारी बोलिया।

कड़कती धूप के बाद ठंडी हवा और बारिश की जरूरत मन को भी होती है और धरती को भी। वर्षा शुभता है, मंगल है, समृद्धि है, धन है, जीवन है। इसलिए सहज ही इंद्रदेव से प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

श्रोताओं, हम बात करें साहित्य की, नृत्य की, चित्रकारी की या गीत संगीत की। राधा कृष्ण की उपस्थिति हर जगह है, तो भला लोक जीवन में, हमारे लोक संगीत में राधा कृष्ण की उपस्थिति कैसे न हो। धरती से वर्षा विदा ले चुकी है और शरद ऋतु उतर आई है। जमुना के तीर पर राधा और कृष्ण की अटखेलियां देखते ही बनती हैं। इसी मनोहारी दृश्य का वर्णन इस लोक भजन में। स्वर स्वाति उखले और साथियों के हैं।

नमस्कार श्रोताओं, अब शरद ऋतु के बाद वसंत का आगमन हो चुका है। जी हाँ, ऋतुराज का आगमन। पलाश दहकने लगे हैं, गुलाब खिलने लगे हैं, बुलबुल गाने लगी है, महुए पक गए हैं, आम्र मंजरियों की भीनी भीनी सी महक हवाओं में घुलने लगी है, खेतों में सरसों फूल उठी है, रंग बासंती धरती पर तो है ही, तन और मन पर भी चढ़ने लगा है।

श्रोताओं, ये थी वसंत की छटा। जी हाँ, इस लोकगीत के साथ ही रंग बासंती आपके चारों ओर बिखर गया है। वसंत यानी प्रेम, वसंत यानी आरंभ, वसंत यानी उल्लास, उमंग, खुशी। तो ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशी आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी। चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब भारत भारती कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूँ अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है लेकिन देवी जी वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूँ। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे MA पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब BA में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति? और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए? मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई। रामदुलारी जोर से हंस पड़ी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी? उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
1: तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
0: हाँ, ये गलती तो हुई।
1: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं।

0: नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं 100-100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी, बस मुझे पता था। पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। सारे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूँ सब। और हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकाल कर वो उसके चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली, जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने ये किया उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है, राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है, जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था, आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था, मैंने तो उसे विदा कर दिया, जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया, जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहां, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं, मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं, सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया, जानता था वो सब कुछ उगल देगा, ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए, मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
2: MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
0: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
0: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सके।
2: आज तुम टिफिन में क्या लाई हो?
3: मैं तो साबूदाना की खिचड़ी लेके आई हूँ, उपवास है ना मेरा।
4: ओ। मैं भी खाऊंगा लेकर।
5: अरे आशीष, अभी तो तुमने दो समोसे खाए हैं।
3: हाँ, हमारा उपवास है, हम ही खिलाएंगे तुमको। अच्छा सुनो, फिर अंजू के लिए क्या लेके आए?
6: श्रीखंड लाएंगे।
7: क्या है? गुरुजी आने वाले हैं।
3: ठीक है ना, गुरुजी जब तक आ रहे तब तक
7: हमें खाने की बात पूछना है गुरुजी से।
3: अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। नमस्ते गुरुजी।
8: आयुष्मान हो, मेधावी बनो। आज कौन कौन अनुपस्थित है भाई?
9: गुरुजी मोहन और विमल।
8: देखो भाई, ये तो बहुत गलत बात है। रोज कोई ना कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है भाई, इससे पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। खैर देखो बच्चों, अब तुम 11वीं कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हो। अब तुम्हें अपने करियर के लिए विज्ञान कला या वाणिज्य में से किसी एक संकाय का चुनाव करना होगा। अमिताभ
10: जी, गुरुजी
8: तुमने क्या सोचा है बेटा, किस संकाय में जाना चाहते हो?
10: विज्ञान संकाय में गुरुजी। मेरा विचार गणित में अपना करियर बनाने का है, क्योंकि बायोलॉजी अपने बस की बात नहीं गुरुजी।
8: पर गणित में करियर बनाने का क्या कोई विशेष प्रयोजन है?
10: गुरुजी वो बात ऐसी है कि पिताजी ने मेरी कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। वो माने हुए ज्योतिषी हैं।
8: अच्छा।
10: मेरी कुंडली देखकर उन्होंने बताया कि मैं गणित के क्षेत्र में उन्नति कर सकता हूँ।
8: भाई हाँ, फलित ज्योतिष के तीन भागों सिद्धांत संहिता और होरा में से होरा जन्म काल के आधार पर शुभाशुभ फल के निर्णय से संबंधित है। इसे जातक भी कहा जाता है। शायद तुम्हें ज्ञात हो, अनेक देशों में वोकेशनल गाइडेंस के लिए लोगों के जेनेटिक कार्ड देखे जाते हैं।
3: ऐसा गुरुजी?
8: हाँ, उसी के अनुसार उन्हें कैरियर चयन करने की अनुशंसा की जाती है।
3: अरे वाह।
8: अपने भारत में अनेक लोग जन्मपत्री को जेनेटिक कार्ड का दर्जा देते हैं और उसी के आधार पर अपना कैरियर चुनते हैं। बच्चों, भारत में ज्योतिष विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है।
10: जी गुरुजी।
8: महर्षि वाराह मिहिर और उनके शिष्य महर्षि भास्कराचार्य उनका इस क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रयोग किए हैं।
3: गुरुजी, आप महर्षि वाराहमिहिर के विषय में तो हमें बता चुके हैं ना, तो आज आप हमें महर्षि भास्कराचार्य के बारे में बताइए ना।
2: बताइए ना गुरुजी।
7: हाँ गुरुजी।
8: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो महर्षि भास्कराचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व की वानगी लेने के लिए हम तुम्हें उनके आश्रम में लिए चलते हैं।
3: हाँ हाँ गुरुजी, चलिए चलिए।

0: बेटी लीला।
1: जी पिताश्री।
0: बेटी जरा देखो तो, क्या तुम्हें इस जलघड़ी में कुछ चमकता हुआ दिख रहा है?
1: जी पिताश्री।
0: जरा देखो तो, क्या है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
1: पिताश्री, ये तो मेरी नाक के कांटे का नग है।
0: तुम्हारी नाक के कांटे का नग? ये इस घड़ी में कहां से आ गया?
1: क्षमा करें पिताजी, मैंने आपको बताया नहीं। जिस दिन आप ये घड़ी लेकर आए थे उसी दिन की बात है। मैं इसे देखने का मोह संवरण नहीं कर पाई। इसकी गति में जैसे एक सम्मोहन सा था। मैं अभिभूत होकर इसे देखने के रोमांच में कुछ ऐसी खो गई कि पता ही नहीं चला कब मेरी नाक की लौंग का नग निकलकर इस घड़ी के अंदर गिर गया। जब मैंने जल में इसके गिरने की ध्वनि सुनी तो मैं एकदम चौंकी। मैं डर गई थी पिताश्री, मैं वहां से भाग आई। भय के मारे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया।
0: ओह बेटी, तुमने ये बात मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई?
1: पिताश्री, आपका कक्ष आपकी साधना का स्थल है, आपके अध्ययन का कक्ष, जहां किसी का भी प्रवेश वर्जित है। मैंने वहां जाकर अपराध किया। मैं अपराध बोध से ग्रसित थी पिताजी।
0: ओह, तुम्हारी उस छोटी सी भूल ने अनजाने में ही कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। काश तुम उसी दिन मुझे बता देती कि घड़ी के अंदर नग गिर गया है, तो मैं उसके बताए समय पर विश्वास नहीं करता और उस अशुभ घड़ी को टाल देता। ओह, अब मैं क्या करूं?
1: आप किस अशुभ घड़ी की चर्चा कर रहे हैं पिताश्री?
0: बेटी, तुम्हारी जन्मपत्री देखकर ज्योतिष गणना से हमने पता लगा लिया था कि यदि तुम्हारा विवाह एक विशेष दिन और विशेष मुहूर्त में नहीं हुआ तो तुम्हें वैधव्य जकड़ लेगा। उस शुभ मुहूर्त की गणना के लिए ही हम ये घड़ी लेकर आए थे, पर दुर्भाग्य, हम तुम्हारे दुर्भाग्य को टाल नहीं सके।
1: आखिर ऐसा क्यों हुआ पिताश्री, क्यों हुआ ऐसा?
0: क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था कि तुम्हारी नाक की लौंग का नग घड़ी के अंदर गिर जाने के कारण घड़ी ठीक नहीं चल रही है। हमने उसी गलत घड़ी के अनुसार मुहूर्त देखकर तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया, जबकि वो मुहूर्त गलत था। और वही हुआ जिसकी हमें आशंका थी। विवाह के एक सप्ताह बाद ही तुम्हारा पति चट्टान से गिरकर दिवंगत हो गया। इतने दिनों से हम अपनी ज्योतिष गणना में अपनी गलती मानकर इस दुर्घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे। आत्मग्लानी के दंश से व्यथित आज भी तड़प रहे हैं।
1: पिताजी, आप नाहक ही स्वयं को दोषी मानकर दुखी हो रहे हैं। होनी को आज तक कौन टाल सका है पिताश्री? वही हुआ जो होनी को स्वीकार था। आपको दुखी नहीं, आपको तो गर्व करना चाहिए कि आपका शास्त्र और आपकी गणना बिल्कुल सही निकली, कि आप होने वाली दुर्घटना का ज्ञान पूर्व में ही एकदम सही सही प्राप्त कर सके।
0: पुत्री, हमें यही तो दुख है कि दुर्घटना होने की पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद भी हम उसे टालने का उपक्रम नहीं कर सके।
1: पिताश्री, आप बिल्कुल दुखी ना हो। आपने हमारी रुचि गणित में जगाने के जो प्रयत्न किए हैं, उसी में हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। खेल खेल में प्रारंभ की गई गणितीय गतिविधियां अब हमें व्यस्त रखने का मनोरंजक साधन बन चुकी हैं पिताश्री।
0: मुझे प्रसन्नता है पुत्री, तुमने गणित को अपना प्रिय साथी बना लिया है। हम यही चाहते थे। ये निश्चित ही तुम्हें उस दुर्घटना को भुलाने में सहायक होगा।
1: पिताश्री, सच तो ये है कि जिस उम्र में हमारा विवाह संपन्न हुआ, उस उम्र में तो हम विवाह का अर्थ भी नहीं समझती थी। 6-7 वर्ष की उम्र तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, फिर वो दुर्घटना हमारे मन का रोग कैसे बन सकती है पिताश्री?
0: पुत्री, छोटी उम्र में तुम्हारा विवाह करने के पीछे हमारा मंतव्य उस दुर्घटना को टालने का था, पर दुर्भाग्य, हम इसमें सफल नहीं हो पाए।
1: अब देखिए ना पिताश्री, इससे यही तो सिद्ध होता है कि नियति प्रबल है, इसे बदला नहीं जा सकता।
0: पुत्री, तुम्हारा कथन सत्य है, पर मनुष्य ज्योतिष गणित के ज्ञान से लाभ उठाकर अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर उनके प्रभावों को निर्मूल तो नहीं पर उनसे अपनी सुरक्षा का प्रयत्न अवश्य कर सकता है।
1: पिताश्री, छोटी छोटी कथाओं और छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से आपने गणित के जो प्रश्न उभारे हैं वे बहुत अद्भुत हैं। इन कथाओं और श्लोकों ने ही तो हमारे मन में गणित के प्रति रुचि बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हम बंदरों और हंसों की कथाएं आज तक नहीं भूले हैं। बंदरों वाला प्रश्न तो त्रिकोणमिति का है ना, जिसमें कहा गया है 100 हाथ की ऊंचाई के एक वृक्ष पर 2 बंदर बैठे हैं। इस वृक्ष की जड़ से 200 हाथ की दूरी पर एक कुआं है। एक बंदर वृक्ष से उतरकर कुएं तक जाता है, दूसरा बंदर एक निश्चित ऊंचाई तक सीधे ऊपर छलांग लगाकर उसी छलांग में सीधे कुएं तक जाता है। तो दूसरा बंदर वृक्ष से कितना ऊपर उछला था? इस सवाल का उत्तर 50 हाथ आता है।
0: अच्छा, तुम्हें आज तक इस प्रश्न का उत्तर भी याद है?
1: हाँ पिताश्री, हमें तो हंसों वाले प्रश्न का उत्तर भी याद है, जिसमें कहा गया है, हे सुकुमारी कन्या, हंसों के एक झुंड की संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस सरोवर के तट पर क्रीड़ा कर रहे हैं और एक जोड़ा पानी में तैर रहा है, तो बताओ वहां कुल कितने हंस हैं? इस सवाल का उत्तर 16 प्राप्त होता है ना पिताश्री?
0: साधु साधु, पुत्री, ये उदाहरण बताते हैं कि गणित निश्चित ही तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तुम्हें ज्ञात होगा, हमने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के पहले भाग लीलावती में, जो तुम्हारे नाम पर ही समर्पित है, ये सभी प्रश्न संकलित कर दिए।
1: जी पिताश्री, हमें बहुत अच्छे से याद है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं, हमने चारों भागों का अध्ययन किया है। प्रथम भाग लीलावती तो जैसे आपने हमारे लिए ही लिखा है पिताश्री। इसमें अंकगणित संबंधी अनेक समस्याओं और नियमों पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों यानी सभी सिद्धांतों का वर्णन लीलावती में है। लीलावती में आपने ग्रहों और पृथ्वी की आकर्षण क्षमता के बारे में जो बात कही है ना पिताजी, वो बहुत ही अद्भुत है। भारी पदार्थ पृथ्वी पर गिरते मालूम होते हैं, पर यह पृथ्वी का आकर्षण है जो उन्हें खींच कर नीचे लाता है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि एक दूसरे का आकर्षण करते हैं और इस पारस्परिक आकर्षण के कारण ही सब अपनी अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। ऐसे ही लीलावती के एक अध्याय 0 षड्विधम में 0 के गुणों की विवेचना है।
0: अरे रुको रुको, 0 षड्विधम से हमें स्मरण हुआ कि आज अभ्यास सत्र में 9 बटुकों को इसका पाठ कराना है। चर्चा में समय का ध्यान ही नहीं रहा, अभ्यास सत्र का समय तो हो चला है। चलो लीला, सीधे वहीं चलते हैं।
1: जी पिताजी, चलिए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
0: आयुष्मान भव। प्रिय बटुकों, आज हम तुम्हें 0 षड्विधम का पाठ कराएंगे। 0 षड्विधम में 0 के गुणों से संबंधित 6 नियम हैं। सुश्री लीलावती क्रमशः एक एक नियम बोलेंगी और आप उन प्रत्येक नियम को 2-2 बार दोहराएंगे।
3: जी गुरु जी।
0: चलो बेटा लीलावती।
1: खयोगे धनर्ण तथै वच्युतम, यानि किसी अंक में 0 जोड़ा जाता है तो वो अंक वैसा ही रहता है।
4: खयोगे धनर्ण तथै वच्युतम, किसी अंक में 0 जोड़ा जाता है तो वह अंक वैसा ही रहता है। खयोगे धनर्ण तथै वच्युतम, किसी अंक में 0 जोड़ा जाता है तो वह अंक वैसा ही रहता है।
1: वियोगे धनर्ण तथै वच्युतम, यानि किसी अंक से 0 घटाने पर भी वो अंक वैसा ही रहता है।
4: वियोगे धनर्ण तथै वच्युतम, किसी अंक से 0 घटाने पर भी वह अंक वैसा ही रहता है। वियोगे धनर तथे वस्तुतम, किसी अंक से शून्य घटाने पर भी वह अंक वैसा ही रहता है।
1: शून्यस्त विपर्यावमेति, यानी शून्य में से जब कोई अंक घटाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है।
4: शून्यस्त द्विपर्यावमेति, शून्य में से जब कोई अंक घटाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। शून्यस्त द्विपर्यावमेति, शून्य में से जब कोई अंक घटाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है।
1: वधा खम खेन घाते, याने यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो फल शून्य ही आता है।
4: वधा खम खेन घाते, यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो फल शून्य ही आता है। वधा खम खेन घाते, यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो फल शून्य आता है।
1: वियत खम खेन घाते, यानी शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर भी फल शून्य ही आता है।
4: वियत खम खेन घाते, शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर भी फल शून्य ही आता है। वियत खम खेन घाते, शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर भी फल शून्य ही आता है।
1: खहारो भवेत खेन भक्तश्च राशि, यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो फल अनंत आता है।
4: खहारो भवेत खेन भक्तश्च राशि, यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाता है तो फल अनंत आता है।
1: प्रिय बटुकों, इन नियमों का तुम्हें सतत अभ्यास करना है। इसके बाद तुम्हें दिए हुए गणितीय प्रश्न हल करने होंगे, अतः अभ्यास आवश्यक है।
0: बटुकों, अब हम प्रस्थान करेंगे। आप लोगों से अब भोजन कक्ष में भेंट होगी। चलो पुत्री।
1: जी पिताश्री।
3: प्रणाम गुरुजी।
0: आयुष्मान भव, अभ्यास करते रहना।
1: पिताश्री, मुनिश्री पति पधारे हैं।
0: उन्हें ससम्मान यहाँ ले आओ बेटी।
5: महर्षि भास्कराचार्य को मुनि श्रीपति का सादर प्रणाम।
0: आयुष्मान, यशस्वी भव, वत्स, पधारे। कहिए मुनिवर, आपका कार्य अब कैसा चल रहा है?
5: आपके आशीर्वाद से कार्य तो ठीक ही चल रहा है, पर आपके सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल ग्रंथों ने मन में कुछ प्रश्न जगा दिए हैं, जिनके समाधान हेतु ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। महर्षि, आपका ये ग्रंथ मैं संदर्भ के रूप में भी उपयोग में ला रहा हूं।
0: मुनिवर, हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे ग्रंथ आपके लिए संदर्भ ग्रंथ बने हुए हैं। हम तो समझते थे हमारे ग्रंथों की एकमात्र समीक्षक हमारी पुत्री लीलावती ही है। वत्स, बताएं, कौन से प्रश्न आपको व्यथित किए हुए हैं?
5: महर्षि, इससे पूर्व कि हम शास्त्र पर चर्चा करें, एक जिज्ञासा जो हमारे मन में बहुत लंबे समय से घुमड़ती रही है, उसका समाधान हो जाए तो उत्तम।
0: कहो वत्स, क्या जिज्ञासा है आपकी?
5: आचार्य श्री, सुश्री लीलावती के गुरु तो आप हैं, पर महर्षि, आपके गुरु कौन थे?
0: वत्स, जिस तरह पुत्री लीलावती का गुरु तुम मुझे मानते हो, वैसे ही हमारे गुरु हमारे पिताश्री ही थे। हमारे पूर्वज भट्ट भास्कर ज्योतिषाचार्य थे। वे शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे। हम उनकी छठी संतति परंपरा में हैं। हमारा जन्म सन 1114 में कर्नाटक में उत्तरी मैसूर के विज्जडविड यानी बीजापुर स्थान पर हुआ।
5: अच्छा।
0: हाँ, ज्योतिष गणित का ज्ञान हमें हमारे संत पूज्य पिताश्री से ही प्राप्त हुआ। बाद में ज्योतिष गणित के पूर्व आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करते करते हमें इस क्षेत्र में रुचि इतनी बढ़ गई कि हमने इसे अपने अध्ययन का क्षेत्र बना लिया। वत्स श्रीपति, ज्योतिष शास्त्र को गणित का आधार दिलाने का श्रेय महर्षि आर्यभट्ट को जाता है। इसका विस्तार किया महर्षि वाराह मिहिर और महर्षि ब्रह्मगुप्त ने। हमारी प्रेरणा के स्रोत महर्षि ब्रह्मगुप्त रहे हैं।
5: महर्षि, आपके सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को मैं आपकी अद्वितीय रचना मानता हूं। इसके चार भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। लीलावती और बीजगणित जहां ज्योतिष गणित के आधार हैं, वहां गोलाध्याय और ग्रह गणित ज्योतिष और खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। लीलावती में अंक गणित संबंधी अनेक समस्याओं और नियमों पर प्रकाश डाला गया है। आपके सभी गणितीय सूत्र छंद रूप में हैं।
0: तो वत्स, इसमें समस्या क्या है? इन छंदों की व्याख्या करने के लिए हमने वसन भाष्य की रचना भी तो कर दी है।
5: हाँ महर्षि, लीलावती में आपने क्रम चयन, संचयन आदि के प्रश्न भी दिए हैं। कुछ समान अज्ञात संख्याओं के क्रम चयन के बारे में आपने ही पहली बार प्रकाश डाला है। फिर इस ग्रंथ के प्रणयन करते समय आपने अपने से पूर्व में रचे गए ग्रंथों का सहारा लिया है और उनके नाम का उल्लेख भी किया है, किंतु आपने अपनी खोजों में अपना नाम कहीं नहीं जोड़ा है, क्यों?
0: वत्स, हमारे ग्रंथ में जो स्थापनाएं दी गई हैं वे हमारी ही तो हैं, और जो बातें पूर्व महर्षियों की स्थापनाएं हैं उनके नाम हमने दे ही दिए हैं। वंस, तुम ही बताओ, अपने ही ग्रंथ में अपनी स्थापनाओं के साथ अपना नाम जोड़ना क्या अच्छी बात है? ये तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने जैसा हुआ।
5: आप ठीक कह रहे हैं आचार्य श्री। एक बात और, आपने अपरिमित समीकरणों का भी उल्लेख किया है। इनमें एक ही समीकरण के कई कई हल हो सकते हैं।
0: वत्स, इन समीकरणों के संबंध में हमने आग्रह किया है कि इन समीकरणों में सांकेतिक संख्याओं का सकारात्मक आंतरिक मान निकाला जाए। वत्स, ये विशेष कोटि की समीकरणें हैं।
5: महर्षि, आपने बीजगणित के क्षेत्र में भी अनेक समीकरणों के हल प्रस्तुत किए हैं, बल्कि अपने पूर्ववर्ती चिंतक महर्षि ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रस्तुत समाधानों को भी परिष्कृत किया है। स दशमलव क का वर्ग धन एक बराबर ख का वर्ग प्रकार की समीकरणों को आर्यभट्ट जी ने भी वर्ग प्रकृति का नाम दिया था और इनके हल की विधि भी बताई थी, पर आपने ऐसी समीकरणों के हल के लिए नई विधि बता दी है क्या?
0: हाँ वत्स, हमने अधिक परिष्कृत चक्रवाल विधि का आविष्कार किया है। ये अधिक सरल विधि है। आप देखेंगे भविष्य में इस विधि को ही लोग उपयोग में लाएंगे।
5: और जो आपने अवकलन गणित की प्रतिस्थापना की?
0: मुनिवर, ये गणित की एकदम नूतन शाखा है। इसे हमने फलन कहा है। इसके विभिन्न सिद्धांत भी हमने स्थापित किए हैं। अवकलन गणित और समाकलन गणित इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इनका उपयोग किसी गोलार्ध का क्षेत्र और आयतन ज्ञात करने और ग्रहों की गति व स्थिति गणना में होता है। इन फलनों का विवरण हमने ग्रह गणित में दिया है।
5: अर्थात महर्षि, आपने गोले की सतह का अध्ययन करके उसकी सतह के लिए 4π त्रिज्या का वर्ग और गोले के आयतन के लिए जो 4/3π त्रिज्या घात 3 सूत्र दिए हैं वे अवकलन गणित और समाकलन गणित की सहायता से परिकलित हैं।
0: हाँ वत्स, हमने लीलावती में ये भी बताया है कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं से निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, हमने बताया है कि किसी वृत्त में बने हुए समभुज और समकोण त्रिभुज की तथा चतुर्भुज, पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज और नवभुज आकृतियों की एक भुजा उस वृत्त के व्यास के एक निश्चित अनुपात में होती।
5: महर्षि, बिना खगोलीय उपकरणों के आपने ग्रह नक्षत्रों की पृथ्वी से दूरी, उनकी गति तथा उस गति से पृथ्वी पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के लिए जो सूत्र दिए हैं वे फलन गणित उपयोग से प्राप्त किए हैं?
0: अवश्य ही मुनि श्रीपति, विशेष रूप से तात्क्षणिक गति निकालने की विधि में तो अवकलन गणित का ही उपयोग होता है। इससे ग्रहों की गति का सही सही आकलन हो जाता है। जहां तक यंत्रों की बात है तो हमने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के यंत्राध्याय में गोल, नाड़ी वलय, याष्टि, शंकुघटी, चक्र, चाप, तूर्य फलक प्रभृति आदि यंत्रों का वर्णन दिया है, जिनके आधार पर खगोल विद्या की आवश्यक जानकारी को क्रमबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने अपने करण कौतूहल ग्रंथ में भी खगोल वेद के निमित्त अनेक विधान रखे हैं।
5: हाँ महर्षि भास्कराचार्य जी, आपने सिद्धांत शिरोमणि में एक जगह लिखा है, आकृष्ट शक्तिश्च महितयायत स्वस्थम गुरुम स्वाभिमुखम स्वशक्तया आक्रणवते तत्पत्नेति भाति समय समन्नात पतित्वयम रवे। अर्थात पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इससे वो अपने आसपास की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। पृथ्वी के निकट आकर्षण शक्ति अधिक होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह शक्ति घटती जाती है। ग्रह और पृथ्वी आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ही परिभ्रमण करते हैं।
0: हाँ वत्स, पृथ्वी किसी आधार पर टिकी नहीं है, बल्कि वो अपनी शक्ति से ही स्थिर है। हमने पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना से ये बताया है कि पृथ्वी गोल है। विशाल पृथ्वी की तुलना में मनुष्य के बहुत छोटा होने के कारण भूमि पर जहां तक दृष्टि जाती है वो सब हिस्सा उसे चपटा ही प्रतीत होता है।
5: हाँ, आपने काल गणना की विविध इकाइयों जैसे तिथि, वार, मास, वर्ष, युग आदि के विवरण के साथ ग्रह नक्षत्र, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के सटीक विवरण तो दिए ही हैं। करण कुतूहल में ज्योतिष की सारणियों तथा गणनाओं संबंधी क्रियाओं का वर्णन भी किया है, पर फलित गणित के महत्व के संबंध में कोई टीप देखने को नहीं मिली।
0: वत्स, ज्योतिष के तीन अंग हैं। सिद्धांत का विवेचन तो हमने सिद्धांत शिरोमणि के गणिताध्याय में ही कर दिया है, यथा त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मान प्रभेद क्रमा इश्चारश्च दुसदाम द्विधा च गणितम प्रश्नास्तथा चोत्तरा भूधिष्ठ्य ग्रह संस्थेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांततः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः। अर्थात त्रुटिकाल से लेकर प्रलय के अंतकाल तक की गणना और नौ प्रकार के कालमान के भेद, सूर्य आदि ग्रहों की चाल, व्यक्त और अव्यक्त गणित, दिशा, देश और काल संबंधी विविध प्रश्न पृथ्वी, नक्षत्र और ग्रहों के संस्थान वेद द्वारा ग्रह नक्षत्रादि के स्थान तथा विविध यंत्रों के बनाने की विधि और उपयोग का वर्णन जिसमें हो उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं। और जहां तक फलित गणित के संबंध की बात है मुनि श्रीपति, तो यूं समझिए कि यदि गणित वचन है तो फलित उसका अर्थ है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि भास्कर आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भेंट करके वर्षों की साध पूरी हो गई, अब आज्ञा दें। प्रणाम।
0: प्रणाम, यशस्वी भाव।
5: धन्यवाद
0: वत्स मुनि, मिलते रहें
5: जी।

0: तो बच्चों ये थी महर्षि भास्कराचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की एक झलक। बच्चों उनका लीलावती ग्रंथ इतना प्रामाणिक और लोकप्रिय था कि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यही लगभग 700 वर्ष तक, भारत, रूस, अरब आदि देशों में पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रचलित रहा है।
1: अच्छा गुरुजी।
0: हाँ, और 4-5 शताब्दियों बाद इसका 2 बार फारसी में अनुवाद हुआ।
1: गुरुजी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई।
2: हाँ, हाँ गुरुजी।
0: बीज गणित के समीकरणों को हल करने की उनकी चक्रवाल विधि एक महत्वपूर्ण योगदान था। 6 शताब्दियों बाद यूरोपियन गणितज्ञ गैलोयस, यूलर और लंगराज ने इसे इनवर्स साइक्लिक इस नाम से पुनः खोजा। इसी तरह समाकलन गणित और अवकल गणित यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के भास्कराचार्य संस्थापक माने जा सकते हैं, जिसे कैलकुलस के आज के संस्थापक माने जाने वाले आइजक न्यूटन और गोटफ्राइड लेविन्स ने कई शताब्दियों बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और रोल्स थ्योरम इन नामों से खोजा। गोले की सतह के लिए 4πr² सूत्र और गोले के आयतन के लिए 4/3πr³ सूत्र का परिकलन भी इसी गणित का उदाहरण है। बच्चों केपलर जो 16वीं सदी में हुआ उससे काफी पहले भास्कराचार्य ने बता दिया था कि पृथ्वी समेत अनेक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ऐसे ही न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात कह दी थी।
1: गुरुजी, इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने भास्कर 1 और भास्कर 2 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़े थे ना?
0: हाँ हाँ भाई, हाँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। चलो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।
1: जी गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।
0: आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो।
1: आज तो पता है इतना मुझे लग रहा था बस जल्दी से घंटी बज जाए फिर चल के टिफिन खाएंगे। इसको मैं नहीं दूंगी।
3: मुझे खाना ही नहीं है, मैं तो गुरुजी ने जो बताया उसके बारे में सोच रहा हूँ।
4: साथियों अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी के।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी के। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप यूं ही बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, भारत भारती कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, लोकगीतों में एक पूरी पीढ़ी, एक सदी दर्ज होती है। उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनके सुख दुख, उनकी खुशी उल्लास, उनके पर्व, सभी कुछ उनमें होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक संगीत एक सांगीतिक दस्तावेज है किसी संस्कृति का। एक मन से उठा राग समूह का राग बन जाता है, एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचता हुआ ये सदियों की यात्रा तय करता है। तो आइए कल से चलकर आज तक पहुंची इस स्वर यात्रा का आस्वादन करें। मालवा अंचल के कुछ लोकगीत आपको सुनवाते हैं आज भारत भारती कार्यक्रम में। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी। कार्यक्रम का शुभारंभ इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, किसी घर में बच्चे के जन्म से बड़ा भला कौन सा उत्सव हो सकता है। बच्चे का जन्म यानी घर के आंगन में एक फूल का खिल जाना, जीवन की बगिया का महक जाना, शहरी जीवन की बात हो या ग्रामीण अंचल के जीवन की, बच्चे के जन्म की खुशी दोनों ही जगह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मालवा अंचल में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला ये लोकगीत स्वाति ओखले और साथियों के स्वरों में।

बच्चे के जन्म के साथ खुशियों का वातावरण छा जाता है पूरे घर में। उसकी छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कान, जरा सा बोल देना, जैसे खुशियों का झरना बह उठता है घर में। सभी लोग खिलखिला उठते हैं। घर के हर सदस्य का ध्यान उस बच्चे पर ही होता है, वो सो रहा हो या जाग रहा हो। बच्चे की हर बात मन भावन होती है। हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए सोती हुई बिटिया, पालने में माँ उसे झुलाती है, लोरी सुनाती है। कैसा अद्भुत दृश्य है, एक माँ जब अपनी बेटी को झूले में झुलाती हुई लोरी गाती है तो किस तरह अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त करती है, इसी का वर्णन इस लोकगीत में। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, हमारा लोक संगीत संस्कार गीतों से समृद्ध है। हर संस्कार पर कोई न कोई लोक गीत अवश्य गाया जाता है। शादी में हल्दी लगाने की परंपरा है। ब्याह के कितने ही दिन पहले से लड़की को हल्दी लगाना शुरू कर दिया जाता है। उसकी सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं, बारी बारी से हल्दी लगाती हैं, छेड़छाड़ करती हुई, मस्ती करती हुई, खूब मजाक करती हैं और एक अलग ही उल्लास और उमंग का वातावरण तैयार हो जाता है। गाते नाचते हुए हल्दी लगाई जाती है। आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत अब हम आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं स्वाति उखले और साथी।

बारात जब द्वार पर आती है तो कितना उल्लास होता है दोनों ही पक्ष में। जी हाँ, सजे हुए बाराती, घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा। भाई, ये मेहमान कोई आम मेहमान थोड़े ही है, तो स्वागत भी विशेष होता है। जी हाँ, कंचन थाल सजाया जाता है, मोतियों से चौक पूरे जाते हैं, एक भव्य स्वागत बारातियों का। आइए, ऐसा ही लोकगीत अब आपको सुनवाते हैं स्वाति उखले और साथियों के स्वरों में।

और श्रोताओं, अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मालवांचल के कुछ ऋतु गीत। जी हाँ, मौसम के अलग अलग रंग अलग अलग स्वर में हमारे मन से संवाद करते हैं और इस संवाद की सांगीतिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर होती है, मनोहारी होती है। तपती धूप है, गर्मी का मौसम है, पत्नी खेत में काम कर रहे अपने पति को खाना देने जाती है। रास्ते में बीच में एक कोयल अपनी मीठी बोली से उसे लुभाती है, उसका ध्यान खींचती है। वो किस तरह से उस कोयल से अपने मन की बात करती है, आइए सुने। मारो जी का रोता देवा, जावो हो कोयलिया, मीठी मीठी घणी प्यारी, लागे थारी बोलिया।

कड़कती धूप के बाद ठंडी हवा और बारिश की जरूरत मन को भी होती है और धरती को भी। वर्षा शुभता है, मंगल है, समृद्धि है, धन है, जीवन है। इसलिए सहज ही इंद्रदेव से प्रार्थना आरंभ हो जाती है।

श्रोताओं, ये थी वसंत की छटा। जी हाँ, इस लोकगीत के साथ ही रंग बासंती आपके चारों ओर बिखर गया है। वसंत यानी प्रेम, वसंत यानी आरंभ, वसंत यानी उल्लास, उमंग, खुशी। तो ये उल्लास, ये उमंग, ये खुशी आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही शुभकामना है हमारी। चलते चलते आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब भारत भारती कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 100वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं वर्षागिर, रुद्राश्वाम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधस। देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
4: स यो वृषा वृषण्येभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट सतीन सत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विंद्र उति। जो बलशाली इंद्रदेव बलवर्धक साधनों से संयुक्त रहने वाले महान आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, जो जलों को प्राप्त कराने वाले संग्राम में आवाहन योग्य हैं, वे इंद्रदेव मरुद गणों सहित हमारे रक्षक हों। यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरे भरे वृत्रहा सुष्मो अस्ति वृषन्तमः सखिभिः स्वेभिरे वैर मरुत्वान्नो भवत्विंद्र उति। सूर्य की गति के समान दुर्लभ गति वाले वृत्तनाशक इंद्रदेव प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक मरुतों के साथ मिलकर अतीव बलशाली हैं। ये इंद्रदेव मरुद गणों सहित हमारे रक्षक हों। दिवो न यस्य रेतसो दुघानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः तरद्वेषाः सासहिः पौंस्येभिर् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। इन इंद्रदेव के निर्विघ्न मार्ग सूर्य किरणों के सदृश अंतरिक्ष के जलों का दोहन करने वाले हैं। ये अपने पराक्रम से द्वेषियों का नाश करने वाले, शत्रुओं का पराभव करने वाले और बलपूर्वक आगे आगे गमन करने वाले हैं। ये इंद्रदेव मरुद गणों के साथ हमारे रक्षक हों। सो अंगिरो भिरंगिरस्तमो भूद्वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन् रिग्मीभिर् रिग्मी गातुभिर् ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अतीव बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और साम आदि के गायन करने में वरिष्ठ हैं। वे इंद्रदेव मरुद गणों के साथ हमारे रक्षक हों। स सूनुभिर् न रुद्रेभिर् रिभ्वा नृषाहिये सासह्वाम् अमित्रान् सनीडेभिः श्रवस्यानि तूर्वन् मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊति। महान इंद्रदेव ने पुत्रों के समान प्रिय सहायक मरुतों के साथ मिलकर शत्रुओं को पराजित किया। साथ रहने वाले मरुदगणों के साथ मिलकर आपने अन्नों की वृद्धि के निमित्त जलों को नीचे प्रवाहित किया। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। समन्युमीहि समदनस्य कर्तास्मा के भिर नृभिः सूर्यम् सनत अस्मिन्नहत सत्पतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। शत्रुओं के प्रति क्रोध प्रदर्शित करने वाले, हर्षयुक्त होकर युद्ध में प्रवृत्त रहने वाले, सत्प्रवृत्तियों के पालक, बहुतों द्वारा आवाहनीय इंद्रदेव आज के दिन हमारे वीरों को लेकर वृत्र का नाश करें, सूर्य देव को प्रकट करें। वे इंद्रदेव मरुतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक हों। तमूतयो रणयच्छु रसातौ तम क्षेमस्य क्षितयः कृण्वत्राम् स विश्वस्य करुणस्येष एको मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। सहायक मरुतों ने इंद्रदेव को युद्ध में उत्तेजित किया। प्रजाओं ने अपनी रक्षा के निमित्त उन वीर मरुदगणों को रक्षक बनाया। वे इंद्रदेव अकेले ही संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों के नियंता हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारी रक्षा करें। तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरो नरमवसे तम धनाय सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदन मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। बलशाली वीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता है। उन इंद्रदेव ने गहन तमिश्रा में भी प्रकाश को प्राप्त किया। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें। ससव्येन यमति व्राधतश्चित् स दक्षिणे संग्रिभीता कृतानि स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। वे इंद्रदेव बाएं हाथ से हिंसक शत्रुओं को रोकते हैं और दाएं हाथ से याजकों की हवियों को ग्रहण करते हैं। वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। सग्रामे भी सनिता स रथे भिर विदे विश्वा भी कृष्टि भिर नुवद्य स पौंसिये भिर भिभूर शस्तीर मरुत्वान्नो भवत्तिंद्र ऊती। वे इंद्रदेव मरुतों के सहयोग से रथों द्वारा धनों को देने वाले हैं, ऐसा संपूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे इंद्रदेव अपनी सामर्थ्यों से निंदनीय शत्रुओं का पराभव करने वाले हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। स जामि भिर यत समजाति मीडहे जामि भिर्वा पुरुहूत एवैहि अपाम तोकस्य जनयस्य जेशे मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले वे इंद्रदेव जब बंधु अथवा अबंधु वीरों के साथ युद्ध में जाते हैं तो वे उनके पुत्र पौत्रादि की विजय के लिए यत्नशील रहते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। स वज्रभृद्युस्युहा भीम उग्रह सहस्रचेताः शतनीथरभुआ चम्रीशो न शवसा पंचजन्यो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। वे वज्रधारी दुष्ट नाशक विकराल पराक्रमी सहस्र ज्ञान की धाराओं से युक्त शतनीति युक्त प्रकाशवान सोम के सदृश पूज्य इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से पांच जन्यों पांच प्रकार के मनुष्यों के वे हितकारी हैं। ऐसे वे देव इंद्र मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों। तस्य वज्रः क्रंदति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् तं सचन्ते सनयस्तं धनानि मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। उन इंद्रदेव का वज्र बहुत तीव्र गर्जना करता है। वह द्यूलोक के सूर्यदेव की भांति तेजस्विता संपन्न है। स्तोताओं की स्तुतियों से वे उन्हें उत्तम सुख और उत्तम धन आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। यस्याजस्रम शवसा मानमुक्थम परिभुजद्रोदसी विश्वतः सीम स पारिषत्क्रतुभिर् मंदसानो मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। उन इंद्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथ्वी दोनों लोकों का सभी ओर से निरंतर पोषण कर रहा है। वे हमारे यज्ञादि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अंतमापुः स प्ररिक्वा त्वक्षसाक्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विंद्र ऊती। जिन इंद्रदेव के बल का अंत दान प्रवृत्ति वाले देवगण मनुष्य तथा जल भी नहीं पा सकते वे इंद्रदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और द्युलोक से भी महान हैं। ऐसे वे इंद्रदेव मरुतों के साथ हमारे रक्षक हों। रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर ललामीर द्युक्षा राय रिज्राश्वंस्य वृषणवंतम बिभ्रति धूर्षु रथम मंद्रा चिकेत नाहुशीशु विक्षु। रोहित और श्याम वर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोभित इंद्रदेव के रथ में नियोजित होकर प्रसन्नता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते हैं। इंद्रदेव ऋज्राश्व को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानवी प्रजा भी दहन के निमित्त निवेदन करती हुई दिखाई दे रही है। एतत्यत्त इंद्र वृष्ण उक्थम वर्षा गिरा अभि गृणन्ति राधः रिज्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीशः सहदेवो भयमानः सुराधाः। हे इंद्रदेव, समीपस्थ ऋषियों के साथ रिज्राश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान और सुराधस, ये सब वृषागिर के पुत्र आप जैसे सामर्थ्यवान के लिए प्रसिद्ध स्तोत्रों का गायन करते हैं। दस्योंश्म्योश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वानि बर्हीत सनत्क्षेत्रं सखिभिः श्वित्नेभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्रः। बहुतों द्वारा बुलाए जाने पर इंद्रदेव ने अपने सहायक मरुद्गणों के साथ मिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्टों और हिंसक शत्रुओं पर तीक्ष्ण वज्र से प्रहार करके उन्हें जड़ विहीन किया। तब उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित मरुद्गणों के साथ भूमि प्राप्त की, जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य भी प्राप्त किया। विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्व परिहृताः सनुयामं वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहंता मदितिहि सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इंद्रदेव, प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों, कपट तजकर हम उन्हें अन्नादि अर्पित करें। मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यौ हमारे इस निवेदन का अनुमोदन करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 100वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। डॉक्टर जाकिर हुसैन का व्यक्तित्व, इस्लाम की शिक्षा, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, बापू की विचारधारा और पश्चिमी देशों के उदार और मानवतावादी मूल्यों के सुंदर तालमेल से बना हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को गुलाब और कैक्टस दोनों ही बेहद प्रिय थे। वे उन लोगों में से थे जिनकी निगाह बुरे लोगों की अच्छाइयों पर होती है। वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के समान जीवन भर सृजनात्मक आपसी सद्भाव और सार्वभौमिकता के लिए काम करते रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 20 अक्टूबर 1920 में तब हुई जब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर करीब 300 विद्यार्थियों के साथ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहिष्कार किया था। ये बहिष्कार बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना का आधार बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के लिए अलीगढ़ में छात्रों के सहयोग और समर्थन के मकसद से आए थे। उस समय जाकिर साहब 23 वर्ष के युवक थे और एमए के छात्र थे। यूनियन हॉल में शिक्षकों और छात्रों के समक्ष गांधी जी ने तकरीर पेश करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत चलने वाले शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करके उनकी जगह राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित किया जाए। जाकिर हुसैन भी उन थोड़े से व्यक्तियों में से थे जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। अपने इस बहिष्कार के बारे में जाकिर साहब ने कहा था कि मेरे जीवन में मेरे जमीर का ये पहला फैसला था, शायद वाहिद फैसला जो मैंने लिया। मेरी तमाम जिंदगी इसी फैसले से प्रभावित रही। 19 अक्टूबर को एएमयू का बहिष्कार करके बाद में उन लोगों ने अलीगढ़ में एक छोटी सी राष्ट्रीय संस्था स्थापित की। बाद में यही संस्था जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से देश विदेश में मशहूर हुई। उनके इस निर्णय ने उनके जीवन को एक अभिनव दिशा दी। राष्ट्र प्रेम और शिक्षा प्रेम उनके मुख्य ध्येय हो गए।

शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन की छटपटाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे जर्मनी में पढ़ रहे थे तब सन 1924 में उन्हें मालूम हुआ कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण जामिया मिलिया को बंद किया जा रहा है। उस समय उन्होंने एक तार द्वारा अपनी भावना व्यक्त करते हुए लिखा था कि मैं और मेरे कुछ मित्र जामिया के लिए आजीवन सेवा करने को तैयार हैं। हम लोगों के पहुंचने तक जामिया बंद न होने पाए। सौभाग्य से ऐसा ही हुआ और भारत लौटने पर सन 1926 में मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी सूझबूझ और नेतृत्व में उसने बहुत ही जल्दी देश की महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थाओं में अपना स्थान बना लिया। जाकिर साहब जामिया मिलिया में 22 साल तक कुलपति रहे। पठन पाठन के अलावा बागवानी उनका पसंदीदा शौक था। वे एक पौधे की परवरिश और एक बच्चे की तालीम के मध्य संबंध से पूरी तरह आगाह थे। जामिया के लहलहाते फूल और पौधे और बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हरियाली के साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के पौधे सिर झुका झुका कर उनकी रुचि और प्रेम को प्रत्यक्ष प्रकट करते थे। पंडित नेहरू के विशेष आग्रह पर जाकिर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए। पंडित नेहरू उनकी प्रतिभा और बौद्धिक निष्ठा से बहुत गहरे रूप से प्रभावित थे। हालांकि जाकिर साहब अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के ही क्षेत्र को अर्पित करना चाहते थे, लेकिन बाद में 55 वर्ष की आयु में 1952 में उन्होंने राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनना स्वीकार किया। इसके बाद सन 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। सन 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इसके एक वर्ष बाद उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न के अलंकरण से सम्मानित किया। बाद में सन 1967 में वे भारत के राष्ट्रपति बने और इस तरह सन 1920 के एक विद्रोही विद्यार्थी के जीवन की यात्रा अपने सर्वोच्च पड़ाव पर

जाकिर साहब की बापू और उनके रचनात्मक कार्यों पर गहरी आस्था थी और ठीक इसी तरह बापू का भी उन पर दृढ़ विश्वास था। बापू ने जाकिर साहब की प्रतिभा और राष्ट्रप्रेम की भावना को पहचाना तथा उन्हें उस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जिसे वर्धा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक बुनियादी तालीम का विस्तृत पाठ्यक्रम बनाना था। जाकिर साहब ने इस कार्य को बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन बहुत गहरा था। उनका कहना था कि तालीम सूचना या जानकारियों का संग्रह नहीं बल्कि बौद्धिक शक्तियों का विकास और विस्तार करना है। जानकारियों के खजाने को पाने से आदमी इंसान नहीं बनता बल्कि उसके सही इस्तेमाल का तरीका जानना जरूरी है। किताब में पढ़ना कि गुलाब में खुशबू है अलग बात है, लेकिन बाग में गुलाब सूंघना और आनंदित होना अलग बात है। तालीम का काम पठन पाठन तक सीमित नहीं होता। तालीम और प्रशिक्षण द्वारा प्रकृति ये चाहती है कि जिस प्रकार शहद की मक्खी गुलाब के रस से शहद तैयार करती है या गाय हरी घास से अमृत वाला दूध देती है, इंसान भी ऐसी चारित्रिक पहचान प्राप्त करे जिनसे वो सही अर्थों में इस धरती का खलीफा बन सके। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है कि तालीम वो रोशनी है जिससे इंसानों के दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1938 से 1948 तक हिंदुस्तानी तालीम संघ के अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा की अन्य समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उन्होंने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज बाल सभा का विषय है मन की गुल्लक।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: ओहो, स्वागत है आज स्टूडियो में तो एक बहुत प्यारी सी बच्ची भी है और इसका नाम है परीजा। और बच्चों, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। आज का ये समय मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि बच्चों आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक सोच है, एक तरीका है जीवन को देखने का। और आज की बाल सभा में मैं बचत की बातें करने वाली हूँ। अरे अरे अरे अरे, ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैंने बचत कहा आपके मन में क्या आया? एक गुल्लक आई ना, जिसमें आप पैसे डालते हैं धीरे धीरे और अंदर जाकर सिक्का बोलता है टन, है ना। हर दिन आपको आदत पड़ जाती है थोड़े थोड़े से पैसे सिक्के मम्मी पापा से लेकर गुल्लक में डालने की। हम सब ने भी बचपन में कभी ना कभी गुल्लक रखी ही है और उसकी आवाज़ें भी सुनी हैं और उसमें सिक्के डालने का आनंद भी महसूस किया है और मिट्टी की गुल्लक को फोड़ने का भी अपना एक अलग ही मज़ा था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी गुल्लक के बारे में बताने जा रही हूँ जो टूटती नहीं है, जो खोती नहीं है, जो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो है मन की गुल्लक। इस गुल्लक में आप पैसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें वो सब कुछ रख सकते हैं जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है। आप उसमें रख सकते हैं अपने रिश्ते, अपनी यादें, अपनी आदतें, अपनी अच्छाइयाँ। और आज हम इसी मन की गुल्लक को भरने की बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में मेरा साथ देने के लिए, पता है, बता ही दिया मैंने आपको कि परीजा आई है। परीजा, एक बार फिर से नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: परीजा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पास एक मन की गुल्लक है और तुम्हें उसमें कुछ कीमती चीजें संभाल कर रखनी है, तो उसमें तुम सबसे पहले क्या रखना चाहोगी?
4: दीदी, मैं उसमें अपने दोस्त रखना चाहूंगी।
2: दोस्त? ये शब्द छोटा तो है लेकिन इसके पीछे कितनी सारी यादें छुपी होती हैं। स्कूल के दिन, एक साथ बैठना, एक ही टिफिन बांटना, बिना वजह हंसना। परीजा, वैसे तुमने दोस्तों को ही क्यों चुना?
4: दीदी, क्योंकि जब मैंने स्कूल बदला तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे दूर हो गए। हम पहले रोज मिलते थे, अब कभी कभी ही बात होती है। अगर मेरे पास मन की गुल्लक होती तो मैं उन्हें उसमें संभाल कर रखती।
2: ओ, कितनी अच्छी और सच्ची बात है। हम सबके जीवन में ऐसा होता है परीजा, कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जो छूट जाते हैं या हम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते, रिश्ते की गुल्लक की तरह ही होते हैं ना ऐसे लोग? अगर हम उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ी थोड़ी समझदारी डालते रहें तो वो हमेशा भरे रहते हैं, है ना। रिश्तों की गुल्लक ऐसी ही होती है, और अगर हम उन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो वो रिश्तों की गुल्लक खाली होने लगेगी।
4: दीदी, मैं अब अपने दोस्तों को फोन करूंगी।
2: हाँ परीजा, यही तो रिश्तों की बचत है बेटा। चीजों की बचत के बारे में अब हम बात करेंगे, लेकिन तुमने इतनी अच्छी बात कही है ना कि जब दोस्त दूर हो जाए, जैसे तुमने स्कूल बदला, तुम्हारे दोस्त दूर हो गए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया ना कि उन्हें रोज रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दो बार फोन करना चाहिए, तो बस रिश्ते बचे रहेंगे। यही है रिश्तों की सेविंग। अब हम जरा चीजों की बचत के बारे में बात करेंगे, क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: अब परीजा, अगर हम आसपास देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रंग, लेकिन क्या हम सच में उनका पूरा उपयोग करते हैं?
4: नहीं दीदी, कभी कभी नहीं।
2: जैसे हमारी कॉपी, अगर हम देखें तो एक कॉपी खत्म होने के बाद भी उसमें कई पन्ने खाली रह जाते हैं, हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उन पेजेस को इकट्ठा करें तो क्या हो सकता है परीजा?
4: एक नई छोटी कॉपी बन सकती है।
2: जी बिल्कुल, और ये छोटी छोटी बातें हमारे अंदर बड़ी समझ पैदा करती हैं।
4: दीदी, मैं अब कोई पन्ना बेकार नहीं जाने दूंगी।
2: और यही सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और अब पता है क्या बात बताने वाली हूँ मैं परीजा आपको?
4: क्या दीदी?
2: वो ये कि तुम आज मुझे कौन सी कहानी सुनाओगी?
4: दीदी, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गोल।
2: अच्छा, ये गोल कहानी मेजर ध्यानचंद्र जी की कहानी है ना?
4: जी दीदी।
2: तो चलिए शुरू कीजिए, आज तो दो दो लोगों की कहानी आएगी, पहले मेजर ध्यानचंद की और फिर जो बच्चे बाल सभा सुन रहे हैं उन्हें पता है कि मैं भी उन्हें बहुत अच्छी कहानी पिछले कई दिनों से सुना रही हूँ, वो भी सुनाऊंगी। लेकिन पहले परीजा से सुनते हैं, शुरू कीजिए परीजा।
4: जी दीदी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों में हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है, उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता था कि मैं कब उसे सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़े मंत्र हैं।
2: परीजा, तुम्हारी ये गोल कहानी तो मुझे बड़ी ही जबरदस्त लगी। और एक बात और है जो इस कहानी से निकल कर आया, हम बात कर रहे थे बचत की। आपको समझ में आया कि यहाँ मेजर ध्यानचंद जी ने भी एक चीज की बचत की?
4: जी दीदी।
2: किस चीज की बचत की? सोचो सोचो, मैं बताऊं?
4: जी दीदी।
2: उन्होंने बचत की अपने गुस्से की। चाहते तो वो भी हॉकी स्टिक से दूसरे खिलाड़ी को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को बचाया, व्यर्थ नहीं किया, और उस गुस्से को कहाँ निकाला? गोल करके। क्या लिखा उन्होंने कि चाहता तो मैं इसे सिर्फ 2 गोल से हराता, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने कितने गोल किए?
4: 6 गोल दीदी।
2: तो 6 गोल में उनका वो गुस्सा भी हो सकता है जो उन्होंने बचा कर रखा था। तो सिर्फ पैसे नहीं बचाए जाते बच्चों, बचाया जाता है दूसरों पर व्यर्थ किया जाने वाला समय भी। और यही चीजें जो छोटे छोटे से गुरु मंत्र बन जाते हैं वो क्या होते हैं? लगन, मेहनत, साधना, ये सब आपके लिए गुरु मंत्र बनते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि बदला हमेशा वो नहीं होता जो आप किसी के कर्म का तुरंत रिप्लाई करते हैं। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी हमेशा सुना है कि उनके लिए अगर कोई कुछ कहता था तो वो अपने बल्ले से जवाब देते थे, मैदान पर वो अपने बल्ले से ताकत दिखाते थे, है ना
4: जी दीदी।
2: तो अब अपनी चीजों को भी बचाना है, वापस अपनी बात पर लौटना है
4: जी दीदी।
2: तो हमारी सोच को बदलने के लिए तुमने ये जो कहानी सुनाई है, ये छोटी सी बात थी लेकिन सच तो ये है कि जीवन की इसमें बहुत बड़ी बड़ी सीख छुपी हुई थी। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, हम अपनी आदतों की भी बचत कर सकते हैं, अपने समय की भी बचत कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने शब्दों की भी बचत कर सकते हैं। परीजा
4: दीदी, शब्द कैसे बचते हैं?
2: जब हम बिना सोचे बोल देते हैं तो शब्द वापस नहीं आते। कहते हैं ना कि तीर कम घाव करता है, शब्दों के तीर ज़्यादा घाव करते हैं, इसलिए हमें शब्दों को बहुत बचा कर रखना चाहिए, है ना। जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें, एक एक बार और सोच लें कि कहीं गलती से भी हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और ये एक छोटी सी आदत कोई भी रिश्ता टूटने से बचा सकती है ना परीजा।
4: तो गुस्सा कम करना चाहिए?
2: हाँ बिल्कुल, गुस्सा बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि परीजा गुस्सा आना गलत नहीं है लेकिन उसे संभालना बहुत जरूरी है। जैसे मेजर ध्यानचंद ने अपना गुस्सा व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे संभाल कर रखा और जब वक्त आया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, है ना। अब चलो हम आगे बढ़े
4: जी दीदी।
2: आज मैं बच्चों आपको फिर से ले चलती हूँ उसी किताब की तरफ। छोटी सी ये मेरे हाथ में किताब है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और आज हम आपको इसका जो अंश सुना रहे हैं वो है मैंने पर्वतारोहण सीखा। मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश पाकर एक अच्छी पर्वतारोही बनने की इच्छुक थी। हालांकि मेरी माँ का विचार था कि ये काम लड़कियों के लिए बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरे पिता द्वारा किए गए त्यागों को मैं कभी नहीं भूली थी। अब परिवार के लिए कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अनेक कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे, लेकिन मुझे केवल कम वेतन वाले अस्थाई पदों के लिए ही उत्तर मिले, और वो भी केवल प्राइमरी स्तर के। मैं इतने परिश्रम से प्राप्त की गई अपनी शैक्षणिक योग्यता का अवमूल्यन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन सब नौकरियों को मैंने स्वीकार नहीं किया। घर में खाली बैठने की बजाय मैंने नेहरू संस्थान के प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां पर उस वर्ष के सभी स्थान भरे जा चुके थे। मुझे अगले वर्ष प्रवेश मिल गया और मैंने वहां पर बर्फ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, रैपलिंग के रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची खड़ी चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। हमें शिविर लगाने के तरीके भी सिखाए गए और पर्वतीय शिखरों को सुरक्षित ढंग से पार करने के तरीके भी सिखाए गए। नेहरू संस्थान के उप प्रधानाचार्य मेजर प्रेम चंद प्रशिक्षण अधिकारी थे। वो बड़े कठोर प्रशिक्षक थे जो बहुत उच्च स्तर के प्रदर्शन की अपेक्षा करते थे। मैंने सोचा था कि शायद मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि मुझे रजत हिम पदक और एक प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही, परंतु वास्तव में मुझे एक ग्रेड मिला था और मुझे उस कोर्स की सर्वोत्तम छात्रा घोषित किया गया था। उप प्रधानाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में मुझे एवरेस्ट सामग्री के रूप में लिखा था। समय के उस दौर में मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF 1984 में एवरेस्ट पर जाने के लिए एक मिले जुले अभियान की योजना बना रहा है और उनको पर्वतारोहण में प्रतिभावान और अनुभवी महिलाओं की तलाश है, तो मैंने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस स्तर में मैं दोनों में से कुछ भी होने का दावा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं IMF का पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गई। इसमें सूचित किया गया कि मुझे एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए चुना गया है। मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि मैं शिविर में उपस्थित हूँ। उन्होंने किस तरह से एवरेस्ट पर मेरे जाने का विचार किया, क्योंकि मैंने तो बहुत कम पर्वतारोहण किया था। एवरेस्ट वास्तव में एक पहुंच से बाहर की चीज थी। इतने अधिक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य के लिए अपनी योग्यता पर संदेह होने के कारण मैंने IMF के पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने केवल आगामी प्रशिक्षण कोर्स के बारे में ही सोचा। अक्टूबर 1982 में मुझे एडवांस कोर्स के लिए खाली हुए एक स्थान में प्रवेश मिल गया। उस कोर्स में हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखी। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अधिक ऊंचाई के अनुभव के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग की चढ़ाई की। बच्चों, काला नाग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर है। इस कोर्स में भी मुझे ए ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने के लिए मेरी संस्तुति की गई। लगभग इसी समय मुझे एवरेस्ट के जांच कैंप में भाग लेने के लिए IMF की तरफ से दूसरा पत्र प्राप्त हुआ। जब मेरे प्रशिक्षकों को इस बात का पता चला कि मैंने IMF के पहले पत्र की उपेक्षा की और अब दूसरा पत्र मिला है, उन्होंने कहा, बच्छेंद्री, क्या तुम नहीं समझती कि ये एक सुनहरा अवसर खो रही हो? उनके कहने पर मैंने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसके बाद मैं एक बदली हुई इंसान थी। यदि IMF ने मुझे एवरेस्ट दल के लिए संभावित प्रत्याशी समझा था, मैं उसकी बात कैसे गिरा सकती थी? उत्साहपूर्वक मैंने आरोहण के लिए आवश्यक घरेलू अभ्यासों के लिए अपना नाम लिखवा कर दिया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैं घास, चारे और सूखी लकड़ी के भारी से भारी गट्ठर उठाने लगी। मैं रोज आने जाने का रास्ता भी बदल देती थी। मैं और अधिक दुर्गम रास्ते और घाटियों से होकर निकलने लगी। जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती अथवा सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे कि मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं, ऊंचाई से डर निकाल सकूं और चक्कर आने से निजात पा सकूं। मेरी सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य एक सच्चा दक्ष पर्वतारोही बनना था। 1982 के उत्तरार्ध में मैंने गंगोत्री के जांच कैंप में भाग लिया। मेरे प्रशिक्षक मेरे प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न थे और इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने गंगोत्री और रूड़गेरा की चढ़ाई की। मुझे अपनी आरोहण योग्यता में आत्मविश्वास मिला। इसके तुरंत बाद मुझे सूचना मिली कि सितंबर अक्टूबर 1983 में होने वाली अंतिम चयन शिविर के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है। अगली बार बच्चों, जब मैं आपको मिलूंगी तो इसका अगला भाग सुनाऊंगी। लेकिन इस भाग में जो खास बात थी ना बच्चों, वो ये थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कितने कठिन कठिन रास्ते चुने, उन्होंने कितनी मेहनत की कि कैसे भी करके वो जहाँ भी जाएं उन्हें हर बार ए ग्रेड मिले, भले ही उन्हें उम्मीद हो या ना। आप देखिए, पहले कैंप से लेकर लास्ट कैंप तक जिसकी वो बात लिख रही हैं, उसमें हर जगह उन्हें ए ग्रेड मिला और एक बेहतर पर्वतारोही के लिए उन्हें चयनित किया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत को बचा कर रखा, है ना, अपने गोल पर फोकस किया और उसमें जुट गई। मतलब वही बात है, मेहनत, लगन और अपने काम से सच्ची ईमानदारी। क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: अच्छा लगा ना ये सुन के?
4: जी दीदी, बहुत अच्छा लगा।
2: तो चलिए फिर अब वापस लौटते हैं। हमने इस अंश में ये सुन लिया परीजा कि कैसे धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और यही बात हमारी फिर उसी बात पर लागू होती है, बचत पर। बचत हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से बनती है ना। तो बच्चों, आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो एक बार अपने मन में जरूर झांक कर देखिएगा, क्या आपके मन की गुल्लक खाली है या उसमें कुछ रखा हुआ है। अगर खाली है तो आज से उसे भरना शुरू कीजिए। थोड़ा सा प्यार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी समझदारी रखिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मन की गुल्लक हर कीमती चीज से भरती जा रही है।
4: दीदी, मेरी गुल्लक अब अच्छी चीजों से भर रही है।
2: ओ, तो तुम्हें बधाई हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है परीजा। तो परीजा की गुल्लक तो अब अच्छी चीजों से भर गई है। अब जरा आपको याद ही है कि जब मनीषा दीदी पूरी बाल सभा कर लेती है तो आखिर में आपके साथ कुछ संकल्प लेती है, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? और ध्यान करने से क्या होता है, हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए एक धीमे से संगीत के साथ। अब हम आज की बाल सभा में हमने जो किया उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धीमे से संगीत में धीरे से अपने मन की गुल्लक को खोलिए और चेक कीजिए कि क्या उसमें आपने थोड़ी सी ईमानदारी रखी है। अब धीरे से अपने मन की गुल्लक में ये भी देखिए कि आप अपने दोस्तों को उसमें संभाल कर रख पा रहे हैं, कहीं आपके दोस्त आपसे बात बात पर नाराज तो नहीं हो रहे हैं। अब जरा अपने मन की गुल्लक में धीमे से ये देखिए कि बड़ों के प्रति आदर आपने उसमें संजो के रखा है या नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान से देखिए उस गुल्लक में, आपने वो जो नानी और दादी को चिट्ठी लिखी थी वो संभाली है कि नहीं, जो पिछली बार बाल सभा में मैंने लिखने को कहा था। अब ये भी देख लीजिए कि आप किसी चीज को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, भले ही वो एक छोटा सा कागज ही क्यों ना हो। अब थोड़ा सा उस गुल्लक में ये भी ध्यान दीजिए कि आप समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपकी मन की गुल्लक अच्छी चीजों से भरी रहेगी तो आप एक बहुत अच्छे, प्यारे से, आत्मविश्वासी, बेहतरीन नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बस आज संकल्प भी पूरे हो चुके हैं और अब चलने का वक्त आ गया है। तो आज से आपको बचत का अर्थ सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी चीजों से, अपनी छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना है ना? क्यों परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो अब चलें परीजा?
4: जी दीदी।
2: तो बच्चों, अगले सप्ताह कुछ नई बातें, नए विषयों के साथ लौटेंगे, लेकिन अभी अनुमति दीजिए मनीषा को और मेरे साथ
4: परीजा को।
2: बच्चों नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था मन की गुल्लक। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
2: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। ये दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
3: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
3: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की। तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ों बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़ी अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है। और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
3: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
3: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है। या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ, तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है, तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता, सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोगों की

0: होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना बच्चों लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
1: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती है?
0: सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती, जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें, तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
1: सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की, कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
0: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी, और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है, तो लोग उनकी, डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े, और फिर समाज भी उस उनको मदद करे, दोनों के दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी, और आई थिंक ये एक बात है।
1: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा,
0: जी
1: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए
1: हाँ
0: कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पे काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक एस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए,
1: जी
0: है ना। पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम, अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है, तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा,

0: तो वेबसाइट्स, एप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
1: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
0: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल। जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
1: सर, आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
1: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, थैंक यू।
2: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है कि हम आपसे इस कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं से जुड़े हर उस पहलू को छूकर देखना चाहते हैं, जिससे कि हम हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को, उसकी कार्यशैली को, उसकी क्षमताओं को और उसके इतिहास को जानकर उस पर गर्व कर सकें और उससे प्रेरित हो सकें। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि कार्यक्रम में सिलसिला चल रहा है भारतीय सेना के इतिहास को जानने का और उसे समझने का, तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। श्रोताओ, ये युद्ध भारतीय सेना ही नहीं वरन आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में भी स्वर्णिम महत्व रखता है। पूरी दुनिया के समक्ष भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में इस युद्ध ने अपनी महती भूमिका निभाई और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, तीनों के बेहतरीन समन्वय को, जिसने सन 1971 के इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और देश को गर्व और अद्भुत आत्मविश्वास से भर दिया। श्रोताओं, ज्यादा समय न लेते हुए आइए जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया है।
2: धन्यवाद सर।
3: एंड इन अ वे यू हैड एक्चुअली समराइज द होल थिंग।
2: अच्छा,
3: वेरी नाइसली
2: जी, धन्यवाद।
3: यू आर वेरी करेक्ट जब आपने बोला कि ये जो युद्ध था
2: जी,
3: ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें कि भारतीय सेना बिना संदेह के मतलब विजयी रही थी। और इसका कारण, जैसे कि आपने अभी बोला, इट वॉज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमरेडशिप, जॉइंटमैनशिप, लीडरशिप एंड करेज ऑफ ऑल द थ्री आर्म्स, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द लीडरशिप ऑफ कोर्स, जिसके कारण कि हमें इसमें विजय प्राप्त हुई थी। और इस वॉर ने जो है एक नए नेशन को जन्म दिया, जो कि हम सब जानते हैं, जिसका नाम बांग्लादेश है। तो ये जो वॉर था, एक्चुअली इट कंटिन्यूड फॉर 14 डेज, 14 दिन का वॉर था ये। 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न सेक्टर के एयरफील्ड्स के ऊपर। और 14 दिन के बाद, यानी कि 17 दिसंबर को जो है 71 को, विद द डिफीट ऑफ पाकिस्तान, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था।
2: तो सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सन 1971 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी कि मतलब दो बार हम पहले भी भिड़ चुके थे, उसके बाद ये तीसरी बार ऐसा क्या रहा कि हम फिर से आमने सामने आ गए?
3: बिल्कुल, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि इट वाज अ डेफिनेट विक्ट्री और इसमें पाकिस्तान के मतलब जो है ऑलमोस्ट 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था एंड उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया था ईस्टर्न पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान, मतलब ये जो वेस्टर्न सेक्टर है हमारा, वेस्ट पाकिस्तान का एरिया है, इसमें भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की टेरिटरी जो है जिसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया था। एंड इस युद्ध में देखिए, था तो 14 दिन का, लेकिन कितना इंटेंस था वो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 3,000 सोल्जर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स, जेसीओस, वार ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।
2: मतलब इतने कम दिनों में
3: इतना
2: ज्यादा हमने जो हानि है उसको देखा युद्ध
3: की। और इवन 12,000 के करीब जो है जो सोल्जर्स थे सेम अगेन ऑफिसर जिसे जो थे वो वाउंडेड हुए जो है घायल हुए इसमें। और इट अगेन आई विल एम्फसाइज ऑन द सेम थिंग कि इतना इंटेंस था कि 600 से ज्यादा ऑफिसर्स जिसे सोवास को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे इसमें, जिसमें कि 4 परमवीर चक्र थे, 76 महावीर चक्र थे और 513 जो है वीर चक्र थे। इसके अलावा और भी काफी जो है अवार्ड्स मिले थे। तो ये दर्शाता है कि कितना इंटेंस वॉर था और ये पहला वॉर था जिसको कि हमने दोनों फ्रंट पे लड़ा, वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा, ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ा। और अगेन इट वाज द फर्स्ट वॉर जिसमें कि तीनों जो हमारी सेनाओं की अंग है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक साथ मिलकर जो है इसको युद्ध को लड़ा था। तो वॉर तो 17 दिसंबर को जैसे मैंने बोला सीज फायर के बाद खत्म हो गया था, लेकिन फाइनली मतलब वी कैन से कि द चैप्टर क्लोज्ड आफ्टर द साइनिंग ऑफ शिमला एग्रीमेंट ऑन 2 जुलाई इन 1972। ठीक है, इसके लिए जैसे आपने अभी खुद ही पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि हमें तीसरी बार जो हमारी लड़ाई हुई तो इसके लिए हमको थोड़े से ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में विचरना पड़ेगा कि जो पीछे जाना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं जब हमारे देश को आजादी मिली थी। तो आप हम सभी को विदित है कि जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान का जन्म इस तरह से हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पंजाब यानी कि हमारे पंजाब के आधे हिस्से पंजाब को डिवाइड कर दिया था। वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान को मिला के जो है वेस्ट पाकिस्तान बना। और ईस्ट पाकिस्तान है जो बंगाल प्रोविंस था उसको दो टुकड़े करे हुए थे और सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो था असम का उसको मिला के जो है ये ईस्ट बंगाल बना। अब ये दो विंग तो इन्होंने बना दिए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी तकरीबन 1600 किलोमीटर थी।
2: अच्छा।
3: और लैंड कम्युनिकेशन तो था नहीं क्योंकि बीच में भारत था। तो इनके पास जो जाने का रास्ता या तो बाय एयर था या बाय सी होता था। ठीक है, तो अब इतनी दूरी जो ये दूरी थी फिजिकल जो ये दूरी थी ये इसने इनके कारण इनके दिलों में भी दूरी थी।
2: जी बिल्कुल।
3: और उसका एक और कारण और भी कई कारण तो कई थे लेकिन एक मेजर था देखें अगर हम तो सिर्फ एक रिलीजन था जो उनके बीच में कॉमन लिंक था यानी कि दोनों जो हिस्से थे वो दोनों मुस्लिम थे।
2: धर्म के आधार
3: पे जुड़े हुए थे। अदरवाइज अगर आप देखें तो उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनके लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर एक कुछ अलग था। वे भी देखते हैं हम जैसे बांग्लादेश जो है उसका इंक्लिनेशन अगर कल्चर वाइज देखें तो हमारे वेस्ट बंगाल से मिलता है पूरा का पूरा। और वैसे ही अगर आप वेस्ट पाकिस्तान देखें तो उनका कल्चर जो है पंजाब और इवन मिडिल ईस्ट उस तरफ से मिलता है। ठीक है, तो इट वाज अ वास्ट डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। अगर आप ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जिसको अभी हम पाकिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान है वो अगर देखें तो आप इट इज मोर अकिन टू लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईरान, इराक, अफगानिस्तान उस तरह है। और अगर हम ईस्ट मतलब बांग्लादेश को देखेंगे जिसको कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उसका इंक्लिनेशन देखे ज्यादा साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा है। तो किसी उस समय मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाता था कि कहा था कि वेयर वेस्ट पाकिस्तान एंड्स मिडिल ईस्ट बिगिंस एंड वेयर ईस्ट पाकिस्तान एंड्स साउथ ईस्ट एशिया बिगिंस। दैट्स वेरी करेक्ट ज्योग्राफिकली इफ यू सी, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि इन दोनों हिस्सों में कंट्री के काफी डिस्पैरिटीज थी और ये सिर्फ लिटरेचर और अदर फील्ड में नहीं थी, इवन इकोनॉमिकल कंडीशंस इनकी दोनों के अलग अलग थी। वेस्ट पाकिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान वो काफी समृद्ध था एंड मैक्सिमम जो उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी काफी अच्छी थी एज कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। एजुकेशन वाइज ऑल्सो दे वर मच बेटर एंड वेस्ट पाकिस्तान इनफैक्ट डोमिनेटेड इन एवरीथिंग। वो हर तरह से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता था और उन्होंने एक तरह से एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना और ना ही उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि इनकी इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना चाहिए,
2: इनका
3: विकास होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं था, जबकि अगर आप देखें बांग्लादेश और उस समय कहीं पाकिस्तान, इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड, आज भी है, इंडस्ट्रियल वाइज ऑल्सो पोर्ट्स थे उसके पास, तो व्यापार के लिए मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए काफी अच्छा वो था, बट समहाउ दे नेवर पेड अटेंशन। तो है इनफैक्ट इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान की एंटायर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके टॉप मिलिट्री ब्रास थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यहाँ तक की जो एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी भी थी, वो भी एक तरह से मतलब सब मिलके यूनानिमस थे कि भी इनको जो है ईस्ट पाकिस्तान को हम कोई रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, ना ही हम देंगे। अच्छा। मतलब उनका एक्सेप्टेंस नहीं था पार्लियामेंट में भी, यहाँ तक कि आप ये देखिए कि ईस्ट पाकिस्तान को भी जो ब्यूरोक्रेट्स जो आर्मी अफसोस कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो भी मतलब वेस्ट पाकिस्तान के थे, उन्होंने वहाँ के लोकल्स को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। तो इसके कारण क्या था कि काफी बिटरनेस थी,
2: एक असंतोष तो पैदा होगा,
3: एक असंतोष तो पैदा होता ही है ना, जैसे कि और ये कहीं पे भी हो सकता है।
2: जी बिल्कुल।
3: तो अगर एक और चीज जो थी जो हमने देखी है हिस्ट्री में, देखा है कि जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है ज्यादातर टाइम वो मिलिट्री रूल में रहा है।
2: जी ना,
3: तो इन 69 में जो जनरल याहिया खान थे मिलिट्री रूलर थे, उन्होंने कहा कि डिक्लेयर किया कि इलेक्शंस कराएंगे कंट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है मतलब बनाएंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो ये इलेक्शन जो थे दिसंबर में करने थे। अब इसमें जो दिसंबर में जब इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो विजयी हुई, और ईस्ट पाकिस्तान में जो है अवामी लीग के मुजब्बिर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप के साथ आई थी। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नंबर वाइज जो सीट वाइज देखा जाए तो जो अवामी लीग थी उनके पास पीपीपी से ज्यादा सीट्स थी,
2: ज्यादा थी।
3: तो अच्छा। हक उनका बना कि वो गवर्नमेंट बनाए।
2: ओके, अच्छा अच्छा।
3: अब ये बात जो है बस पाकिस्तान को स्वीकार ही नहीं थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान वालों को हमारे ऊपर रूल करने के लिए या गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए। तो अब एक डलाइमा आ गया। अब जब जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया, ना तो मिलिट्री ब्रास, ना वहाँ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, ना जो है पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी तैयार नहीं हो रहा था,
2: स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे।
3: तो अब वो क्या किया, उन्होंने टालना शुरू कर दिया।
2: अच्छा।
3: कि जो है उसको पोस्टपोन करना शुरू किया, गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो ये जब होने लगा तो नेचुरल है कि मुजब्बिर रहमान साहब जो थे अवामी लीग थी, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा जब हमें एक पूर्ण बहुमत मिला है तो हमें गवर्नमेंट बनाने का हक दिया जाए।
2: जी, बिल्कुल।
3: इसके लिए फिर जो है उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री क्रैकडाउन किया, मतलब इन द सेंस इनको विद्रोह बोल के इनको दबाना शुरू कर दिया। एंड 25 मार्च 1971 में उस समय जनरल टिक्का खान जो थे तो ही वॉज इन बांग्लादेश कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जो है पूरी तरह से मिलिट्री जो है क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसमें कि जितनी पॉपुलेटेड सिटीज थी, ढाका हो गया, चित्तगांव हो गया और इम्पोर्टेंट टाउन से, उसमें उन्होंने ब्रूटली जो है लोगों को मारा।
2: अच्छा।
3: तो ये अवामी लीग के जितने सपोर्टर्स वगैरह थे सबको उन्होंने जो है मतलब शॉट डाउन किया, मतलब दे किल्ड देम, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करी आर्मी ने। फिर उसके बाद जो है जैसा कि होता है, इवन उसके बाद मतलब जो ये किलिंग्स थी, इट फॉलोड बाय लूट, ठीक है, रेप, आर्सन, मतलब काफी उन्होंने जो है इनको नुकसान पहुंचाया। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स से जो उनके ठिकाने थे इनके अवामी लीग के रेजिस्टेंट के, तो इनके ऊपर बम्बार्डिंग भी कराई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अपना ही देश है, अपने देश के ऊपर जो है हाँ इस तरह से जो है करना शुरू किया। और ये चलता रहा तो अप्रैल तक जो है पाकिस्तान रूलर्स ने बोला कि भाई अभी जो है हमने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है इस पाकिस्तान में, और जो अपराइजिंग थी जिसको अपराइजिंग बोल रहे थे और रिवोल्ट था उसको हमने खत्म कर दिया है। बट एक तरह से देखा जाए तो तक जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ये मन बना चुके थे कि हम अब वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। और ये जो है एक तरह से उनके रिवोल्ट की जो अपराइजिंग थी एक तरह से शुरुआत कहलाई वहां से, क्योंकि जब आपने उनको इतना दबा दिया, इतनी एट्रोसिटीज कर दी हैं, तो वो जो है किसी भी तरह से अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है अवामी लीग के, इन्होंने शरण ली इंडिया में। ये सारे के सारे जो है इंडिया में आए और अप्रैल में इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर करी जिसमें कि बांग्लादेश, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश डिक्लेयर किया,
2: यहाँ भारत से,
3: भारत से जो है डिक्लेयर किया। इस बीच में जो था कि जनरल टिक्का खान से जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्यायाजी थे
2: जी,
3: उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। अब उनको ये टास्क दिया गया कि आप कुछ भी हो जाए इसको खत्म करना है, आप ये रेबल्स जो है ये खत्म करना है, किसी भी हालत में जो है इस पाकिस्तान को नहीं अलग होने,
2: विद्रोह को दबा दिया जाए,
3: विद्रोह को दबाया जाए। तो मेजर क्रैकडाउन बिगिन अगेन, जिसमें कि बहुत ज्यादा उन्होंने कैजुअल्टीज करने शुरू करी सिविलियंस पे। अब ऐसे में क्या होता है, सिविलियंस सारे के सारे जो है भागने शुरू हुए। अब इन्होंने सबने क्या किया, उनके लिए ठिकाना क्या था, कहाँ आना, शरण लेने के लिए इंडिया में। एक वक्त ऐसा आ गया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ बांग्लादेशी हो गए। अब उस समय हमारी भी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम 1 करोड़ लोगों को या 93 लाख लोगों को खिला सके, तो इट क्रिएटेड अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इवन इंडिया ऑल्सो। तो फिर इंडिया ने जो है, कंट्री ने जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कि उन्होंने ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी ने जो बांग्लादेशी पे एट्रोसिटीज करी हैं उसके अगेंस्ट जो है आवाज उठाई। ठीक है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है इस पाकिस्तान को पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में सपोर्ट करेंगे।
2: अच्छा,
3: जो है एक तरह से मतलब जो है ये डिसाइड किया गया। तो अब इस बीच में क्या हुआ कि इस पाकिस्तान में कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, एंड जब इतना ज्यादा मतलब होने लगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जिसको कि अप्रैल में एस्टैब्लिश हुई, जिसको मुक्ति वाहिनी बोलते हैं।
2: अच्छा,
3: आप लोगों ने भी काफी उसका नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी। तो इसका जन्म जो हुआ वो ये क्रैकडाउन के बाद हुआ
2: जो सशस्त्र जो उनका विंग था
3: जी,
2: वो मुक्ति वाहिनी कहलाए शायद, मेरे ख्याल से सर,
3: अवामी लीग का
2: जी,
3: एक तरह से, ऑल्दो इट वाज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन
2: जी,
3: लेकिन ये पूरी तरह से आप जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, एक तरह से वो इनका सशस्त्र विंग ही था
2: जी।
3: अब इसमें क्या है, काफी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया क्योंकि इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस के लोग थे जो आए थे, पुलिस के लोग थे, तो वो सारे के सारे ट्रेन जो लोग थे वो इसमें शामिल थे,
2: ईस्ट बंगाल के जो थे,
3: ईस्ट बंगाल के जो थे वो इसमें शामिल थे। आप ये समझ सकते हैं कि जब नवंबर के टाइम पे जब लड़ाई का वक्त आ रहा था, दिसंबर जब शुरू हुई थी, उस समय इनके पास तकरीबन जो है 83,000 to 85,000 मतलब सोल्जर्स थे मुक्ति वाहिनी में। इसको ट्रेनिंग दी थी इंडियन आर्मी ने, ट्रेनिंग दी थी, इनको हथियार दिए थे, और इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया जब हमने जो है इस मतलब पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए जब हमने वॉर लड़ा है, उस समय इनका काफी सपोर्ट रहा जी, क्योंकि इनको डेफिनेटली इनको टेरेन के बारे में मालूम था, इनको जो है बाकी पाकिस्तान आर्मी के बारे में मालूम था, इन्फॉर्मेशन जो है काफी मतलब जो है गाइड के लिए कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। यू नो बांग्लादेश इज अ वेरी यूनिक कंट्री इन द सेंस, वहाँ पे बहुत मेजर रिवर्स जाती है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो अगर आप देखें सब उधर जाती है, तो ये एक मेजर लैंडमार्क्स होते हैं इन द सेंस कि नदी को कैसे पार करना है, कहां पार करना है, और बहुत सारे वो बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स बनते थे
2: जी,
3: तो इसमें उनका गाइडेंस बहुत काम आया। तो ये जो चल रहा था
2: जी,
3: अब मुक्ति वाहिनी जो थी वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती थी, उनको वो एक तरह से जो है जहां उनकी पोस्ट होती थी उस पे मतलब जो है हिट एंड रन रहता था, अटैक्स करते थे
2: जी।
3: और उसके बाद वो क्या करते थे, जो गरिलास और फिर की तरह था, तो वो इंडिया में आते थे, तो उसका पीछा करते हुए कई बार जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आने लग गए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा स्कर्मिशेस, तनाव होना शुरू हो गया, क्योंकि तो भाई वो आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि उन्होंने हमारी पोस्ट पे फायर करना शुरू कर दिया, जब पोस्ट पे फायरिंग शुरू हुई तो फिर इंडियन आर्मी भी जो है जाके जो है अंदर जाके उनसे लड़ने जवाब देने लगी। अच्छा, इस बीच में अगर आप देखें पॉलिटिकल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज चल रही थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान एट ऑल, वो तो मतलब एक तरह से बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान को ये था कि जब ऐसा कुछ अगर इंडिया अटैक करता है तो एक तो चाइना उसको सपोर्ट करेगा और अमेरिका सपोर्ट करेगा। समाउ इन बिटवीन लाइक वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, तो ये जो एस्पेक्ट था अमेरिका वाला ये तो मतलब नहीं आया
2: जी।
3: और चाइना ऑल्सो नेवर प्लेड एनी एक्टिव रोल. चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया लेकिन उसने अपना फ्रंट नहीं खोला था, जो हमारे लिए अच्छी बात रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे. उस समय हम देखिए ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में अभी तक जितने हमने वॉर देखे हैं वो एक मतलब एक लिमिटेड जगह पे हमको लगता था कि जैसे पंजाब में हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऊपर कश्मीर में हो रहा है या थोड़ा यहाँ, तो मतलब नेवी भी फाइट में कर रही है और पूरा का पूरा राजस्थान पंजाब ऊपर जो है जेएंड के बॉर्डर जो है ऐसे मतलब एवरीथिंग वाज एक्टिव. तो उस समय कम से कम अगर अरुणाचल और ये नहीं थे तो बाकी अदरवाइज इंडिया वाज फाइटिंग वॉर ऑन बोथ द
2: पूरी सीमा पर ही लड़ाई चल रही थी.
3: सीमा पे लड़ाई चल रही थी. तो ये जो है छोटे छोटे जो रिटेलिएटरी एक्शंस हो रहे थे और बॉर्डर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी तो उसमें फिर जो मई मंथ में जो है आर्मी टुक ओवर द बॉर्डर इन ईस्ट पाकिस्तान बीएसएफ के पास होता है तो उससे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था ताकि उनको क्योंकि लग रहा था कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं एंड फाइनली मतलब जो है ये जो लड़ाई थी आपस में इट लेड टू वॉर ऑफ 1971. तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये एक डिसकंटेंटमेंट था ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेशीज का अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जिसके कारण जो है ये लड़ाई हुई.
2: एक तरह से दोनों ही देशों के बीच में भारत आ गया.
3: ज्योग्राफिकली भी था, ठीक है, पॉलिटिकली भी आ गया एंड जो है फिर लड़ाई में भी आया. तो ये एक मतलब दीज आर द सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण ये युद्ध हुआ था जो है. अब इस युद्ध में जो है क्या हो रहा, किस तरह से चला हुआ, उसमें हम आर्मी का कैसे रोल रहा, नेवी का कैसे किया, एयरफोर्स का क्या रोल रहा, एंड आई सजेस्ट हम इसको हम आगे एपिसोड में कवर करेंगे और हमारे जो बहादुर जवान हैं उन्होंने किस तरह से वो लड़े देश के लिए और हाउ दे रियली मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे जो है.
2: बिल्कुल सर. तो श्रोताओं आज हमने बात की कि क्या थी वो पृष्ठभूमि जिसके कारण सन 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने थे. जानेंगे इस युद्ध के बारे में हर बात तफसील से और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इस महत्वपूर्ण युद्ध में क्या भूमिका अदा की हमारे कार्यक्रम के अगले कुछ एपिसोड्स में, जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व. जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर. सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इस आशा के साथ कि हम हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को आपसे यूं ही जानते रहेंगे.
3: या श्योर पूर्वा जी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद श्रोताओं एंड जय हिंद पूर्वा जी.
2: जय हिंद सर. तो ये था कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और मैं थी आपके साथ आपके अपनी पूर्वा खले. 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए.

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक भारत के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारतीय नौसेना पर, जो हमारे सागर के प्रहरी भी हैं।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादाजी, मैं नौसेना की वेबसाइट देख रही हूँ, पर यहाँ तो मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। ये फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट क्या होते हैं? क्या ये सब जहाज है? दादू, मैं तो टोटली कंफ्यूज हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे समझूं इस नौसेना को।
2: अरे रुचि बिटिया, इतना उलझने की क्या जरूरत है? देखो, जैसे सड़क पर कार, बस और ट्रक अलग अलग होते हैं, वैसे ही समंदर में अलग अलग तरह के जहाज होते हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं।
1: अच्छा, अब समझी मैं। दादू, हमारी भारतीय नौसेना की ताकत क्या है?
2: बिटिया, भारतीय नौसेना एक थ्री डायमेंशनल फोर्स है। इसका मतलब है कि हमारी ताकत सिर्फ पानी की सतह यानी सरफेस तक सीमित नहीं है। हम पानी के नीचे सब सरफेस और आसमान यानी हवा में एक साथ हमला करने की क्षमता रखते हैं।
1: तो ये फिर कोस्ट गार्ड और नेवी में क्या अंतर है?
2: रुचि बिटिया, पहले भी हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर चुके हैं।
1: वो तो है।
2: दरअसल भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, लेकिन इसका मुख्य काम समुद्र में कानून का पालन करवाना और समुद्री सुरक्षाएं बनाए रखना होता है।
1: दादू, क्या इंडियन कोस्ट गार्ड का बस यही काम है?
2: नहीं बिटिया, बस इतना ही नहीं। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्य काम तो समुद्र के तटों की रक्षा, पानी के रास्ते होने वाली तस्करी को रोकना और संकट के समय मछुआरों की सुरक्षा करना होता है।
1: ये तो ठीक है। और भारतीय नौसेना?
2: बिटिया, नौसेना का कैनवास बहुत बड़ा है। दरअसल ये एक ब्लू वाटर नेवी है। इनका काम युद्ध लड़ना, गहरे समुद्र में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना और दुश्मन के बेड़े को रोकना है। तुम्हें पता है, इंडियन नेवी को भारत की समुद्री सीमाओं का अंतिम रक्षक कहा जाता है।
1: लगता है अब इस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। दादाजी, क्या आप मेरे सवालों के लिए तैयार हैं?
2: हाँ हाँ बिल्कुल चिड़िया रानी, बिल्कुल।
1: दादू, आपको पता है, एक दिन मैं समुद्री जहाजों की तस्वीरें देख रही थी।
2: अच्छा।
1: मैंने उनमें एक बड़ा सा युद्धपोत देखा। क्या वो भी तटरक्षक बल का जहाज है?
2: नहीं बिटिया, वो तटरक्षक का जहाज नहीं है, वो तो नौसेना का डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर बहुत शक्तिशाली युद्धपोत होते हैं जिनका उपयोग युद्ध के समय दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई हमलों से रक्षा करने के लिए किया जाता है बिटिया।
1: मतलब नौसेना के जहाज तटरक्षक के जहाजों से अलग होते हैं दादाजी?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल। नौसेना के पास बहुत बड़े और अत्याधुनिक युद्धपोत होते हैं। INS विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है। इसे ही अंग्रेजी में एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं।
1: अच्छा दादू, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये क्या काम करता है?
2: एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा विशाल जहाज होता है जिसके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। इस पर रनवे, कंट्रोल टावर, रहने की जगह, हथियार प्रणाली और कई तकनीकी सुविधाएं होती हैं।
1: अच्छा, तो इसका मतलब इसे ही समुद्र पर तैरता हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों सैनिक और अधिकारी एक साथ रहकर काम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बिटिया, बिल्कुल सही।
1: दादाजी, फिर तटरक्षक बल के पास कैसे जहाज होते हैं?
2: बिटिया, तटरक्षक बल के जहाज नौसेना जितने बड़े युद्धपोत नहीं होते, लेकिन वे बहुत तेज और चुस्त होते हैं।
1: अच्छा।
2: उनके पास ऑफशोर पेट्रोल वेसल होते हैं। इन जहाजों का काम समुद्री सीमा में गश्त करना, तस्करी रोकना, मछुआरों की मदद करना और किसी आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाना होता है।
1: मतलब वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और सहायता के लिए काम करते हैं।
3: बिल्कुल सही समझी बिटिया रानी, बिल्कुल सही।
2: तटरक्षक बल मुख्यतः समुद्री कानून लागू करवाने और मानवीय सहायता के काम करता है।
1: और अगर कोई नाव समुद्र में फंस जाए तो?
2: तब तटरक्षक बल तुरंत खोज और बचाव अभियान चलाता है और लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है।
1: अच्छा, क्या नौसेना और तटरक्षक बल एक दूसरे के साथ काम करते हैं?
2: हाँ बेटा, कई परिस्थितियों में दोनों मिलकर काम करते हैं। समुद्री सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए समन्वय बहुत जरूरी होता है।
1: दादाजी, अब समझ में आता है कि समुद्र की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती है।
2: हाँ बेटा, समुद्र शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के पीछे नौसेना और तटरक्षक बल के जवानों की कड़ी मेहनत और सतर्कता होती है।
1: समझ गई दादाजी मैं। नेवी समंदर की तलवार है तो कोस्ट गार्ड उसकी ढाल है।
2: हाँ, बिल्कुल सही समझी बिटिया, बिल्कुल सही। और उनका मंत्र भी यही है, शम नो वरुणा, मतलब समंदर के देवता हमारे लिए शुभ हों।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मैं जानती हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंडियन नेवी डे को किस दिन मनाया जाता है?
2: बिटिया, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
1: अच्छा, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है दादाजी?
2: हाँ बिल्कुल है,
1: तो फिर सुनाइए ना।
2: बेटा, ये दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट से जुड़ा हुआ है। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 4 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। इस साहसिक ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बिना किसी नुकसान के दुश्मन के जहाजों को तबाह कर दिया था।
1: तभी ये दिन विजय का प्रतीक बन गया दादाजी। और इसीलिए इस ऐतिहासिक जीत और नौसेना के जांबाजों के बलिदान को याद करने के लिए इस दिन को नेवी डे के रूप में मनाया जाता है।
2: हाँ बेटा, तुम जानती हो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से प्रेरित होकर भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज भी मिला है, जो हमारी समुद्री विरासत पर गर्व का प्रतीक है।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: दादाजी, इंडियन नेवी के पास किस तरह के हथियार हैं?
2: बेटा, इनके पास अत्याधुनिक हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, वरुणास्त्र, टॉरपीडो और MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं। तुम जानती हो बेटा, नेवी का गौरव है उनका विमान वाहक पोत।
1: दादू, क्या हमने भी कोई स्वदेशी पोत तैयार किए हैं?
2: हाँ बिटिया, हमारे पास INS विक्रमादित्य और पूरी तरह स्वदेशी INS विक्रांत है। ये समंदर में तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन है। इन पर से MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं।
1: वाह दादाजी वाह, यानी INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का चलता फिरता किला है।
2: हाँ बिटिया,
1: लेकिन दादाजी, क्या इन विशाल जहाजों को समंदर के अंदर छिपी पनडुब्बियों और दुश्मन की मिसाइलों से खतरा नहीं होता? इनकी सुरक्षा के लिए भी तो नेवी के पास सुरक्षा कवच होता होगा ना?
2: वाह बिटिया, बहुत गहरा सवाल पूछा तुमने। समंदर में ये विशाल जहाज कभी अकेले नहीं चलते, इनके चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य चक्रव्यूह होता है, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप या कैरियर बैटल ग्रुप कहते हैं।
1: हाँ सच में? क्या दादू, ये अभेद चक्रव्यूह किस तरह के होते हैं?
2: बिटिया, सुरक्षा का पहला घेरा आसमान से बनता है, जिसमें जहाज पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव KA-31 जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों पर नजर रखते हैं।
1: और दूसरा कवच?
2: जहाजों का दूसरा कवच पानी की सतह पर होता है। कहने का मतलब है कि विमान वाहक पोत के साथ हमेशा डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट चलते हैं। ये जहाज आधुनिक बराक 8 मिसाइलों और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस होते हैं, जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देते हैं।
1: और पानी के नीचे का अदृश्य पहरा यानी सबमरीन्स?
2: अरे वाह रुचि बिटिया, बिल्कुल सही समझी।
1: आखिर पोती किसकी हूँ?
2: वो तो है
1: दादू। अच्छा ये बताइए ना, कि मैंने सही कहा ना?
2: हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल सही कहा। देखो, पनडुब्बियों के खतरे से निपटने के लिए स्ट्राइक ग्रुप के साथ अपनी भी पनडुब्बियां होती हैं, साथ में P-8I जैसे विमान और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर पानी के नीचे छिपे दुश्मन को ढूंढकर टॉरपीडो से खत्म कर देते हैं।
1: दादाजी,
2: हाँ?
1: ये प्रोजेक्ट कुशा क्या है?
2: दरअसल भारतीय नौसेना INS विक्रांत और अन्य जहाजों के लिए 250 से 350 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रही है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा।
1: अच्छा, और वो जो पानी के नीचे छिप कर रहती हैं सबमरीन्स?
2: बिटिया, पनडुब्बी या सबमरीन तो नेवी के साइलेंट किलर्स हैं। भारत के पास INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना हफ्तों पानी के नीचे रह सकती है।
1: दादाजी, आपने थ्री डायमेंशनल फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया था, इसका असली मतलब क्या युद्ध के मैदान में दिखता है?
2: बिल्कुल रुचि बिटिया, इसे समझने के लिए तुम्हें 1971 के युद्ध का वो किस्सा याद करना होगा।
1: कौन सा किस्सा दादाजी?
2: वो जिसे दुनिया ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जानती है। ये वो समय था जब भारतीय नौसेना ने पहली बार अपनी पूरी ताकत दिखाई थी।
1: हाँ दादू, 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना के मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह की ओर रुख किया था। ये सरफेस पर होने वाला पहला हमला था। हमारे जहाजों ने एंटी शिप मिसाइलों से दुश्मन के जहाजों को समंदर की गहराई में भेज दिया, पर इसमें थ्री डायमेंशनल वाला हिस्सा कहाँ था?
2: देखो बेटिया, जहाँ एक तरफ सरफेस पर हमारे जहाज लड़ रहे थे, वही सब सरफेस यानी पानी के नीचे हमारी सबमरीन पनडुब्बियां दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुई थी, और ऊपर आसमान में INS विक्रांत से उड़ान भरने वाले सी हॉक लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। यही होता है एक थ्री डायमेंशनल फोर्स का असली प्रदर्शन, दुश्मन को बचने का कोई रास्ता ना देना।
1: हाँ दादू, बिल्कुल। और अब तो हमारी नौसेना के पास P-8I जैसे एयरक्राफ्ट भी तो हैं, जो आसमान से ही पानी के नीचे छिपी सबमरीन को ढूंढ लेते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा रुचि बिटिया, और इसे ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर कहते हैं।
1: दादाजी, अगर कोई स्टूडेंट कोस्ट गार्ड चुने तब क्या उसे एग्जाम देना होगा?
2: तो बिटिया, उसे CGEPT कोस्ट गार्ड एनरोल पर्सनल टेस्ट देना होगा। इसमें यांत्रिक और नाविक के पद होते हैं। ये उन युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो साहस और समाज सेवा दोनों एक साथ करना चाहते हैं।
1: अच्छा दादू, एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि नेवी में जाने का मतलब सिर्फ पानी में रहना नहीं है।
2: हाँ बिटिया, एकदम सही कहा। यहाँ कई विकल्प हैं। नेवल एविएशन में जाकर पायलट बन सकते हैं, सबमरीन में जाकर अंडरवाटर वॉरफेयर विशेषज्ञ, शिप पर रहकर गनरी और मिसाइल ऑफिसर बना जा सकता है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अहमियत है बेटा।
1: दादाजी, लड़कियों के लिए भी अब इसमें क्या रास्ते हैं? क्या कोई लड़की भी शिप पर तैनात हो सकती है?
2: हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल। नौसेना अग्निवीर के तहत महिलाओं को सेलर के तौर पर नियुक्त किया जाता है।
1: अच्छा।
2: हाँ, और अगर तुम अधिकारी बनना चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET या CDS के जरिए एग्जीक्यूटिव टेक्निकल या एजुकेशन ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हो। अब महिलाएं युद्ध पोतों पर तैनात हो रही हैं और लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं।
1: क्या बात है दादू, क्या नेवी में भी NSG जैसे कमांडो होते हैं?
2: हाँ, उन्हें मार्कोस मरीन कमांडोस कहते हैं बेटा। इनका नारा है द फ्यू द फियरलेस। ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक हैं, जो पानी, जमीन और हवा कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं।
1: लेकिन दादू, सबमरीन के अंदर का जीवन कैसा होता होगा? वहाँ तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती होगी ना?
2: हाँ बिटिया, वहाँ तो दिन और रात का पता सिर्फ घड़ी से चलता है। सबमरीन के अंदर जगह बहुत कम होती है बेटा, जिसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। वहां हॉट बेंडिंग का सिस्टम होता है, यानी जब एक जवान अपनी ड्यूटी पर जाता है तो दूसरा उसी बिस्तर पर सोता है।
1: और ताजी हवा?
2: वहाँ हवा को रिसाइकल किया जाता है बेटा। ऑक्सीजन पैदा करने के लिए कुछ खास मशीनें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सन्नाटा। दुश्मन से बचने के लिए वहाँ अल्ट्रा क्वाइट स्टेट बनाई जाती है, जहाँ तेज आवाज में बात करना भी मना होता है।
1: तो दादाजी, वो दुश्मन को देखते कैसे हैं फिर?
2: वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती बेटा, वे सोनार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आवाज की लहरों से पता चलता है कि दुश्मन का जहाज कितनी दूर है बेटा, और उनके पास टॉर्पिडो जैसे घातक हथियार होते हैं जो पानी के अंदर ही चलकर दुश्मन को तबाह कर देते हैं।
1: हफ्तों तक बिना सूरज देखे, बिना शोर मचाए देश की रक्षा करना, दादाजी ये तो किसी तपस्या से कम नहीं है।
2: इसीलिए तो सब मरीनर को अपनी वर्दी पर एक खास डॉल्फिन बैज लगाने का हक मिलता है, जो उनके गौरव का प्रतीक है।
1: दादाजी, आपने ब्रह्मोस का नाम लिया, ये मिसाइल इतनी खास क्यों है, और ये समंदर की लहरों के बीच अपने दुश्मन को ढूंढती कैसे है?
2: रुचि बिटिया, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार इतनी है कि दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलता।
1: अच्छा,
2: ब्रह्मोस एरोस्पेस के अनुसार ये जमीन, हवा और पानी के नीचे से भी दागी जा सकती है। इसे दागो और भूल जाओ तकनीक वाला हथियार कहा जाता है बेटा।
1: लेकिन दादाजी, इसे रास्ता कौन दिखाता है? क्या इसके पास अपनी कोई आंखें हैं?
2: हाँ बिटिया, जिसे हम रडार कहते हैं, ये नौसेना की तीसरी आंख DRDO द्वारा विकसित आधुनिक सेंसर और रडार मीलों दूर से दुश्मन के जहाज या मिसाइल को पहचान लेते हैं। ये रडार मिसाइल को सिग्नल भेजते हैं और उसे सही निशाने तक पहुंचाते हैं।
1: वाह दादाजी, इसका मतलब तो ये है कि हमारे जहाज न सिर्फ हमला करने में तेज हैं, बल्कि उनकी नजर भी बहुत पैनी है।
2: हाँ बिटिया, बहुत पैनी है और बहुत तेज है।
1: दादू, ये बताइए ना कि इन कैडेट्स की दिन की शुरुआत कैसे होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है?
2: INS चिल्का में दिन की शुरुआत रेवेली से होती है, जो एक तरह का बिगुल है। वहाँ सुबह 4 बजे फॉल इन होना पड़ता है, यानी जागना होता है। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या बारिश हो, ट्रेनिंग रुकती नहीं है। यहीं से एक अग्निवीर का अनुशासन शुरू होता है।
1: इतनी सुबह उठकर वे क्या करते हैं?
2: बेटा, सबसे पहले PT, मीलों की दौड़, पुशअप्स और चिनअप्स। इसके बाद शुरू होती है ड्रिल, यानी कदम ताल। ड्रिल सिर्फ चलना नहीं है, ये टीम वर्क और आज्ञा पालन का पहला सबक है। जब सैकड़ों जूतों की थाप एक साथ जमीन पर पड़ती है तो उसकी धमक दुश्मन का दिल दहला देती है बिटिया।
1: दादू, क्या इनको सारा दिन बस दौड़ना ही होता है?
2: नहीं बिटिया, दोपहर में क्लास में रूम में पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है। वहाँ नेवल चार्ट्स, सीमैनशिप, नेविगेशंस और सिग्नल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। टेक्निकल ब्रांच में जहाज के इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और हथियारों की बारीकियों को समझना होता है।
1: यानी इंडियन नेवी में ट्रेनिंग के दौरान दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत बनाया जाता है। अच्छा दादू, शाम को तो उन्हें छुट्टी मिलती होगी ना फिर?
2: हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। शाम को गेम्स होते हैं, जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल। रात के खाने के बाद सेल्फ स्टडी, फिर रात 10 बजे लाइट्स आउट। लेकिन याद रखना, वहाँ कभी कभी रात में भी सरप्राइज फॉल इन हो सकता है, ताकि जवानों की सतर्कता जांची जा सके।
1: सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, इतना कठिन समय दादाजी।
2: बिटिया, जो इस ट्रेनिंग से गुजरता है वही समंदर की लहरों पर राज करता है। जब तुम वहां से पास आउट होकर सफेद वर्दी में निकलते हो, तब तुम्हारी चाल में अलग ही आत्मविश्वास जाग जाता है बिटिया।
1: अच्छा दादू, ये लिबर्टी और क्वार्टर डेक क्या है?
2: लिबर्टी यानी ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली छोटी सी छुट्टी या ब्रेक, और क्वार्टर डेक का मतलब जहाज का वो हिस्सा जिसे सबसे पवित्र माना जाता है और जहाँ अनुशासन सर्वोपरि होता है।
1: दादाजी, मैंने सुना है कि पहले अधिकारियों की ट्रेनिंग गोवा के INS मंदोवी में होती थी, लेकिन अब केरल के एझिमाला में होती है। ये बताइए, इन दोनों में अंतर क्या है?
2: बहुत गहरा अंतर है रुचि। INS मंदोवी गोवा 1987 से 2009 तक नौसेना की मुख्य एकेडमी थी। वो एक छोटी लेकिन बहुत ही गौरवशाली जगह हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे नौसेना में विस्तार हुआ, हमें एक विशाल और आधुनिक एकेडमी की जरूरत पड़ी।
1: मतलब INS मंदोवी का विस्तृत रूप है केरल का एझिमाला।
2: हाँ बिटिया, और अब INS एझिमाला एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना एकेडमी है। ये 2500 एकड़ में फैली है बेटा।
1: दादू, यहाँ ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है और कैडेट्स को कितनी सुविधाएं मिलती हैं?
2: बिटिया, 12वीं के बाद ट्रेनिंग के लिए आने वाले कैडेट्स को 4 साल यहाँ रहना होता है, और सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स, वाटरफ्रंट ट्रेनिंग और विशाल फायरिंग रेंज मौजूद है। ये ट्रेनिंग बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ मौसम भी हर कदम पर कैडेट्स की परीक्षा लेता है।
1: तो क्या दादाजी, अब INS मंदोवी बंद हो चुका है?
2: नहीं बिटिया, INS मंदोवी अब भी नौसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसे प्रोवोस्ट एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के रूप में जाना जाता है। यहाँ नौसेना, पुलिस और शारीरिक प्रशिक्षकों को तैयार किया जाता है।
1: समझ गई मैं। दादू, एझिमाला यूनिवर्सिटी की तरह है जहाँ ऑफिसर बनते हैं, और मंदोवी अब एक स्पेशलाइज्ड स्कूल की तरह काम करता है।
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल। और आज के दौर में सभी नए अधिकारी शॉर्ट सर्विस और परमानेंट दोनों अपनी बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग INS एझिमाला में ही पूरी करते हैं।
1: दादाजी, अब समझ में आया, नेवी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।
2: हाँ बिटिया, नीली और सफेद वर्दी का वो रुतबा जिसके लिए कैडेट्स अपनी जी जान लगा देते हैं।
1: दादाजी, मैंने सुना है कि बीटेक एंट्री के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, क्या ये बात सच है?
2: बिल्कुल बिटिया, ये इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें JEE मेन की परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। तुम्हारी JEE मेन रैंक के आधार पर तुम्हें सीधे SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सफल होने पर तुम INS एझिमाला में 4 साल का बीटेक कोर्स मुफ्त में करोगे।
1: दादाजी, फॉर्म में SSC और PC का विकल्प होता है, आप ये बताइए ना कि इन दोनों में अंतर क्या है?
2: देखो बिटिया, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें तुम शुरुआत में 10 साल के लिए सेवा देती हो, जिसे 4 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 14 साल। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो देश सेवा के बाद सिविल क्षेत्र में जाना चाहते हैं।
1: अच्छा, और क्या महिलाओं को भी इसमें करियर के बेहतरीन मौके मिलते हैं?
2: बिल्कुल बेटा, परमानेंट कमीशन में महिलाएं अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा दे सकती हैं। और रहा सवाल PC का, तो बीटेक एंट्री और NDA के माध्यम से आने वाले कैडेट्स को अक्सर PC ही मिलता है।
1: दादाजी, महिलाओं को किन किन पदों

0: कि अब मुझ जैसी लड़कियों के पास भी आसमान छूने और समंदर की गहराई नापने के दोनों मौके हैं।
1: हाँ बिटिया, बस कैडेट्स को अपनी जेईई मेन की तैयारी पुख्ता और एसएसबी के लिए अपने व्यक्तित्व को निखारने की जरूरत है।
0: दादू, क्या इन महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के रास्ते खुले हैं?
1: बिटिया, नेवी की सभी शाखाओं में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन और यहाँ तक कि लॉ में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के रास्ते खुल गए हैं। क्या तुम्हें INSV तारिणी की कहानी याद है? 6 महिला अफसरों ने पाल वाली नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। उसे नाविका सागर परिक्रमा कहते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी।
0: दादाजी, जब भारतीय महिला अधिकारी INSV तारिणी से विश्व की यात्रा कर रही थी, तब क्या उन्हें तूफानों का भी सामना करना पड़ा था?
1: हाँ बिटिया, समुद्र की यात्रा में तूफान तो मानो परीक्षा की तरह होते हैं। उस ऐतिहासिक अभियान नाविका सागर परिक्रमा के दौरान भी एक समय ऐसा आया जब समुद्र बेहद उग्र हो उठा था।
0: सच में दादू?
1: हाँ बिटिया।
0: फिर क्या हुआ?
1: उस रात चारों ओर काले बादल छा गए थे। समुद्र की ऊंची लहरें नौका से टकरा रही थी। तेज हवाएं पालों को झकझोर रही थी। ऐसे में जरा सी भी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी बेटा।
0: फिर उन्होंने क्या किया दादाजी?
1: उन्होंने घबराने के बजाय धैर्य रखा बेटिया। उन सभी महिला अधिकारियों ने मिलकर नौका को संतुलित किया, दिशा बदली और मौसम के अनुसार पालों को नियंत्रित किया। घंटों तक वे लगातार काम करती रहीं। समुद्र की लहरें मानो उनकी हिम्मत को परख रही थी।
0: दादाजी, ये तो बहुत साहस की बात है।
1: बिल्कुल बिटिया, ऐसे कठिन क्षणों में ही असली साहस दिखाई देता है। उन महिला अधिकारियों ने ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी समुद्र की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकती हैं।
0: दादाजी, जब वे यात्रा पूरी करके लौटी होंगी तब उन्हें कितना गर्व हुआ होगा ना?
1: बहुत गर्व हुआ होगा बेटा, जब INSV तारिणी से अपनी विश्व परिक्रमा पूरी करके भारत लौटी तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया। उनकी इस उपलब्धि ने देश के युवाओं को ये संदेश दिया कि साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
0: दादाजी, अब समझ में आता है कि समुद्र की लहरों से लड़ना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास की भी बात है।
1: हाँ बेटा, और जब देश की बेटियां ऐसी यात्राएं करती हैं तो तिरंगा सिर्फ धरती पर ही नहीं समुद्र की लहरों पर भी गर्व से लहराता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दादाजी। अच्छा ये बताइए ना कि अगर किसी का सपना पायलट बनकर समुद्र के ऊपर से MiG-29 के उड़ाने का हो तब उसके लिए कुछ अलग टेस्ट होता है क्या?
1: हाँ बेटा, पायलट बनने के लिए तुम्हें CPSS पास करना होगा, जिसे पहले PABT कहते थे। SSB क्रैक के अनुसार ये टेस्ट जीवन में सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो कभी भी सेना में पायलट नहीं बन सकती।
0: सिर्फ एक बार टेस्ट? ऐसा क्यों भला?
1: दरअसल CPSS एक कंप्यूटर आधारित पायलट चयन प्रणाली है बेटा, जो केवल एक बार ही दी जा सकती है।
0: पास होने पर कैडेट की किन योग्यताओं को परखा जाता है फिर?
1: बेटा, इसमें तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि क्षमता और साइकोमोटर स्किल्स यानी हाथ और आंखों का तालमेल जांचा जाता है। इसके लिए तुम्हें एक कॉकपिट सिमुलेटर में बिठाकर देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में अभ्यर्थी विमान को कैसे संभालता है।
0: अच्छा दादाजी, ये बताइए कि फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बेटा, सबसे जरूरी है डॉक्यूमेंट्स। अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के नाम और जन्म तिथि में कोई गलती मत करना। और हाँ, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर बिल्कुल सही सही देना है, क्योंकि सारा संवाद वहीं से होगा। जॉइंट इंडियन नेवी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी है।
0: एक मौका, 5 दिन और 1 उड़ान, सुनकर कितना रोमांचक लगता है दादू।
1: बस याद रखना सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन।
0: दादाजी, जीडीआर ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? जैसे जिन्हें डर लगता है कि कहीं वो दूसरों के सामने चुप ना रह जाएं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं?
1: ग्रुप डिस्कशन का मतलब जोर करना नहीं है, बल्कि तर्क के साथ अपनी बात को रखना है। तुम्हें देश और दुनिया की करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। एसएसबी क्रैक ग्रुप डिस्कशन के अनुसार तुम्हें दूसरों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर अपनी राय सॉफ्ट स्किल्स के साथ देनी चाहिए।
0: यानी वो टास्क जहां आपकी तार्किक क्षमता देखी जाती है।
1: हाँ बेटा, ये एक व्यक्तिगत भाषण देने की योग्यता का परीक्षण है। ये भारतीय नौसेना के उस मानवीय चेहरे को समर्पित है जिसे दुनिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जानती है।
0: दादू, क्या कैडेट्स को बोलने के लिए कोई विषय भी दिए जाते हैं?
1: हाँ हाँ, वहाँ एक कार्ड दिया जाता है जिसमें चार विषय होते हैं। यहाँ 3 मिनट में किसी एक विषय पर बोलना होता है।
0: अच्छा।
1: ये तुम्हारे आत्मविश्वास और सोचने की गति का टेस्ट होता है बेटा। घर पर शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करने से आत्मविश्वास जरूर जागेगा।
0: दादाजी, क्या ये सब करके मार्कोस कमांडो बना जा सकता है?
1: बेटा, मार्कोस यानी मरीन कमांडोस, ये भारत के सबसे घातक योद्धा है। इनका नारा है द फियरलेस। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। इंडियन नेवी मार्कोस की चयन प्रक्रिया में हेल वीक होता है,
0: यानी नरक वाला हफ्ता।
1: हाँ, नरक वाला हफ्ता। इसमें जवानों को लगातार 5-6 दिनों तक सोने नहीं दिया जाता। उन्हें भारी बोझ के साथ कीचड़ में दौड़ना पड़ता है और भीषण शारीरिक यातना दी जाती है, जो इस मानसिक और शारीरिक दबाव को झेल लेता है वही डॉल्फिन बैच पहनने का हकदार होता है।
0: तो दादाजी, ये लोग काम क्या करते हैं?
1: ये कॉम्बैट डाइविंग, पैराशूट जंप और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। ये पानी के अंदर दुश्मन के जहाजों पर माइन लगा सकते हैं और पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं।
0: दादाजी, चाहे वो हेल वीक हो या एसएसबी का ग्रुप टास्क, भारत माता की संतानें हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
1: बिल्कुल सही बिटिया, जिसके इरादे फौलादी हों, उसके लिए समंदर भी अपना रास्ता खोल देता है बेटा।
0: मार्कोस, दादू, इन्हें मगरमच्छ भी कहा जाता है ना?
1: हाँ, क्योंकि बेटा ये पानी और जमीन दोनों पर लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं रुचि बिटिया, नौसेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती बल्कि मुसीबत में फंसे हुए इंसानों की रक्षा भी करती है।
0: दादाजी, नौसेना सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक रक्षक भी है।
1: बिल्कुल बिटिया, नौसेना का आदर्श वाक्य है, समंदर के देवता हमारे लिए शुभ हों। और जब हम दूसरों की जान बचाते हैं तो हम उसी शुभता को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। बेटा, बस इंसान में यही एक जज्बा चाहिए। और याद रखना, नेवी सिर्फ ड्यूटी नहीं है, देश के प्रति तुम्हारा समर्पण भी है।
0: समझ गई दादाजी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी।
1: चलो अब दादू को थोड़ा आराम करने दो बिटिया।
0: जी दादू, आप आराम कीजिए, मैं जाकर थोड़ी पढ़ाई करती हूँ ताकि आगे किसी नए विषय के बारे में आपसे जान सकूं।
1: हाँ बेटा, अभी तो आराम करने दो।
0: मैं चली।
1: हाँ।

0: तो श्रोताओं, ये था रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज आप सुन रहे थे सागर के प्रहरी यानी हमारी भारतीय नौसेना के बारे में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक निमा।
0: हमें दीजिए अब अनुमति, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी, इतिहास के एक नए पन्ने की एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: श्रोताओं, आज हम आपको 1857 की क्रांति के उस नायक से रूबरू करने जा रहे हैं जिनकी ख्याति उस समय तात्या टोपे से कम नहीं थी। इस नायक का नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान सिपाहियों में से एक थे। 80 वर्ष की आयु में सन 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लिया और बहुत से युद्धों में विजय हासिल की। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शाही परिवार में सन 1777 में हुआ था।
1: दोस्तों, 1857 का सिपाही विद्रोह महज विद्रोह भर या साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत थी। मेरठ के बैरकपुर की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने क्रांति का जो बिगुल बजाया, उसकी गूंज बिहार के आरा तक भी पहुंची और वहां के बाबू कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 25 जुलाई को दानापुर में क्रांति का बिगुल बजाकर सिपाही 26 जुलाई को सोन नदी पार कर 27 जुलाई 1857 को आरा पहुंचे। यहां बाबू कुंवर सिंह उनके नेता बने। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कुंवर सिंह जनक्रांति के नेता भी बने। हिंदी भाषी जनता ने उन्हें तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा तो वहीं अंग्रेजों ने हीरो ऑफ भोजपुर कहा।
0: तो इतिहास क्यों ना कहानी को उसके आधार से शुरू किया जाए।
1: ठीक है श्रोताओं, कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उदार और दानी व्यक्ति थे। अंग्रेजों की नजर में वो एक अच्छे जमींदार शासक थे, जो प्रजा से जोर जबरदस्ती लगान नहीं वसूलते थे। साहबजादा सिंह को 4 पुत्र हुए, कुंवर सिंह, दयाल सिंह, राजपति सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह सबसे बड़े थे और बचपन से ही पढ़ने लिखने से कतराते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद, कुश्ती और तलवारबाजी में खूब लगता था।

0: कुंवर सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए बेहतर योद्धा के रूप में चर्चित होने लगे। इस बीच उनके पिता मुकदमे में फंसे और उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। बाबू कुंवर सिंह चापलूसों से दूर रहते थे, इसीलिए उनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती थी। उनके पिता के दरबार में कई चापलूस थे जिन्हें हटाने के लिए कुंवर सिंह ने पिता को सलाह दी थी। जब चापलूसों को नहीं हटाया गया तो वे अलग रहने लगे और जितौरा में अपना आवाज बनाया।
1: वृद्धावस्था के कारण साहबजादा सिंह की मृत्यु 1883 में हो गई। पिता के निधन के बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्वामी बने। बाबू कुंवर सिंह गद्दी पर बैठते ही जगदीशपुर के विकास में लग गए। उन्होंने अपने जमींदारी काल में काफी जनसेवा की। जितौरा में तालाब का निर्माण कराया तो वहीं मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण एक साथ कर कुंवर सिंह ने सर्वधर्म संभाव का बेहतर उदाहरण उस दौर में पेश किया। कुंवर सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थे। अंग्रेजों से भी अच्छी पटती थी। समय समय पर अंग्रेज अफसरों के साथ वे जितौरा के जंगलों में शिकार को जाते थे। अंग्रेज भी उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और आतिथ्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे।
0: कुंवर सिंह ने अपने जमींदारी काल में पैतृक संपत्ति की भी वृद्धि की, लेकिन अधिक खर्च और कुप्रबंधन के कारण जमींदारी की स्थिति दयनीय हो गई। उन पर ऋण भार बढ़ने लगा। वे अपना खर्च कम नहीं करते थे। महाजन और साहूकार उनका शोषण करने लगे। ऐसे में कुंवर सिंह पर 17 लाख ऋण हो गया। महाजनों के चंगुल से मुक्त होने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार को आवेदन दिया। इसी बीच 1857 तक ऋण बढ़कर 20 लाख तक हो गया था। वे चाहते थे कि सरकार इसकी व्यवस्था कर दे जिससे ऋण से मुक्ति मिले।
1: लेकिन तारीख स्थानीय महाजन नहीं चाहते थे कि कुंवर सिंह ऋण से मुक्त हों। वो उनको और फंसाना चाहते थे। कुंवर सिंह को कहीं से ऋण चुकाने के लिए कर्ज नहीं मिल रहा था और अंग्रेज सरकार भी उन्हें मदद नहीं कर रही थी। 25 जून 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने सरकार को आवेदन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अभी मामला चल ही रहा था कि ठीक एक माह बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह ने भी विद्रोह में भाग लिया।
0: 1845-46 में सोनपुर मेले के दौरान एक बैठक में क्रांतिकारियों के साथ उनकी भेंट हुई थी। कुंवर सिंह का संबंध नाना साहब के साथ था और वे कई बार उनसे मिल चुके थे। बहादुर शाह के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों द्वारा एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनी थी।
1: दानापुर के सैनिकों ने जब नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तब कमिश्नर ने कुंवर सिंह और डुमराव के जमींदार को समझाने के लिए बुलाया। कुंवर सिंह ने स्पष्ट कहा था कि शाहबाद के लोग मेरी बात मान सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह के सिपाही मेरी बात नहीं मानेंगे। इससे कमिश्नर खफा हो गया। कुंवर सिंह देश और बिहार की परिस्थितियों से अवगत थे। पीर अली की फांसी ने उन्हें बेचैन कर दिया था। इधर दिल्ली और मेरठ की घटना से बिहार के अंग्रेज अधिकारी चिंतित थे। दिल्ली पर विद्रोही सिपाहियों का अधिकार हो चुका था। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर जो बिगुल बजाया, उसकी आवाज बिहार में भी स्पष्ट सुनाई पड़ी।

0: अंग्रेज कुंवर सिंह को गिरफ्तार करने की फिराक में लग गए। वहीं कुछ अंग्रेज अधिकारी इसके बाद के परिणामों से सशंकित थे कि कहीं इसका उल्टा असर ना हो। कमिश्नर टेलर पर पहुंची मजिस्ट्रेट की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने 2 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के मित्र और रईस डिप्टी कलेक्टर मौलवी सैयद अजीमुद्दीन को बाबू साहब को पटना लाने के लिए भेजा। उस समय कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। कुंवर सिंह ने स्थिति को भांपते हुए अपनी अस्वस्थता जाहिर की और पटना नहीं गए।
1: इसके पूर्व पटना में मौलवियों की फांसी और टेलर के आतंकी कार्य को वे सुन चुके थे। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई और उन्होंने अपने आप को विद्रोह के लिए तैयार किया। दानापुर के सिपाहियों के विद्रोह को लेकर उन्होंने अपने भाई अमर सिंह और कई ख्याति प्राप्त लोगों के साथ विचार विमर्श कर हालात को जानने का प्रयास किया। सभी दानापुर के सिपाहियों का साथ देने के लिए तैयार थे और अधिकतर लोग कुंवर सिंह को सिपाहियों का नेता बनाना चाहते थे।
0: 29 मार्च 1857 को 34वीं पलटन के विद्रोह की जो आवाज मंगल पांडे की शहादत से उठी, उसका विद्रोही स्वर मेरठ और दिल्ली में सुनाई दिया। इसका प्रभाव दानापुर की छावनी पर भी पड़ा। क्रांतिकारियों की योजना 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने की थी। इसी बीच दिल्ली से खबर आई कि सिपाहियों ने वहां कब्जा जमा लिया है और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शासक बना दिया गया है। चारों ओर संघर्ष का शंखनाद हो गया था।
1: उधर टेलर पटना में लोगों को फांसी देकर आतंक मचा रहा था। कमिश्नर ने हालात देखते हुए सेना को पटना आने को कहा। इस बीच 24 जुलाई को 37 नंबर की यूरोपियन फौज दानापुर पहुंची। अगले दिन देशी फौज अंग्रेज अफसर और सैनिकों से भिड़ गई और मेजर जेम्स होम की हत्या कर दी। देशी सिपाही वर्दी उतार हथियार लेकर आगे बढ़े। सिपाही सोन नदी पार करना चाहते थे। वहीं सिपाहियों का पीछा करने के लिए अंग्रेजी सेना आ गई।
0: हालांकि 26 जुलाई को देशी सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया। इधर हरे कृष्ण सिंह और रणदलन सिंह दानापुर जाकर सिपाहियों से बात कर उनको आरा में प्रवेश कराने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि नेतृत्व कुंवर सिंह करेंगे। हरे कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 27 जुलाई को वे सुबह आरा पहुंचे। उसी दिन बाबू कुंवर सिंह भी आरा आए। आरा स्थित बाबू बाजार के मकान पर सिपाही एकत्र हुए। बिहार की धरती पर कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों का साथ देकर क्रांति की धारा को तेज कर दिया था।

0: आरा पर कब्जे के बाद बाबू कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के करीब 5,000 क्रांतिकारी सिपाहियों के शौर्यमान नेता बन गए। कुंवर सिंह का प्रभाव इतना बढ़ गया कि खेत खलियानों में कुंवर सिंह पर गाने गाए जाने लगे। बिहार में जो विद्रोह हुआ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, इसमें जनता ने खुलकर भाग लिया। पूरे शाहबाद में विद्रोह का क्रांतिकारी तेवर अपना रूप ले चुका था। छोटे मोटे जमींदार और सभी राजपूत कुंवर सिंह के विद्रोह के साथ थे। आरा कब्जे के दौरान जेल को तोड़कर करीब 400 कैदियों को छुड़ा दिया गया था। बाद में सरकारी खजाने से 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस लूट में अंग्रेजों के नजीर पहरेदारों ने भी साथ दिया।
1: सोन पार कर कुंवर सिंह से मिलने तक बागियों की संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी थी, जो शाहबाद के लिए अनोखी बात थी। कुंवर सिंह ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों के पास जहां आधुनिक हथियार थे, वहीं कुंवर सिंह और उनके आदमियों के पास बहुत साधारण हथियार थे। ब्यायल कोठी की लड़ाई करीब एक सप्ताह तक चली थी। कहा जाता है कि पानी की कमी होने पर कोठी में तैनात सिख सिपाहियों ने 18 फीट जमीन खोदकर पानी की व्यवस्था की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। दानापुर से सेना भेजना आसान नहीं था। 27 जुलाई को 37 नंबर की गोरी सेना भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन नदी में पानी कम होने से जहाज रुक गया। बाबू कुंवर सिंह की सेना द्वारा आरा की घेराबंदी और कोठी में घिरे अंग्रेजों की रक्षा का प्रश्न सरकार को परेशान कर रहा था।
0: हालांकि उनकी रक्षा के लिए 500 यूरोपियन सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन डनवर ने किया। बाबू कुंवर सिंह के सैनिकों से डनवर की फौज का मुकाबला आरा से 3 मील दूर पर हुआ। रात का फायदा उठाकर काली पोशाक में कुंवर सिंह की सेना ने सफेद पोशाक पहने अंग्रेजों को चांदनी रात में पहचान कर हमला किया। सैनिकों को मरते देख अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। कई अंग्रेज सिपाही लापता हो गए। इस युद्ध में डनवर मारा गया। जो बच गए थे किसी तरह जान बचाकर भागे। ये कुंवर सिंह की अपूर्व विजय थी। दानापुर से सैनिक भेजे नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुंवर सिंह के समर्थक सैनिकों की संख्या 10,000 तक हो गई थी। आरा पर कुंवर सिंह का पूर्ण अधिकार हो गया था। इस विजय के बाद कुंवर सिंह को लोगों ने तेगवा बहादुर की उपाधि से नवाजा। बाबू कुंवर सिंह ने अपना राज्य हरे कृष्ण के सहयोग से स्थापित किया। कुंवर सिंह ने बेहतर शासन के लिए कई व्यवस्थाएं की।
1: डनवर की पराजय और आरा में कुंवर सिंह के कार्यों से अंग्रेजों में डर पैदा हो गया था। इस बीच मेजर आयर ने आरा की ओर कूच किया। 2 अगस्त को कुंवर सिंह के सैनिकों के साथ उनका मुकाबला हुआ। अंग्रेजों के पास तोपें थी। कुंवर सिंह के सैनिक पीछे हटे, आयर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बीबीगंज के पास एक नदी मिली, जहां भीषण संग्राम हुआ। कुंवर सिंह ने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इस हमले से आयर घबरा गया। घंटों भयंकर संघर्ष जारी रहा। 3 अगस्त 1857 को आयर आरा पहुंचा। इसे गोरों को राहत मिली। आयर ने आरा पहुंचकर 2 दिन के भीतर सभी के हथियार जमा कर लिए और कोर्ट मार्शल कराकर संदिग्ध लोगों को फांसी पर लटका दिया।
0: 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के नजदीक गंगा नदी पार करते समय बाबू वीर कुंवर सिंह को अंग्रेजों की गोली लग गई। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ माँ गंगा को अंतिम दान कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 24 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई।
1: कुंवर सिंह जब तक जीवित रहे, इस वीर ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और मरते समय तक जगदीशपुर को आजाद रखा। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अमूल्य भूमिका के लिए 23 अप्रैल 1966 में भारत सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। बाबू कुंवर सिंह कहा करते थे, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी वचन के आधार पर जिए।

0: एकता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम एवं कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम काव्य कुंजन।

0: आज हम आपको सुना रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा। इस काव्य ग्रंथ में यशोधरा की विरह व्यथा को, राहुल जननी के मातृत्व रूप को, बुद्ध देव की तपस्या के समतुल्य चित्रित किया है। मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य ग्रंथ में जहां विरह यशोधरा की आत्मा है, वहीं ये काव्य यशोधरा का ऐसा चित्र खींचता है जिसमें आंसुओं की आर्द्रता भी है, वेदना की विकलता भी है, आत्मसम्मान का तेज भी है, प्रिय के व्यवहार का क्षोभ भी है, राहुल के प्रति अपार स्नेह भी है और खुद के लिए बहुत सारे प्रश्न भी। आइए सुनते हैं काव्य ग्रंथ यशोधरा का पाठ। अब जो काव्यांश आप सुनेंगे उसमें सिद्धार्थ इस असार संसार में नश्वरता और अस्थिरता पर विचार मग्न होकर सोच रहे हैं।
1: घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहां जाता है, रह जाता है तक्र। पिसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, सहें अंततो गत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, कैसे परित्राण हम पावें, किन देवी को रोवें गावें, पहले अपना कुशल मनावें, वे सारे सुर चक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, बाहर से क्या जोड़ू जाड़ू, मैं अपना ही पल्ला झाड़ू, तब है जब वे दांत उखाड़ू, रह भवसागर नक्र। घूम रहा है कैसा चक्र, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, सौ सौ रोग खड़े हों सम्मुख, पशु जो हों बांध परा, देख जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा, रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर भरा भरा कुछ न किया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा। मरने को जग जीता है, रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट भरा हुआ भी रीता है, यह भी पता नहीं कब किसका, समय कहां आ बीता है, विष का ही परिणाम निकलता, कोई रस क्या पीता है, कहां चला जाता है चेतन जो मेरा मन चीता है, खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहां सब तीता है, भुवन भवाने आ पहुंचा मैं, अब क्यों तू यों भीता है, अपने से पहले अपनों की सुगम गति गौतमी गीता है। कपिल भूमि भागी क्या तेरा, यही परम पुरुषार्थ हाय, खाए पिए बस जिए मरे तू, यों ही फिर आए जाए, अरे योग के अधिकारी कह यही तुझे क्या योग्य हाय, भोग भोग कर मरे रोग में बस वियोग ही हाथ आए, सोच हिमालय के अधिवासी ये लज्जा की बात हाय, अपने आप तपे तापों से तू ना तनिक भी शांति पाए, बोल युवक क्या इसीलिए है यह जीवन अनमोल हाय, आकर इसके दांत तोड़ दे जरा भंग कर अंग काए, बता जीव क्या इसीलिए है यह जीवन का फूल हाय, पका और कच्चा फल इसका तोड़ तोड़ कर काल खाए, एक बार तो किसी जन्म के साथ मरण अनिवार्य, हाय बार बार धिक्कार, किंतु यदि रहे मृत्यु का शेष दाय, अमृत पुत्र उठ कुछ उपाय कर, चल चुप हार न बैठ। हाय खोज रहा है क्या सहाय तू, मेट आप ही अंतराय। पड़ी रह तू मेरी भव भुक्ति, मुक्ति है तू जाता हूं यह मैं, मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति। मेरा मानस हंस सुनेगा और कौन सी युक्ति, मुक्ता फल निर्द्वंद चुनेगा, चुन ले कोई शुक्ति।
0: और फिर सिद्धार्थ निश्चय करते हैं कि इस तरह से जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सुख सुविधाओं के दायरे से बाहर निकल सत्य की कठोर चट्टानों से टकराना होगा। उनका निश्चय पक्का था। उनके भीतर उठे प्रबल प्रश्नों ने उन्हें विवश कर दिया था। उन्हें सांसारिक सुखों को नहीं निर्वाण की तलाश थी। वे अनित्य से नित्य की ओर बढ़ना चाहते थे। वे बोधिसत्व को पाना चाहते थे और रात्रि में वे निकल पड़े अपने प्रश्नों की तलाश में।
1: आज्ञा दूं या दूं मैं अकाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रख अब अपना यह स्वप्न जाल, निष्फल मेरे ऊपर न डाल। मैं जागरूक हूं ले संभाल, निज राज पाठ धन धरण धाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रहने दे वैभव यश शोभ, जब हम ही नहीं क्या कीर्ति लोभ। तू क्षम्य करूं क्यों हाय क्षोभ, थम थम अपने को आप थाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख। मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह वह कब तक है प्राण पात्र। भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, यह आद्र शुष्क व उष्ण शीत, यह वर्तमान यह तू प्रतीत। तेरा भविष्य क्या मृत्यु भीत, पाया क्या तूने घूम घाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, मैं सूंघ चुका वे फुल फूल, झड़ने को हैं सब जटित झूल। चख देख चुका हूं मैं समूल, सड़ने को हैं वे अखिल आम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, सुन सुनकर छू छू कर अशेष, मैं निखर चुका हूं निर्निमेश। यदि राग नहीं तो हाय द्वेष, चिर निद्रा की सब झूम झाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, उन विषयों में परित्रप्त हाय, करते हैं हम उल्टे उपाय। खुजलाऊं मैं क्या बैठ काए, ओ जाए और भी प्रबल पाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, सब देकर भी क्या आज दीन, अपने या तेरे निकटहीन। मैं हूं अब अपने ही अधीन, पर मेरा श्रम है अविश्राम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, इस मध्य निशा में आ अभाग, तुझको तेरे ही अर्थ त्याग। जाता हूं मैं यह वीतराग, दयनीय ठहर तू क्षीण शाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, तू दे सकता था विपुल वित्त, पर भूले उसमें भ्रांत चित्त। जाने दे चिर जीवन निमित्त, दूं क्या मैं तुझको हाड़ चाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रह काम क्रोध मद लोभ मोह, लेता हूं मैं कुछ और टोह, कब तक देखूं चुपचाप ओ, आने जाने की धूम धाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे ओक न कर तू रोक टोक, पथ देख रहा है आर्त लोक, मेटू मैं उसका दुख शोक, बस लक्ष्य यही मेरा ललाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु बांधूं अपना पुरुषार्थ सेतु, सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, तब है मेरा सिद्धार्थ नाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। वह कर्म कांड तांडव विकास, बेदी पर हिंसा हास रास, लोलुप रसना का लोल लास, तुम देखो ऋग यजु और साम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ, पाहे स्वराज बढ़ सृष्टि लाभ, जा दंड भेद जा साम दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तब जन्म भूमि तेरा महत्व, जब मैं ले आऊं अमृत तत्व, यदि पा न सके तू सत्य सत्व, तो सत्य कहां भ्रम और भ्राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे पूज्य पिता माता महान, क्या मांगू तुझसे क्षमादान, क्रंदन क्यों गाओ भद्रगान, उत्सव हो पुरपुर ग्राम ग्राम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे मेरे प्रतिभूतात नंद, पाऊं यदि मैं आनंद कंद, तो क्यों ना उसे लाऊं अमंद, तू तो है मेरे ठौर ठाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। अय गोपे तेरी गोद पूर्ण, तू हास विलास विनोद पूर्ण, अब गौतम ही हो मोद पूर्ण, क्या अपना विधि है आज वाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। क्या तुझे जगाऊं एक बार, पर मैं अब भी अप्राप्त सार, सो अभी स्वप्न ही तू निहार, हे शुभे श्वेत के साथ श्याम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। राहुल मेरे ऋण मोक्ष माप, लाऊं मैं जब तक अमृत आप, माही तेरी माँ और बाप, दुल मातृ हृदय के मृदुल दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यह घंतम सन सन पवन जाल, भन भन करता यह काल व्याल, मूर्छित विषाक्त वसुधा विशाल, भय कह किस पर यह भूरि भाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। छंदक उठला निज वाजी राज, तज भय विस्मय सज शीघ्र साज, सुन मृत्यु विजय अभियान आज, मेरा प्रभात यह रात्रि आम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। वह जन्म मरण का भ्रमण भान, मैं देख चुका हूं अपरिणाम, निर्वाण हेतु मेरा प्रयाण, क्या वात वृष्टि क्या शीत घाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे राम तुम्हारा वंश जात, सिद्धार्थ तुम्हारी भांति तात, घर छोड़ रहा है यह आज रात, आशीष उसे दो लो प्रणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम।
2: इधर सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक से कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में रहकर जन्म मरण के चक्र के कष्टों को देख लिया है, मैं इस क्षणभंगुर संसार को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, और राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी भांति घर छोड़कर जनसाधारण के लाभ हेतु जा रहा हूँ। इधर सिद्धार्थ के गृह त्याग कर चले जाने के पश्चात गोपा के हृदय की व्यथा इन काव्यांशों में सुनिए।
0: नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है, हाँ जग कर क्या पाया, मैंने वह स्वप्न भी गंवाया है, सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा बायां नयन फड़कता है, मैं कैसे मानूं? देख यहां यह हृदय धड़कता है। आली वही बात हुई, भय जिसका था मुझे, मानती हूं उनको गहन वनगामी में, ध्यान मग्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा, क्यों जी प्राण वल्लभ कहूं या तुम्हें स्वामी में? चौंक कुछ लज्जित से बोले हस आर्य पुत्र, योगेश्वर क्यों ना हूं गोपेश्वर नामी में? कुछ चिंता छोड़ो किसी अन्य का विचार करूं, तो हूं जार पीछे प्रिय पहले हूं कामी में। कह आली क्या फल है अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का? मूल्य नहीं क्या कुछ भी मेरी इस नग्न लज्जा का? सिद्धि है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते? मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व कब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते? सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रख कर मैंने अधर कपाट लगाए, मेरे हास विलास किंतु क्या भाग्य तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए ये तुम रसमय मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यशोधरा क्या कहे और अब, रहो कहीं भी छाए, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे नाथ तुम, हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहां जाओगे नाथ तुम? अपना कर संपूर्ण सृष्टि को, मुझे न अपनाओगे नाथ तुम? उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे। सास ससुर पूछेंगे तो उनसे क्या अभी कहूंगी मैं, हाँ गर्विता तुम्हारी, मौन रहूंगी, सहूंगी मैं। मैं आप बिना घूंघट के आई उदार इस घर में, मुंह किंतु छिपाकर अटके तुम किस दुर्दंत अंतर में।
2: गोपा की व्यथा ये है कि वो बिना घूंघट के इस घर में आई थी, फिर सिद्धार्थ रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर क्यों गए।
0: अभी आपने सुना कि सिद्धार्थ संसार के चक्र को देखकर कितने विकल हैं। इसी भाग में आपने ये भी सुना कि सिद्धार्थ के घर छोड़ने के पश्चात यशोधरा के मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ये भाग आज यहीं संपन्न होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा का अगला भाग आप रेडियो आजाद हिंद पर सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और कलाकार थे विकास अवस्थी, मनीषा चतुर्वेदी, वर्षा सिंह और वत्सला चौबे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।